मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के अनुसार ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 31 मई 2026 स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब समय है हिंदी समाचारों का। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परिश्रम ही प्रत्येक सफलता का मुख्य आधार है और परिश्रम करने का जज्बा उचित प्रेरणा स्रोत एवं अनुशासित दिनचर्या से प्राप्त होता है। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

विद्या की देवी, कल्याण की देवी माँ सरस्वती हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने का राह दिखाती हैं। देवताओं को हम जब भजते हैं तो हमें देवी देवताओं के पुनीत आशीर्वाद से सुर प्राप्त होते हैं, ध्वनि प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें जो आकार मिलता है वो माँ सरस्वती के विशेष आशीर्वाद से, विशेष अनुकंपा से प्राप्त होता है। हमारे कंठ में सत्य का वास हो, हम सन्मार्ग पर अग्रसर हों, इसी भावना के साथ ये अगला भजन।

जब मनुष्य अपनी धुन में सवार होकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है, कर्तव्य पथ पर होता है, तो उस पथ पर चुभने भी होती हैं। और जब मनुष्य चुभन में होता है, तकलीफ में होता है, तो साथी की आवश्यकता होती है। और ऐसे साथी जो सारथी बन जाते हैं, वही कृष्ण कहलाते हैं।

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की,

जीवन में जब सही साथी होता है, परमात्मा रूपी सारथी होता है, तब यह जीवन बहुत सहजता से गुजरता है और जीवन में बल बुद्धि विद्या के लिए हम आतुर रहते हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए, वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। कृषि की बात में आज जिक्र करेंगे धान की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव। भाई पहले बात करेंगे हमें मध्य अवधि वाली, एक तो है HKR 127 या छोटे कद की है, 121 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है, बिजाई से पकने तक लगभग 140 दिन का समय ले है, इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं। यह किस्म जूठी कंगियारी के प्रति सहनशील है, इस किस्म की अधिक पैदावार लेने के लिए भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत पड़ा करे। इस किस्म के औसत पैदावार की बात करें तो 28 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार हमने मिल गया है। किस्म है HKR 127। अगली किस्म है HKR 126, छोटे कदाड़ी है, 110 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, इंडिका जाति की किस्म है, इसका तना मजबूत हो है, बिजाई तक पकने तक 140 दिन का समय ले है, इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं, सफ़ेद पीठ वाले तेले और तनागलन रोग के लिए अवरोधी है, इसमें पानी की कुछ कमी को भी बर्दाश्त करने की ताकत हो है, और इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 27 क्विंटल प्रति एकड़ हमने इसकी पैदावार मिल गया है। किस्म है HKR 126। अगली है HKR 120 या और भी छोटे कद की किस्म है, 105 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, ज़्यादा पैदावार देने वाली इंडिका जाति की किस्म है, इसका तना मजबूत हो है या गिरती नहीं सहज ही, इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं, बीज से पकाई तक 140 दिन का समय ले है, औसत पैदावार की बात करें तो 25 क्विंटल एक किले में इसकी पैदावार हमने मिल गया है। अगली है हरियाणा संकर धान नंबर एक, छोटे कद की, 122 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, ज़्यादा पैदावार देने वाली इंडिका जाति की किस्म है, या भी तना मजबूत, चावल लंबे और पतले हुए हैं, और यह बिजाई से पकने तक 139 दिन का समय ले है, औसत पैदावार की बात करें तो 30 क्विंटल एक किले में इसकी पैदावार हमने मिल गया है। अगली किस्म है जया, छोटे कदाड़ी है, 115 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, यह भी इंडिका जाति की किस्म है, तना सख्त हो है जिससे यह गिरती नहीं, और बिजाई से पकने तक 142 दिन का समय ले है, इसका चावल लंबा और मोटा हो है, इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 26 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी हमने पैदावार मिल गया है एक किले मत है। किस्म है जया। अगली है PR 106, छोटे कद की किस्म है, 115 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, यह सजाई गिरती नहीं और ज़्यादा पैदावार देने वाली है, इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं, या बीजते पकने तक 145 दिन का समय ले है, पैदावार की बात करें तो एक एकड़ में करीब 24 क्विंटल इसकी पैदावार हमने मिल गया है। किस्म है PR 106। फिर है मध्यम कम अवधि वाली किस्म HKR 47, छोटे कद की है, 116 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, इसका तना सख्त होने के कारण यह गिरती नहीं, इसके दाने सुनहरे पीले रंग के हैं, चावल लंबे और पतले, बिजाई से पकने तक का समय 135 दिन का लिए है, और औसत पैदावार की बात करें तो 26 क्विंटल एक किले में इसकी पैदावार हमने मिल गया है। किस्म है HKR 47। अगली है IR 64, छोटे कद की है, 108 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, यह भी गिरती नहीं सहज ही, और इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं, बीज से पकने तक 135 दिन का समय ले है, औसत पैदावार की बात करें तो 23 क्विंटल एक किले में इसकी पैदावार हमने मिल गया है। अगली किस्म है इसमें कम अवधि वाली जो किस्म आज हैं उन कम अवधि वाली किस्मों में HKR 48 या छोटे कद की किस्म है, 118 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, और यह गिरती नहीं, कम समय में पकने वाली इंडिका जाति की किस्म है, इसके चावल लंबे पतले हुए हैं, बिजाई से पकने तक 118 दिन का समय ले है, और बहुफसलीय पद्धति के लिए यह एक बहुत बढ़िया उपयुक्त किस्म मानी जा है, यह किस्म औसत 24 क्विंटल प्रति एकड़ हमने पैदावार दे दी है, और यह जीवाणुज बीज अंगमारी के लिए अवरोधी है। किस्म है HKR 48। अगली किस्म है गोविंद, यह भी छोटे कदाड़ी, 93 सेंटीमीटर लंबी बद्ध है, और गिरती नहीं, कम समय में पकने वाली किस्म है, इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं, यह बिजाई तय पकने तक 115 से 120 दिन का समय ले है, बहुफसलीय पद्धति के लिए भी किस्म बहुत बढ़िया मानी जा है, और इस किस्म की औसत पैदावार की बात करें तो 21-22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार हमने मिल गया है। किस्म है गोविंद। तो ये कुछ धान फसल की उन्नत किस्में हैं। अगर किसान भाई इस टाइम पे इनका ध्यान दे लेंगे तो अपनी धान की फसल तय भरपूर फायदा ले पाओगे।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि की बातें, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे हैं।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः, प्रगतेः, समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्री लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइङ्गः 5 दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक ISI मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः 8 अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष CP अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्ण स्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि, विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्री शुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय 20-20 द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकी ते विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की

बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आज आप 7:15 पर सुबह सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुबह सवेरे समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 7:35 पर। प्रातः 9:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार। दोपहर 1:10 पर आपके अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत कार्यक्रम देर रात 7:30 पर। रात 8:25 पर कार्यक्रम सुगम संगीत। रात 9:15 पर कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत। प्रातः 8:30 पर आज बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बालकुंज प्रसारित किया जाएगा। विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व दूध दिवस, साइकिल दिवस। CIIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, बच्चों से बातचीत और बाल गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार। युवा संसार में कंपेयरिंग का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस और साथ में होगा कार्यक्रम युवा पसंद। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम घर आंगन में आज आप सुनेंगे विश्व साइकिल दिवस, विश्व दूध दिवस, ग्लोबल अभिभावक दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में आज चर्चा का विषय रहेगा अंगूर के बागों की देखभाल। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन और बातचीत रहेगी गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। वार्ताकार डॉक्टर राजू शर्मा, साथ में होगा लोक संगीत। शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार में आज आप सुनेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत और भेंट वार्ता रहेगी तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में। वार्ताकार रहेंगे विपुल गुप्ता। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज प्रातः 11 बजे कार्यक्रम मन की बात प्रसारित किया जाएगा और 11:45 पर मन की बात कार्यक्रम का संस्कृत भाषा में पुनः प्रसारण किया जाएगा। ये विशेष सभा प्रातः 10:53 पर आरंभ हो जाएगी। कार्यक्रम मन की बात प्रातः 11 बजे, संस्कृत भाषा में पुनः प्रसारण 11:45 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मनोज कुमार वर्मा।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आपने सुना कलाकार मनोज कुमार वर्मा को। कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। कार्यक्रम में आज हम पहली बातचीत करेंगे क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को संजोने में भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों के महत्व के बारे में। मातृभाषा मातृभूमि मातृ के कण कण से मिलकर बनी होती है, उस विरासत से सुघड़ कर निकल कर आती है जो हमारी रगों में दौड़ती है। जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हम माँ के गोद में मिले उस प्यार की भाषा की बात करते हैं जो हमें जन्म लेते ही मिलता है, जिसे धरती पर हम पैदा होते हैं। वहाँ की जननी ने हमें पैदा होने से लेकर और बड़े होने तक जो भाषा सिखलाई, जिसमें हमें भावों का चित्रण करके दिखलाया, जिसमें हमने उठना सीखा, बैठना सीखा, खाना सीखा, जीना सीखा, हंसी ठिठोली करनी सीखी, रोना सीखा, भागना सीखा, दौड़ना सीखा, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। और वो मातृभाषा ज़रूरी नहीं कि वो किस तरीके से सामाजिक और नियमावलियों में दर्ज है, वो हमारे जहन पर किस प्रकार दर्ज है उससे हमारे जीवन की परिभाषा और जीवन का आकार गढ़ा जाता है। जब हम कहते हैं कि हम, जैसे आकाशवाणी रोहतक से हम बात कर रहे हैं कि हम रोहतक में या सोनीपत में या हरियाणा के किसी भी हिस्से में पैदा हुए हैं, तो हरियाणवी हमारी मातृभाषा है। यदि आज हम हिंदी, अंग्रेज़ी या किसी भी अन्य भाषा को सीखने के लिए या

अपनी भाषा को विलुप्ति के कगार पर ले जाकर इन भाषाओं में अपना जीवन संजोने की सोचेंगे तो हम विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने से गंवा देते हैं। और विरासत का हिस्सा गंवाने का मतलब है उस दौलत को कहीं पीछे छोड़ देना जो पुरखों से मिली है, जो अनमोल खजाना है, जिसे आज तक कोई नहीं छीन पाया था, लेकिन एक अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान न होने के कारण हम खुद उसे गंवा बैठे। वो हमारे हाथों के वो मोती थे कि हम आसमान के तारे छूने चले और जो हाथों में मोती थे उनको हमने पहले छोड़ दिया। तो अपना जो धन जो हमारे हाथों में हमें जन्म से मिला है उसे संजोने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि आज जो प्योंद खड़ी हो रही है उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रीय बोलियों से अवगत कराने का। उसके बाद पढ़ाई लिखाई यानी कि शिक्षित किस भाषा में होना है, साक्षर किस भाषा में होना है, क्योंकि एक मनुष्य साक्षर तो किसी भी भाषा में हो सकता है और कितनी भी भाषाओं में हो सकता है, लेकिन वो शिक्षित केवल और केवल मातृभाषा के ज्ञान से होता है। आज यदि कहीं पर भी मैं ये पढ़ूं कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, यदि उसका अर्थ सही मायने में मुझे अपनी मातृभाषा माँ बोली में नहीं पता तो मैं अपने जीवन में उसे उकेरने में सक्षम भी नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यक है कि जो भी अच्छी बातें बुरी बातें हमें अपने जीवन के लिए क्या चुनना है, सही और गलत का चुनाव करने की जो भाषा है वो हमारी मातृभाषा जो हमारी माँ ने परवरिश में हमें दी है, और वो भाषा वो बोली वो होनी चाहिए जो विरासत में हमें मिली है। हम किस वंश से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, तभी संस्कृति बचती है और तभी संस्कार बचते हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको एक गीत सुना देते हैं।

हमारी आवाज़, हमारे शब्द वो गूंज है जो केवल हमारे व्यक्तित्व का परिचय नहीं कराती, बल्कि हमारी आत्मा का चित्रण इस दुनिया के सामने लेकर आती है। हमारे संस्कार से ही हमारा संसार बनता है। इस संसार में भले ही ये पृथ्वी कितनी ही बड़ी हो, कितने भी लोग रहते हों, कितने भी योनियां हों, कितने भी जीव हों, जल हो, पर्वत हो, लेकिन इस असीमित सी दुनिया में हमारी भी एक छोटी सी सीमित सी दुनिया होती है, और वो सीमित सी दुनिया हमारे शब्दों से, हमारी आवाज़ से, हमारे संस्कारों से बनती है। उस संसार में केवल वो संस्कार सुघड़ माने जाते हैं, सशक्त माने जाते हैं, और सही मायने में समाज के अनुरूप माने जाते हैं, जिनमें जीवन का वो पहलू विद्यमान होता है जो हमारी जड़ों से जुड़ता है। और जड़ों से जुड़ने का जो चित्रण है वो हमारे शब्द करते हैं, और शब्द जब माँ बोली में होते हैं तब उनका प्रभाव ऐसा होता है कि हर कोई सुनने को आतुर होता है। आज यदि हमें वास्तविक रूप में, मौलिक रूप में कुछ भी करना है, कोई भी खोज करनी है, रचना करनी है, तो यदि हमारे दिमाग में हमारी माँ बोली या हमारी माँ का प्यार, घर का प्यार, विरासत का प्यार, विरासत का आशीर्वाद नहीं है तो हम नहीं कर सकते। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस जिसने भी कुछ ना कुछ अद्भुत या विलक्षण इस दुनिया को दिया है, उसने अपनी ही जड़ों से जुड़ कर दिया है। जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो एक ठूंठ वृक्ष के समान हो जाता है, जिसे लोग और दुनिया अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करती है। कोई उससे फर्नीचर बनाता है तो कोई उसे जलाकर खाना पकाने के या किसी और काम के लिए प्रयोग में लाता है, यानी कि उसकी अपनी मौलिक पहचान मिट जाती है। इसलिए अपनी भाषाओं से, अपनी बोलियों से, अपने संस्कार से, अपने संसार से जुड़े रहिए। आदमी हैं, इंसान हैं, एक दूसरे से प्यार करते रहिए और इंसानियत से जीते रहिए।

ये समाज मनुष्य से बनता है और मनुष्य संस्कारों से। जब तक नैतिकता जिम्मेदारी मनुष्य के किरदार में विद्यमान रहती है, तब तक मनुष्य कभी भी ऐसी गलती नहीं करता जिसको वो सुधार ना सके। जब तक मनुष्य धरती पर है, वो चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, आसमान में कितनी भी उड़ान क्यों ना भर ले, वो अपने घर, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गांव अवश्य लौटता है, वहाँ की तरक्की के बारे में सोचता है, अगली पीढ़ी की तरक्की के बारे में सोचता है और पिछली पीढ़ी से जो मिला है उसे संजोने की कोशिश करता है। जीवन के सफ़र में उसके सामने राहें कैसी भी क्यों ना हों, वो साहस और दुस्साहस के बीच के महीन अंतर को समझ कर, सही का चुनाव कर, आगे सशक्तिकरण के साथ बढ़ता रहता है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में और मानव की तरक्की के बारे में। विज्ञान का सूर्य जैसे जैसे ऊंचा होता जा रहा है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी अंधकार में आ रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां हम आए दिन सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी लत सुन रहे हैं। ये सभी तभी पनप रही हैं जब हम अपनी जड़ों से दूर हैं। जब मनुष्य अपनी जड़ से जुड़ेगा और साथ में विज्ञान के साथ तरक्की करेगा।

करेगा तब वो गुलामी नहीं करेगा, विज्ञान को के ऊपर मालिक बनेगा, विज्ञान के तहत गुलामी नहीं कर पाएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हमें आए दिन सुनने को मिलता है कि नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियां उसी की जाएंगी जो इसको इसमें पारंगत नहीं होगा। तो एआई को अपना स्लेव बनाएं, अपना नौकर, अपना सेवक बनाएं, अपना मालिक ना बनाएं। मालिक खुद बने रहने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना ज़रूरी है। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम सुबह सवेरे इसी के साथ संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27

0: मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
6: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
5: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The Myanmar president will then travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of Mr. Hlaing to India in his current capacity. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. More from our correspondent.
7: According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess were introduced on March 27 this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. The revised duties will come into effect from tomorrow and remain in force for the next fortnight. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
5: The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs, and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The Election Commission has convened a national conference of Election Commission of India Councils 2026 in New Delhi to further strengthen its legal framework. Inaugurating the conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said that fair rules lead to fair polls. He also hailed booth-level officers and booth-level agents at the foot soldiers of electoral roll management. He also highlighted the high level of contestation during the recent assembly elections in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Skycar system at IGI Airport in New Delhi. The minister said that advanced weather monitoring systems like Skycast can significantly improve flight operations during fog and turbulence. He added that as this technology expands to more airports across the country, it will strengthen safety and enhance the travel experience for passengers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Maharashtra, death toll in the Pune spurious liquor tragedy has risen to 21. The victims include 7 people from Pune city and 14 from Pimpri, Chinchwad and Uruli Kanchan areas. So far, 10 persons have been arrested in connection with the case. The investigation has been handed over to the Crime Investigation Department, CID. In a major administrative action, 22 officials have been suspended for alleged negligence in the discharge of their duties. Those suspended include 9 police personnel and 13 officials from the State Excise Department. Jammu and Kashmir Minister Sakina Itu has announced summer vacations for all government and private colleges falling under the summer zone of Jammu Division from 1st of June to 15th of July. The minister said the decision has been taken in view of the onset of the summer season and to ensure the well-being of students, teaching faculty and college staff. The minister further informed that regular academic activities in all colleges will resume after the conclusion of the vacation period on 15th of July. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Keralam, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. In Keralam, yellow alert has been sounded in 6 districts for today. More from our correspondent.
8: 6 of the 14 districts in Keralam is under yellow alert today, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated heavy rainfall and winds up to the speed of 40 km per hour is forecasted across Keralam over the next 4 days. The onset of monsoon has not yet been officially declared in Keralam. No heavy rainfall was recorded in the northern part of Keralam this morning, while the southern districts have received up to 5 mm of rain since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
5: Moreover, heavy rainfall is also expected over Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and the northeastern parts of the country till tomorrow. IMD said thunderstorms accompanied by hailstorm are very likely at isolated places over East Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh today. While thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected at isolated places over Delhi, Haryana and Chandigarh till tomorrow. World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco. The day is a global initiative by the World Health Organization to end the use of tobacco. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. We have a report.
9: As part of the observance in India, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava on Friday launched the pilot version of the Tobacco Free Education Institution's application in New Delhi. The application aims to strengthen implementation and monitoring of tobacco-free norms across schools and colleges in the country. It will also facilitate self-assessment and reporting by educational institutions, monitor compliance with tobacco-free guidelines, ensure implementation of tobacco control signage, and help prohibit the sale of tobacco products within 100 yards courtyards of educational institutions. Addressing the gathering, Srivastava said that more than 2,000 tobacco cessation centers have been established across the country in hospitals, medical colleges, Ayush institutions and other healthcare facilities. With Vishnu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: In cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the IPL 2019.

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक आयोजन बाल कुंज।

0: जय हिंद
1: साथियों, आज मैं दृष्टि
2: और मैं पंकुरी
1: आप सभी का इस बालकुंज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
3: साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों तथा कई अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बनता है।
1: तंबाकू के कारण हर साल दुनिया में 7 लाख लोगों की मौत होती है। इतना ही नहीं, सेकेंड हैंड स्मोक से भी लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। इसका मतलब धुआं सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है।
3: दृष्टि, क्या आप जानती हैं, विश्व दूध दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व तथा स्वास्थ्य में उसकी भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध एक संपूर्ण एवं पौष्टिक आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व दूध दिवस हमें संतुलित आहार में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करता है। क्या आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे दृष्टि?
1: ज़रूर। आजकल फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड का चलन इतना बढ़ गया है कि हम अपने पारंपरिक खान पान को छोड़कर इनके पीछे भागने लगे हैं। जबकि फास्ट फूड और पैकेट बंद खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसे में विश्व दूध दिवस हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध के महत्व के बारे में बताता है। दूध हमें देता है मजबूत हड्डियाँ, तेज दिमाग और ढेर सारी एनर्जी। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होता है। यही वजह है कि इसे व्होल फूड यानी संपूर्ण आहार कहा जाता है। और हाँ, दूध से बनी अन्य स्वादिष्ट चीज़ें जैसे दही, पनीर हमें सेहत और मजा दोनों देती है।
3: साथियों, अब सुन लेते हैं एक गीत।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा पंखुड़ी।
2: तो अब कर लेते हैं अपने साथियों से बात। पहला साथी अपना नाम बताए।
3: आराध्या।
2: आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं आपको गर्मी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
2: बताइए।
3: गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए यानी हम सबके लिए बहुत रोमांचक मौसम है। यह धूप और गर्म वातावरण तो लाता है लेकिन हमारे लिए छुट्टियाँ भी तो लेकर आता है। इन छुट्टियों में हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को ज़्यादा समय दे सकते हैं, जैसे ड्राइंग, डांस, बैडमिंटन या फिर स्विमिंग। छुट्टियों में मौज मस्ती तो ठीक है लेकिन हमें खुद को तेज़ धूप से बचाना और हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए सबसे पहले आप भरपूर मात्रा में पानी पिए और तरबूज, छाछ, खीरा, नींबू पानी का सेवन करें। गर्मी के मौसम में ढीले और कॉटन के कपड़े पहनें। जब भी घर से बाहर निकलें तो टोपी, छाता और सनस्क्रीन का प्रयोग करें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और अपनी छुट्टियों की मौज मस्ती को कायम रख सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपनी रुचियों के अनुसार कुछ नया सीखते रहें। कहते हैं ना, देर इज़ नो एज फॉर लर्निंग।
0: आराध्या, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
3: धन्यवाद पंखुड़ी।
2: अगला साथी अपना नाम बताएं।
4: दैविक।
2: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
4: गर्मी पर एक कविता
2: सुनाइए।
4: गर्मी इतनी पड़ रही, होता ना कुछ काम, एसी, कूलर, पंखे सब हो रहे नाकाम, सब हो रहे नाकाम, हमें ये मुंह चिढ़ाए, बिजली वाले ही देखो मौज मनाए, धरती पर बढ़ रहा देखो कितना ताप, दोपहर जो घर से निकले बन जाए वाफ, जो बिन छतरी के जाए, आम बेल लस्सी के संग मौज मनाए, पसीने से है तर हुए गला, रहा जा रहा है सूखा, हाय हाय करता भूख और मच्छर भी सताए, दरखत नीचे खाट बिछाए, चलो मौज मनाए, इंद्रदेव नाराज है, मानसून अभी दूर, प्रदूषण है बन

0: गया धरती का दस्तूर। धरती का दस्तूर होश में अब आओ, पर्यावरण संरक्षण संदेश संग मौज मनाओ। धन्यवाद
1: साथियों, अब सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किया गया ये कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है काला हिरन।
2: तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
3: दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। गंगा की तराई में एक जंगल था, बहुत ही बड़ा और घना। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। इस जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में लगभग 50 हिरन थे। इन हिरनों का मुखिया काले रंग का था। काले रंग के हिरनों की प्रजाति संसार में लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल इस जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और दो सुंदर छोटे छोटे बच्चे। दोस्तों, एक दिन की बात है, जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार के लिए आया। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था।
4: उफ, कितना बड़ा जंगल है।
5: बाप रे,
4: खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।
5: हाँ, ठीक कहते हो तुम राजेंद्र। सुबह से दोपहर हो गई, मगर एक शिकार भी हाथ नहीं लगा।
4: मेरा तो प्यास से बुरा हाल है।
5: मेरा भी।
4: आज गर्मी बहुत है, ना जाने राजकुमार का क्या हाल है। अरे देखो, राजकुमार भी इधर ही आ रहे हैं।
5: अरे हाँ।
4: आओ, उनके पास ही चलते हैं।
5: ठीक है, चलो। राजकुमार की जय हो।
6: क्या समाचार है?
4: हमने जंगल में बहुत आगे तक जाकर देख लिया राजकुमार, पानी कहीं नहीं मिला।
5: जी,
6: धीरज रखो राजेंद्र, धीरज रखो। हमारे पास थोड़ा सा पानी अभी भी बचा हुआ है, चिंता ना करो, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं।
4: जी,
6: वो सामने बहुत ही बढ़िया छायादार पेड़ है।
5: जी राजकुमार,
6: क्यों ना वहीं चल के विश्राम किया जाए।
5: जी
4: जी, आइए चले।
5: चलिए चलिए राजकुमार,
4: यही ठीक रहेगा। वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है।
5: हाँ भाई, वाह वाह, इस हवा ने तो सारी थकान ही मिटा दी।
6: मगर दिलीप, इस चिलचिलाती धूप में हवा इतनी ठंडी हो नहीं सकती।
4: क्या मतलब?
6: मतलब ये कि यहाँ आसपास कोई झील या नदी जरूर है।
4: हाँ, आप ठीक कहते हैं राजकुमार। हवा दक्षिण दिशा से आ रही है, इसका मतलब है
5: दक्षिण की ओर कहीं पानी है।
6: बिल्कुल ठीक। आओ दिलीप, राजेंद्र, उसी तरफ चलते हैं।
4: जी, चलिए राजकुमार।
3: हाँ दोस्तों, उनका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई, मगर तभी एक आहट हुई। वो चौकन्ने हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया था, ये उसी की आहट थी। दोस्तों, सबसे आगे काला हिरन था। काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। काले हिरन को वो सब मंत्र मुग्ध से देखते रह गए। लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक उठाते, हिरनों को भी शिकारियों की भनक लग चुकी थी। वो कुलाचे मारते हुए घने जंगल में भाग गए। लेकिन दोस्तों, सभी शिकारियों ने उस काले हिरन को देख लिया था, और राजकुमार को तो वो हिरन इतना पसंद आया कि वो अपनी सुदबुद्धि खो चुका था। वो किसी भी तरह उस काले हिरन को पकड़ना चाहता था, मगर दोस्तों तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मन महसूस कर सभी वापस लौट गए, लेकिन वो काला हिरन चर्चा का विषय बना रहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने राज्य के कई चतुर शिकारियों को बुलाया। बड़े बड़े जाल लेकर वो लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने उस झील के किनारे अपने जाल बिछा दिए और दम साधे वो हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे।
5: वाह वाह वाह, क्या हिरन था।
7: भाई, मैंने हिरन तो बहुत देखे हैं, मगर कभी किसी काले हिरन के बारे में नहीं सुना राजकुमार।
6: तुमने शायद सुना तक ना हो, लेकिन हमने तो उसे अपनी आंखों से देखा, इसी झील के किनारे। वाह, क्या बात थी, कितना सुंदर,
8: कितना अद्भुत। उसकी आंखें तो मानो,
7: अब बिल्कुल चुप हो जाइए।
8: हाँ।
7: हिरण बहुत चौकन्ने होते हैं, कहीं हमारी आवाज उन्होंने सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी।
8: अरे वो देखो, हिरणों का एक झुंड, वो झील के उस पार,
7: और आगे आगे चल रहा है वो काला हिरण।
3: दोस्तों, हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया और उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ में कई हिरण जाल में फंस गए। फंसने वालों में काला हिरण भी था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वो बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था। अरे, मगर ये क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरण को जाल में फंसा देखकर भागते हिरण रुक गए। सारे हिरण एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। और दोस्तों, उसी समय काली हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वो धीरे धीरे हिरण के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या, राजकुमार को ये सब सपना जैसा लग रहा था। वो भी थोड़ा आगे बढ़ा। वो सोचता था उसके पास जाने से हिरनी भाग खड़ी होगी, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, मगर उस समय वो सब भूल गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो इस दृश्य को अपलक देखता ही रह गया।
9: फंस गया काला हिरण जाल में, अब पकड़ लो इसे।
7: राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ आपको?
9: राजकुमार जी बोलिए ना,
4: क्या हो गया राजकुमार?
8: नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा इस काले हिरण को।
7: बड़ी मुश्किल से तो जाल में फंसा है।
8: मैंने कहा कोई नहीं पकड़ेगा इसे।
9: जी जी राजकुमार जी।
8: प्रेम के इस अद्भुत उदाहरण को देखकर अरे किसका दिल नहीं पिघल जाएगा? बोलो, क्या हम लोग इतने निर्दयी हो गए? नहीं, इस काले हिरण को कोई नहीं पकड़ेगा, बल्कि आज के बाद हमारे राज्य में पशुओं को कोई नहीं मारेगा, मैं भी नहीं, कभी नहीं। यह मेरी प्रतिज्ञा है।
3: हाँ दोस्तों, हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी घर लौट आए। दोस्तों, रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरण राजकुमार के बगीचे में आए। राजकुमार की आंख खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर देखा, सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक वो राजकुमार के पास खड़े रहे और फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। दोस्तों, उस दिन के बाद हर रोज वो राजकुमार के बगीचे में आने लगे। राजकुमार ने राजा से कहकर जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। और दोस्तों, तभी से सभी जानवर निर्भय होकर जंगल में सुख से रहने लगे।
1: कार्यक्रम कैसा लगा साथियों?
10: बहुत अच्छा पंखुड़ी।
11: दोस्तों, फादर्स डे मदर्स डे के बारे में तो हम सबको पता है, पर कल यानी 1 जून को हम मना रहे हैं विश्व अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स। क्या आपने सोचा है माता पिता हर दिन हमारे लिए क्या क्या करते हैं? जैसे सुबह आपको जगाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, स्कूल भेजते हैं, होमवर्क करने में मदद करते हैं, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और हमें खूब प्यार करते हैं। ऐसे तो साथियों, हमें हमेशा अपने माता पिता व बड़ों का सम्मान करना चाहिए। फिर भी ये दिन हमें अवसर देता है कि हम उनके प्रति अपने प्यार व सम्मान को जाहिर करें और उन्हें थैंक यू बोल सकें। साथियों, ये दिन सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि दादा दादी, नाना नानी व अन्य कोई भी परिवार के सदस्य जो बच्चों का ख्याल रखते हैं यानी हमारे अभिभावक, उन सब के योगदान को नमन करने का है। तो दोस्तों, आज ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स पर अपने माता पिता के लिए कार्ड बनाओ, गाना गाओ या बस उन्हें गले लगा कर कहो थैंक यू मम्मी पापा।
1: साथियों, विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण और यातायात के लिए इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। साइकिल एक सरल, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन है।
11: साइकिल चलाना तो हम सबका मन पसंदीदा खेल है और साइकिल चलाने के तो फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे साइकिल चलाना एक बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है, इससे शरीर मजबूत बनता है और कम दूरी तक सफ़र करने के लिए ये सबसे अच्छा साधन है। इससे ना ही तो कोई खर्चा होता है और ना ही प्रदूषण, है ना ये कमाल का साधन। तो दोस्तों, अब से हमें साइकिल को अपने रोज़मर्रा के उपयोग में अपनाना है। पास की दुकान से सामान लाना हो, दोस्त के घर जाना हो, पार्क जाना हो, इन सब कामों के लिए साइकिल का उपयोग करें और अपने परिवार व आसपास के लोगों को इसका उपयोग करने के लिए कहें। और हाँ, साइकिल चलाते हुए यातायात के नियमों का पालन ज़रूर करें।
1: दृष्टि, अब हम बात कर लेते हैं अपने बचे हुए साथियों से।
11: पहला साथी अपना नाम बताएं।
1: आयुष, आप हमें क्या सुनाएंगे?
12: एक कहानी
1: सुनाइए।
12: एक किसान बहुत ही मेहनती था, खेतों में काम करता था, फसल उगाता था और खुशी खुशी रहता था। एक दिन किसान खेत जोत रहा था, तभी जंगल में से निकलकर एक भालू वहां आ गया। भालू बोला, ए किसान, मैं तुझे खाऊंगा। किसान बोला, मुझे क्यों खाते हो भैया, मैं जो फसल उगाऊंगा उसमें से आधे तुम ले लेना। भालू बोला, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर वाली फसल मेरे हिस्से की होगी, तुम्हें जमीन के नीचे का हिस्सा लेना होगा। किसान मान गया। किसान ने खेत में आलू बो दिए। फसल तैयार हो गई तो उसने भालू से कहा, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा और नीचे वाला मेरा। भालू के हिस्से आए पौधे और किसान आलू खोदकर घर ले गया। अगली बार भालू ने कहा, इस बार की फसल का जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा। किसान ने कहा, ठीक है। इस बार किसान ने खेत में गेहूं बोया। फसल पककर तैयार हो गई। किसान ने जमीन के ऊपर के पौधे काट लिए, गेहूं के दाने निकालकर घर ले गया। भालू को मिली जमीन के नीचे की जड़ें। भालू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह किसान तो बहुत चालाक है। सोच समझकर बोला, इस बार की फसल का सबसे ऊपर और सबसे नीचे का हिस्सा मेरा होगा। किसान ने कहा, ठीक है। इस बार किसान ने फिर गन्ना बोया। गन्ना जब तैयार हुआ तो किसान ने सबसे ऊपर के पत्ते और नीचे के जड़े काटकर भालू को दे दी। बीज का तना यानी गन्ना अपने घर ले गया। भालू ने अपना माथा पीट लिया। वह फिर किसान के पास कभी नहीं आया। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शीर्षक मिलता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए।
1: आयुष, आपने बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
13: सृष्टि,
11: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
13: एक कविता
11: सुनाइए।
13: जन्मे थे वो मथुरा में और वृंदावन में खेले थे, महाभारत के नायक थे और अर्जुन जिनके चेले थे। बाल कृष्ण की ऐसी लीला सबको ही हर्षाती है, बड़े बड़े असुरों की कुछ भी ना चल पाती है। दिखते थे वो भोले भाले, सांवले सुंदर और निराले, मथुरा के थे केशव माधव, नंद के गोपाल थे, अर्जुन के थे वासुदेव, कंस के वो काल थे, कंस के वो काल थे, जिनके आगे नतमस्तक सारा ये संसार है, ए मेरे गिरधर तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। धन्यवाद।
1: अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
14: तुषार।
1: तुषार, आप हमें क्या सुनाएंगे?
14: एक कविता
1: सुनाइए।
14: नींद खुली जब सूरज की, माँ को आवाज लगाई, जल्दी मुझे नहाना है, गमछा दे दो माई, डांट पड़ेगी देर हुई जो आसमान चिल्लाएगा, अंधेरे को इस दुनिया से कौन दूर ले जाएगा, झटपट कुछ खाने को दे दो तो अम्मा मैं जाऊं, रात बीतने लगी है अब तो सुबह मैं लेके आऊं, चिड़िया तितली फूल सभी देख रहे हैं राह, सबके भीतर उगाई है उजियारे की चाह, उजियारे की चाह। धन्यवाद।
11: तो साथियों, अब सुन लेते हैं एक गाना।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा पंखुड़ी।
0: इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी साथी मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम बालकुंज, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक कलाकार। एक कलाकार कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे किशोरदा के बारे में, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही सुन लेते हैं ये गीत।

0: के तले।
1: अभी आपने सुना गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में। श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं सुरों के जादूगर किशोर कुमार के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस अनूठे कलाकार को जिनकी आवाज़ में शरारत भी थी, संवेदना भी, रोमांस भी और जीवन का दर्शन भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। आइए उनके सदाबहार गीतों के साथ आज का ये फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। कार्यक्रम में अगला गीत है दिल्ली का ठग फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी।
2: कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।

0: L-I-O-N, goat. Goat माने बकरी. L-I-O-N, lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, madam.

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। एक कलाकार में हम बातचीत कर रहे हैं किशोरदा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि किशोरदा ने कभी भी बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली। इसके बावजूद उनकी गायकी में जो सहजता और भावनात्मक गहराई थी, उसने उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम गायकों के मध्य स्थान दिलाया। वो अक्सर कहते थे कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार उनके सबसे बड़े गुरु हैं। किशोर कुमार जी की ही आवाज़ में अवतार फिल्म का सुनते हैं ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने सुना अवतार फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोर कुमार जी अपनी आदतों के लिए भी मशहूर थे। उनकी अनोखी आदतों में से एक आदत थी, कहा जाता है कि वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा कर रखते थे, बी वेयर ऑफ किशोर कुमार। कई बार मिलने आने वाले लोग ये पढ़कर चौंक भी जाते थे, लेकिन जो उन्हें करीब से जानते थे वो उनकी संवेदनशीलता और सरल प्रकृति की खूब सराहना करते थे। कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत धर्मात्मा फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन नियति हमसे कुछ और करवा देती है। किशोर कुमार आरंभ में अभिनेता बनना चाहते थे, नायक बनना चाहते थे, किंतु उनकी आवाज़ ने उनको बेताज बादशाह सुरों की दुनिया में बनाया। उनकी आवाज़ इतनी लोकप्रिय हुई कि वो अभिनय से कहीं ज़्यादा गायकी के लिए पहचाने जाने लगे। फिल्मी दुनिया में किशोर कुमार और आर डी बर्मन की जोड़ी को आज भी स्वर्णिम जोड़ी माना जाता है। पंचमदा अक्सर नई धुन बनाने के बारे में सोचते थे कि इस गीत को किशोर कुमार किस अंदाज में गाएंगे। यही कारण है कि दर्जनों गीत अमर गीत बन गए।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।

जीने में विश्वास रखते थे। वे अपनी शर्तों पर जीने वाले कलाकार थे और यही स्वतंत्रता उनकी गायकी में भी सुनाई देती है। और इस गीत से आप भी महसूस करेंगे, और शायद ये गीत ऐसा है कि जब भी हम समाज और खुद की मर्जी चुनने के बीच में अपने कश्मकश में खुद को पाते हैं, हम सही कर रहे होते हैं तो भी समाज का ख्याल आता है, तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए शायद ये गीत हम में से सभी ने किसी न किसी समय पर ज़रूर गुनगुनाया होगा।

रचना मिश्र और सुमन मलिक जी के साथ श्रोता मंच कार्यक्रम में आप अपने सुझाव और अपने प्रश्न कर सकते हैं लाइव फोन के जरिए। कार्यक्रम श्रोता मंच आज शाम 7:30 पर होगा। कार्यक्रम एक कलाकार को जारी रखते हुए अगला गीत आपको सुनाते हैं बेगाना फिल्म से।

अभी आपने सुना गीत अमर प्रेम फिल्म से। इसी के साथ एक ज़रूरी सूचना, आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रोता मंच। कार्यक्रम होगा

कहते हैं कि किशोर कुमार किसी भी गीत को रिकॉर्ड करने से पहले उसके भावों को पूरी तरह महसूस करते थे और शायद यही वजह थी कि उनके रोमांटिक गीत सीधे श्रोताओं के दिल में पहुंच जाते थे। किशोर कुमार की आवाज़ पर कई बड़े सितारे पर्दे पर नजर आए, लेकिन विशेष रूप से राजेश खन्ना के लिए गाए गानों ने इतिहास रच दिया। एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना की लोकप्रियता और किशोर कुमार की आवाज़ एक दूसरे का पर्यायवाची बन गई थी।

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

0: कुछ गीत किशोर कुमार की गायकी की भावनात्मक ऊंचाई का शानदार उदाहरण है। उनकी विशेषता थी कि बिना किसी दिखावे के केवल अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से भाव व्यक्त कर देते थे। ऐसा ही गीत है फिल्म अनोखी अदा से। आप सभी के लिए आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, एक कलाकार कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं किशोरदा की, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष सूचना, आज 7:30 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रोता मंच लाइव सुमन मलिक मैम और अर्चना मिश्रा मैम के साथ, और आज 10:55 पर विशेष सभा में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात। हम बात कर रहे हैं एक कलाकार कार्यक्रम में किशोरदा की, और सुनवा देते हैं आपको ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ केवल गीत नहीं बल्कि यादों का एक संसार है। उनकी गायकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह प्रेरित और आनंदित करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं आज के लिए ये अंतिम गीत।

0: कार्यक्रम एक कलाकार में आज हमने बातचीत की किशोर कुमार जी के बारे में। ये कार्यक्रम आज के लिए यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor.
4: The cowardly terrorist attack in Pehelgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
3: Center has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on President of Myanmar U Min Aung Hlaing yesterday evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. He said that he is looking forward to the meeting of Mr. Hlaing with Prime Minister Narendra Modi to advance the partnership for peace, progress and prosperity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Earlier yesterday, President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. President Hlaing is on a 5-day visit to India. Prime Minister Narendra Modi today paid tributes to Lokmata Ahilyabai Holkar on her birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said that the entire nation remembers her with respect and honour for her intelligence, compassion and unwavering dedication to public welfare. The Prime Minister noted that Ahilyabai's life is an exemplary model of good governance, patriotism and cultural pride. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has urged countries that have imposed travel bans or closed borders in response to the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda to reconsider such measures, saying that they can hinder response efforts. Speaking in Bunia in eastern Congo, the epicenter of the outbreak, he said such restrictions can make outbreak control more difficult and undermine transparency and trust, which are essential for saving lives. In IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of 2026 season at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:10 हुए हैं। अब हमारे आज की पहली सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। 10:55 पर विशेष सभा में आपसे फिर भेंट होगी। FM बैंड 103.5 MHz पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। 10:55 पर विशेष सभा में आपसे फिर से भेंट करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

0: मीडियम वेव 262.7 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 10:55 हुए हैं। हमारी विशेष सभा अब प्रारंभ होती है। थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई,
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
0: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
7: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
2: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
7: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
2: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
7: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा, तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
2: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
2: अच्छा देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
2: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
7: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहाँ पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
2: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
7: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
13: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
14: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु

आरजू फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार की कहानी फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ आप सुनेंगे। आर डी बर्मन का संगीत है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

प्यार की कहानी फिल्म का गीत आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया हुआ सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आरटी परमन का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं सबक फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है, सावन कुमार के बोल हैं, संगीतबद्ध इस गीत को किया है उषा खन्ना ने।

ये था सबक फिल्म का गीत। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी, सावन कुमार के बोल थे, संगीत था उषा खन्ना का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ आप सुनेंगे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है नौशाद का।

ये था लता मंगेशकर का गाया साथी फिल्म का गीत। इसे संगीतबद्ध किया था नौशाद ने, लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपके विचारों का, सुझावों का, मार्गदर्शन का, आपकी टिप्पणियों का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में हार्दिक स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर फ़ोन करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448।

श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 7:30 बजे। ये था अनुरोध आपसे, और बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत। लता मंगेशकर ने गाया है, जानिसार अख्तर ने रचा है, खय्याम का संगीत है।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना ममता फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत एस डी बर्मन का, आवाज़ लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर का गाया ममता फिल्म का ये गीत था। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था रोशन ने, और ये था आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना। श्रोताओं की पसंद पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे इसी सभा में 1:10 से। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगन।

0: घरांगन कार्यक्रम की सभी श्रोता बहनों को स्वाति का प्यार भरा नमस्कार और आराधना आपको भी मेरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को आराधना का भी नमस्कार और स्वाति आपको भी मेरा नमस्कार।
0: देखिए 31 मई की तारीख है और अब छुट्टी छुट्टी जो खेल है वो हम खेलने वाले हैं बच्चों के साथ, ठीक है ना। बच्चों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं और हमारे लिए चाहे थोड़ा सा काम बढ़ने वाला है बच्चों के साथ, लेकिन जो मजे हैं इन छुट्टियों में वो हम बच्चों के साथ करने वाले हैं। घर में रहकर चाहे आप बाहर का कहीं टूर बनाएंगे, चाहे घर में आप एंजॉय करें, तो छुट्टियों की मैं बहनों को
1: बच्चों के साथ समय बिताने का एक अच्छा
0: है, तो इसकी भी शुभकामनाएं दे देते हैं बहनों को। और 31 मई की ही तारीख और भी खास है एक दूसरे गंभीर विषय के लिए, जिसकी समस्या या कहें जिस प्रवृत्ति के हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा आजकल संख्या बढ़ रही है और वो है तंबाकू के सेवन की। इसी को रोकने के लिए आज पूरी दुनिया में आराधना मनाया जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
1: तंबाकू का जो सेवन है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए स्वाति एक धीमा सा जहर है, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा जैसे उत्पादनों में निकोटीन व अन्य खतरनाक रसायन होते हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला कर देते हैं।
0: बहुत ठीक कहा आपने, देखिए कितने आपने तरीके बताए हैं, बहुत से ऐसे ये व्यसन के तरीके हैं जिसकी वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी है चाहे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको लत लग चुकी है इसकी, वो इससे चाहकर भी निकल नहीं पाते हैं। और देखिए तंबाकू के सेवन से 15 प्रकार के कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारियां, स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है,
1: अस्थमा, हार्ट अटैक तक बहुत ज़्यादा इस तरह की गंभीर बीमारियाँ
0: और इसमें जो
1: रहता है और गले का कैंसर खास तौर पर।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने और इसीलिए यही कारण है कि दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, स्वास्थ्य संगठन हैं, समाज और सभी युवा और समाज के वे लोग जो चाहते हैं कि इस बीमारी या कहें कि इस व्यसन को पूरी तरह से मिटाया जाए, सब एकजुट हो रहे हैं आज के दिन

0: फिर सबसे मुख्य चीज़ आराधना, शायद आप भी सहमत हो, परिवार के सदस्यों का कम समय देना, खासतौर पे माता पिता का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता ये भी बनती है कि बीमारी ये बन रही है या कहें कि व्यसन बढ़ रहा है, तो कारण क्या है इसके पीछे, उन कारणों को ही खत्म किया जाए। बच्चों को समय दीजिए, उनको आप
1: बैठिए उठिए
0: उनके साथ
1: उनके
0: बैठिए
1: पास।
0: उठिए, और उनको ये मौका ही ना दीजिए कि वो कुछ और दूसरा रास्ता अपने आप को आराम या रिलीफ देने का इस रूप में ढूंढे, जो बहुत ही गलत है। तो युवाओं के लिए तो है ही ये चीज़ सोचने की, पूरी समाज के लिए सोचना है, क्योंकि WHO के अनुसार आराधना 13 से 15 साल तक की आयु के किशोर तंबाकू का सेवन करते हैं। देखिए कितनी सोचने वाली बात है, ये हमें कहीं
1: गंभीर विषय है।
0: गंभीर विषय है। और देखिए भारत में अगर हम बात करें तो दुनिया भर के तकरीबन 12% जो लोग हैं धूम्रपान करने वाले, वो हमारे ही देश में रहते हैं। और इसके अलावा हर वर्ष 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू से संबंधित गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए मर जाते हैं। तो देखिए इतने दुष्प्रभाव हैं घर में, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, कोई भी है। हम समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर अपने बुजुर्गों को भी इस लत से दूर रहने के लिए कहें। कई बार होता है कि बड़े लोग हैं उनको ये व्यसन लग चुका है, तो बच्चे उनको देखकर सीखते हैं कि
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: सही
0: ही
1: कह रही
0: आम
1: हैं।
0: सी चीज़ है, शायद इसको हम भी अपना लें। तो कहीं ना कहीं रोकना है। और दूसरी तरफ चलें तो पर्यावरण के हिसाब से भी जो तंबाकू की खेती है उसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। तो क्यों ना इसको रोका जाए, समय रहते हम सचेत हों।
1: सचेत हो और समझाया जाए कि इसी जगह पर और खेती कर सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं, उससे भी आप मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और ऐसे में कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसे विक्रेता जो अपने मुनाफे के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी हम सचेत करेंगे। उनको हम ये उनसे हम एक तरह की गुजारिश ही कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश हित में, हमारे युवाओं के हित में, आप स्वयं भी इस बात को लेकर सजग रहें कि आज का दिवस पूरी तरह से सार्थक हो। लोगों के साथ साथ हर विज्ञापनकर्ता, हर सरकार, हर व्यक्ति ये सोचे कि तंबाकू को जड़ से मिटाना है और देश को आगे ले जाना है, तो
1: सही
0: देश
1: कह रही
0: हमारा
1: हैं।
0: आगे बढ़े, यही हम चाहेंगे। बात हम कर रहे थे बच्चों को समय देने की, तो समय तो देखिए एज अ पेरेंट हमें नहीं लगता कि हम चाहे किसी भी संबंध में हों, चाहे हम माता पिता की भूमिका निभा रहे हों, भाई बहन की भूमिका है, बहनों बहनों की भूमिका है, ठीक है, और दोस्त की भूमिका है, समय हमें हर रिश्ते को देना होता है। और यही कारण है कि कल की तारीख 1 जून खास है। किस लिए?
1: हम मनाने जा रहे हैं ग्लोबल अभिभावक दिवस,
0: जी
1: और जिसमें कि ये जो माता पिता की जो निस्वार्थ समर्पण होता है और आजीवन के लिए सम्मानित करने हेतु तो समर्पित दिन है ये।
0: जी और सबसे मुख्य बात ये है कि निस्वार्थ, आपने जो शब्द बोला कि हम नहीं चाहते कि वापसी में हमें कुछ मिलेगा बच्चों से, हम ये काम कहीं ना कहीं ममता से भरकर और अपने दायित्व को समझते हुए करते हैं। तो क्यों ना इस दिवस को मनाया जाए, यही सोचकर ग्लोबल अभिभावक दिवस की शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2012 में, कि किस तरह से माता पिता और घर का वातावरण बच्चों को सुरक्षित वातावरण देता है, साथ ही साथ उनको सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है कि वो आगे बढ़ें, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं समझें कि अभिभावक हमारे लिए खास हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण है,
0: जी तो क्या किया जाए, कल के दिन कुछ भी कर सकते
1: कुछ
0: हैं
1: भी कर सकते
0: आप, एक
1: हैं।
0: लेटर लिख दीजिए
1: लेटर
0: अपने
1: लिख
0: पेरेंट्स के लिए,
1: बहुत अच्छे से,
0: कार्ड
1: उसमें
0: बना
1: बहुत अच्छी सी
0: लीजिए।
1: फीलिंग हो, बहुत कार्ड बना सकते हैं बहुत सुंदर सा,
0: जी
1: और उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, कि उनको ये जताने के लिए कि हम आपकी जो हमारी आप सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, हम इसको समझते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स पुराने गानों के शौकीन थे, उनकी पसंद के गानों की एक हम सीरीज बनाएं, खुद भी सुन लें, उनके साथ बैठकर गुनगुनाएं उन गीतों को, कितना अच्छा लगेगा उन्हें।
1: वो भी गुनगुनाएंगे साथ में।
0: बिल्कुल। कोई मूवी प्लान कीजिए उनके साथ, आप बाहर देखने के लिए फिल्म जा सकते हैं, डिनर प्लान कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप अगर दिन का एक मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड कर लें तो ये भी शायद अभिभावक दिवस मनाने का एक तरीका होगा। बच्चे छोटे हैं, शायद हमें तो बताना पड़ेगा उन्हें अभिभावक दिवस है, आप क्या करेंगे हमारे लिए तो कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे कोशिश करते हैं, आराधना मानती होंगे आप इस बात
1: बिल्कुल
0: को।
1: मानती हूँ मैं इस चीज को,
0: जी
1: बहुत कोशिश करते हैं और वो हर बात मम्मा मम्मा या कहते हैं कि पापा आएंगे, पापा से पूछेंगे,
0: जी
1: तो इतना तो ध्यान रखते हैं बच्चे बहुत अच्छे से।
0: तो कल का दिन खास रहेगा क्योंकि देखिए परिवार ही वह संस्था है जो बच्चों को शिक्षित करती है, सीखने में सहयोग करती है, और साथ ही साथ चुनौतियों से निपटने में भी हम बच्चों को सक्षम बनाते हैं।

यही नहीं कि आप उनको एक ऐसा सुरक्षित वातावरण दें कि बच्चा उसी में रहे और घर से निकलने की ज़रा सी भी सोचे तो माता पिता थोड़े से डरें। और देखिए, डर तो लगता है, बच्चा जो हमेशा से घर में रहा हो और वो आपको कहता है कि नहीं, 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए अब मैं प्लान कर रहा हूँ एक ट्रिप अपने दोस्तों के साथ, छुट्टियाँ हैं ऑब्वियसली जा सकते हैं बच्चे, थोड़ा सा मजबूत हमें भी बनना होगा। तो अभिभावक के रूप में हमें भी समझना है इस चीज़ को कि हमारे बच्चे उनका मनोबल कितना मजबूत हो, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें बच्चे को मजबूत करना है। कल का दिन इस तरह से खास होगा, ठीक है? तो कल का दिन भी मनाएंगे, सुन लेते हैं एक गीत भी प्यारा सा।

0: मेरे से ज्यादा बावड़े हुए रहते हैं मेरे।
1: तो बहनों, अभी आपने सुना ये गीत, और देखिए हम बात कर रहे थे कि हेल्थ या स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखा जाए, और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिल का जो हम कह सकते हैं रोल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आजकल जैसे दिल से जुड़ी बीमारियां भी आराधना बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो बहनों को एक जानकारी से भरी हुई बातचीत सुनवा देते हैं।
2: जी बिल्कुल, सुनवा देते हैं।
1: बातचीत का विषय है दिल स्वस्थ तो सब स्वस्थ, और ये हमारी पुनः प्रसारित बातचीत है डॉक्टर आदित्य बत्रा के साथ।
3: दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए। नीलम जी, आप शायद चौंक रही होंगी कि बहनों के कार्यक्रम में हम किस दिल की बात कर रहे हैं।
4: तो और मैं यही तुमसे जानना चाहती हूँ, कौन से दिल की बात कर रही हो?
3: देखिए, आज हम किसी कवि के दिल की बात नहीं कर रहे हैं, शेर व शायरी की बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत से फिल्मी गाने जो दिल पे बने हैं, दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए, या दिल ही तो है, या दिल का एतबार क्या, ये सब बातें नहीं करेंगे। आज हम उस जो वाकई का एक दिल होता है, हूबहू दिल से हम बहनों को परिचित कराने जा रहे हैं। और जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है,
4: दिल स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है।
3: बिल्कुल नीलम जी, एक बहुत ही अहम बात है, हमारी मस्तिष्क और दिल दो बातें हम करते हैं, और दोनों के बीच का जो फासला है उसको अगर हम लेके चलें तो कहीं हम शायद डर जाते हैं, एक पतली सी दीवार है कि क्या
4: बहुत कम फासला है इसमें।
3: जी हाँ बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि हेयर लाइन, एक थोड़ा सा फ़र्क है हमारा कि दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, लेकिन इसी बीच में बहुत कुछ फैसले कर जाते हैं। आज हम दिल की जो विषय को लेकर आगे चलेंगे, उसमें हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आदित्य बत्रा जी, जो कि DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं और रोहतक से हमारे इस स्टूडियो में आज उपस्थित।
4: तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: तो डॉक्टर साहब, बात दिल की है, नाजुक सी बात है, लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं हम कि क्या इस दिल का पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं।
5: सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूँ और सभी श्रोताओं को हार्दिक प्रणाम करता हूँ
3: जी।
5: और जो ये पहल आप लोगों ने की कि भाई अपने श्रोताओं को एक स्वस्थ दिल के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए उनको प्रेरित करने के लिए आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद।
3: जी डॉक्टर साहब, आपका तो इस विषय पर बहुत सारी आपकी जानकारी जो आपके पास है वो बहनें उत्सुक हैं सुनने के लिए। तो पहले पहल ये जो मैंने अभी पहले भी आपसे सवाल किया कि दिल का पूरे शरीर में क्या एक तरह से रोल है।
5: दिल एक वो हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन है जो सबको मालूम है कहाँ पर उपस्थित है, और वो 24 घंटे निरंतर जब से बच्चा माँ की कोख में होता है तब से लेके और मरने तक
3: धड़कता रहता है।
5: यही एक ऑर्गन है जिसे 2400 घंटे काम करके आपके शरीर के सभी अंगों को एक ब्लड सप्लाई, खून का दौरा और सभी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देनी होती है, जिसके कारण से ताकि हमारे शरीर के बाकी सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं।
3: डॉक्टर साहब, दिल धड़कता रहता है, इस धड़कन का क्या रोल होता है? आपने बताया अभी कि रक्त संचार, तो कैसे, मतलब उसका किस तरह से वो कार्य करता है?
5: धड़कने से हमारा अभिप्राय ये है कि हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन
3: जी,
5: एक करंट के कारण हार्ट की जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर जो ब्लड आता है, हार्ट उसको कॉन्टिन्यूसली पंपिंग करता रहता है, लगातार उस ब्लड को पंप करके वो उस रक्त को फेफड़ों में भेजता है ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके।
3: अच्छा।
5: उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई को वो सुचारू रूप से चला सके। उसके बाद जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है वो उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो शुद्धिकृत आपका रक्त होता है, वो शरीर के बाकी अंगों को उसी खून को सप्लाई करके और सारे ऑर्गन्स को उनको काम करने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है
3: जी। यानी कि जो रक्त है शुद्धिकरण के लिए हमारे फेफड़ों तक जाता है और पूरे शरीर में उस रक्त का, हमारी जो रक्त वाहिनी है, कोशिकाएं हैं, वो उसे भेजती रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है
5: जी।
3: जी जी,
4: तो जी कुछ पूछना चाह रही हूं। हमारी बहनें ये जानना चाहती हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं तनाव के कारण काफी, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है, तो इसके लक्षण क्या है?
5: थोड़ा सा मैं हटके शुरू करना चाहूँगा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही शुरुआत की कि सारी चीज़ें जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में, अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में, सब कुछ चीज़ें दिल और मस्तिष्क से उसको कोरिलेट करते हैं।
3: बिल्कुल।
5: तो इन सब चीज़ों का, मस्तिष्क का और दिल का एक आपस में बहुत ही क्लोज कोरिलेशन, एक आपसी संबंध है, ये किसी मियाँ बीवी या माँ बेटे से भी ज्यादा बढ़ के मैं कहूँगा संबंध है।
3: तभी वो एक कश्मकश में रहते हैं
5: जी।
3: जद्दोजहद चलती रहती है,
5: जद्दोजहद चलती रहती है, और उसी जद्दोजहद का आगे परिणाम ये होता है कि जो इतनी सारी बीमारियां, जैसे कि आपने बोला हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जैसे ही तनाव होगा मस्तिष्क से ऐसे सिग्नल्स क्रिएट होंगे, ऐसे ट्रांसमीटर्स, ऐसे केमिकल्स, रसायन सिक्रीट होने शुरू होंगे जो जाके सीधा दिल के ऊपर इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण से तनाव से ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे। यही एक कारण है कि आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके का लाइफस्टाइल, जिस तरीके की दिनचर्या हम लोगों की हो गई है, उसमें ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर्स और दिल की और मस्तिष्क की बहुत सारी व्याधियों को, रोगों को पैदा कर रही हैं।
3: यानी कि तनाव दिमाग में आया, मस्तिष्क में आया, उसका असर दिल पर आया और वो हार्ट अटैक की एक पोजीशन बन गई है
5: जी।
3: तो वो जो दोनों के बीच में जो संबंध है वो तो चलता ही रहेगा डॉक्टर साहब, जब जिंदगी है तो उसमें तनाव भी आएंगे, उसमें उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, तो किस तरह से कौन से ऐसे हिस्से को मजबूत किया जाए जो दिल पर कम से कम प्रभाव आए, वो क्या किया जाए?
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तनाव तो जब से बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके तनाव का लेवल, उसकी फैमिली बड़ी होती है, वो समाज से जितना ज़्यादा रूबरू होता है, उसको हर तरीके के लोग मिलते हैं, तनाव का लेवल बढ़ता जाता है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस तनाव को अपने शरीर में किस तरीके से उसको ग्रहण करते हैं और बॉडी से उस चीज़ का किस तरीके का प्रतिक्रिया उसकी उत्पन्न करते हैं। उस प्रतिक्रिया से मतलब है कि
3: रिएक्ट कैसे करते हैं।
5: जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि एक सेम बात होगी, उसी सेम बात पे एक आदमी उसको बड़े कंटेंटेड वे में, संतोषजनक तरीके से एक्सेप्ट होके, शांत चित रह के उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
3: बिल्कुल।
5: लेकिन वही दूसरा बंदा हो सकता है उसी चीज के ऊपर बहुत एग्रेसिवली होके रिएक्ट करेगा, बहुत गुस्से में आ जाएगा।
3: होता है कई बार कि किसी तनाव को पालने का, रखने का और उस पर रिएक्ट करने का।
5: ये चीजें जो तनाव पालने वाली आपने बात की, मैं कहूंगा कि ये बचपन से ही आपकी एक व्यक्तित्व नेचर में आ जाता है कि आप उस तरीके की एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व अपना पैदा करते जाते हैं कि उसमें सब चीजों का रोल है, आपके पालन पोषण पे, आपके माँ बाप पे, आपके घर की माहौल पे, आपके स्कूल के वातावरण पे, आपके सराउंडिंग्स के ऊपर, कि आप किस तरीके का व्यक्तित्व अपना बनाते हैं और उस व्यक्तित्व के हिसाब से ही आप उस चीज पे रिएक्ट करेंगे।
3: यानी पहली बात तो यही है कि हर बात को, दिमाग की हर बात को दिल पर नहीं लेना, कहते भी है ना हम बातों बातों में कि दिल से ना लगाना, क्योंकि दिल तो नाजुक है, सब जानते हैं कि उस तक कोई बात आएगी तो कहीं ना कहीं कोई असर छोड़ देगी। तो एक जो दिल को स्वस्थ रखने की राह में हम चल रहे हैं उसमें पहला तो यही कदम है कि बहुत सारी जो दिमाग में बातें होती हैं उनको दिमागी रूप से सुलझा कर और एक तरह से जो कि जिंदगी में हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल वे में जीने की आदत डालें। एक तो ये बात हो गई, अब आगे आता है हमारा खान पान की बात आती है।
4: खान पान बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो गया है, उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए?
5: अगर हम हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं या हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली हिस्ट्री या अपने सराउंडिंग से अगर हाई ब्लड प्रेशर के लिए डिस्पोज हैं, तो खान पान में एक तो हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए
4: जी।
5: हमें बाहर का खाना पीना, जिसे कि हम फास्ट फूड कहते हैं, जिसमें कि जो भी ये तले हुए पदार्थ, बाहर के समोसा, कचौड़ी, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए
3: जी।
5: और
3: जी।
5: हमें एक अच्छा पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार में आता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ताज़े फल और सब्जियाँ, वेजिटेरियन फूड, जिसमें कि ताज़े फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। घर पे भी जो खाना बनाते हैं उसमें कम घी और तेल का, कम ऑयल का प्रयोग करें और तली हुई चीजों का प्रयोग ना करें,
3: और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप व्यायाम करें या लंबी सैर करें।
5: बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है।
3: जो बात चल रही है, नीलम जी ने प्रश्न किया हाई ब्लड प्रेशर को लेके, वो दिल से कहाँ संबंध रखता है?
5: अब ब्लड प्रेशर क्या चीज है कि जितने प्रेशर से आप हार्ट से ब्लड जो है पंप होगा, जो रक्त का संचार करना होगा, वही चीज आगे ब्लड प्रेशर के रूप में आपके सामने आएगा। अब ब्लड प्रेशर क्या है, जो रक्त वाहिनियां हर शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, जब उन रक्त वाहिनियों में प्रेशर बढ़ने लगेगा, उसको हम बीपी के इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं कि कितना प्रेशर है। अब वो प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है, हार्ट से क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही वो प्रेशर बढ़ेगा तो उसका सारा का सारा लोड हार्ट को बियर करना पड़ेगा, हार्ट को सहन करना पड़ेगा,
3: तो कहीं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है।
5: उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हार्ट फेल होने की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण से उत्पन्न हो सकती है।
3: जी डॉक्टर साहब, एक बात ये हम ले रहे हैं कि जिस तरह से हम दिल की बात कर रहे हैं, हमें स्वस्थ रखना है, तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा हमें खान पान या हमें रोजमर्रा की हमारी आदतें हैं वो समझानी पड़ेंगी।
5: जी देखिए, इसमें ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, हर बंदा इस चीज़ से परिचित है, लेकिन फ़र्क वही है कि कौन इस चीज़ को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको शामिल करता है कि नहीं। सबसे पहले एक चीज़, सादा जीवन उच्च विचार
4: जी।
5: कि आप ज़्यादा तनावग्रस्त, ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना होके जितना सादा जीवन जियेंगे उतना आपका हृदय, इतना आपका दिल स्वस्थ रहेगा, उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: बहनों, अभी आपने सुनी है बातचीत दिल स्वस्थ तो सब स्वस्थ, डॉक्टर आदित्य बत्रा के साथ यह पुनः प्रसारित बातचीत थी। इनसे बातचीत कर रही थी बीना कौशिक और नीलम वशिष्ठ। देखिए, आने वाली जो 1 जून की तारीख है आराधना, वो भी खास है क्योंकि इस दिन को मनाया जाएगा विश्व दूध दिवस के रूप में। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो कृषि, आजीविका और पोषण में दूध और डेयरी उत्पादों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कल के दिन को खास तरीके से मनाया जाए और दूध को संपूर्ण आहार मानते हुए बच्चों को प्रेरित किया जाए, दूध
4: पी खुद भी पिया जाए
1: और खुद भी पिया जाए। और इसी के साथ 3 जून की तारीख है विश्व साइकिल दिवस के रूप में। साइकिल जो कि यातायात का कहें, आवागमन का कहें, सबसे प्राचीन साधन रहा है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है।
4: बिल्कुल सही कहा तुमने, और एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है, व्यायाम भी हो जाता है साइकिल चलाने से, और जो पर्यावरण से ना उससे भी बचाव हो जाता है।
1: बिल्कुल, और इस बार का थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। और देखिए, साइकिलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ये इसी बात से पता चलता है कि पहले के समय में जब कॉलेज हम जाते थे, हमारी मम्मियाँ जाती थी, या फिर कहें जब हम उनसे सुनते हैं, तो वो जो एक रूप रंग होता था सड़क पर साइकिलों का झुंड जाने का, और उस पर वो सुंदर सुंदर युवतियाँ जो हमारी मम्मियाँ थी, यही कहेंगे हम, तो इतनी खूबसूरत लगती थी कि वो जो पिक्चर है या वो जो सीन है वो आज भी अगर हम सोचें तो मन करता है कि जितने भी वाहन चल रहे हैं ना सड़क पर सबको हटा दें और सिर्फ साइकिल ही साइकिल चले। तो सुन लेते हैं एक साइकिल का ही प्यारा सा गीत।

0: थोड़ा सा ध्यान रसोई की तरफ और देते हैं बहनों को टिप, दीजिए राधना।
1: देखिए पकोड़े तो चलते ही हैं, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, तो पकोड़े में अगर थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया जाए तो कुरकुरे बहुत स्वाद बनते हैं
0: जी।
1: और ज़्यादा करना चाहिए तो उसमें दही भी डाल सकते हैं, थोड़ा सॉफ्टनेस आएगी उसमें खाने में, बहुत अच्छे लगेंगे।
0: और
1: साथ साथ में एक बात और बताने जा रहे हैं, जैसे हलवा बनेगा या खीर, अगर उसमें जायफल पाउडर पीस कर डालने से स्वाद में नयापन आएगा। और इसके अलावा आटे का हलवा या मोटे अनाज जैसे बाजरे में हलवे में गुड़, इलायची या थोड़ा सौंठ का पाउडर डालें तो एक नया स्वाद मिलेगा।
0: ये तो बहुत ही अच्छी आपने टिप बताई कि जायफल पाउडर का तो हमने कभी सुना नहीं था और इससे जायका बढ़ने वाला है, तो आप ट्राई करते हैं इस चीज़ को। पकौड़ों की भी हमने बात कर ली, मीठे की भी हमने बात कर ली, और थोड़ी सी कुछ और टिप हो तो वो भी बता दीजिए।
1: और एक जैसे सूखी सब्जी के लिए बनाने जा रहे हैं, जैसे मिक्स सब्जी बनाने जा रहे हैं, बीन्स की सब्जी, वो भुने हुए सफ़ेद तिल, कलौंजी और भुनी हुई सौंफ का पाउडर डालने से उसमें भी बेहतर स्वाद मिलता है,
0: बेहतर स्वाद और खुशबू
1: जो है वो भूख को बढ़ा देगी
0: जी। और छुट्टियां आ रही है तो घर में जो पापड़ है उसको भूनकर झटपट भेल आप तैयार कर सकती हैं, टमाटर प्याज और उसमें खीरा आदि कस के हम डालें,
1: टमाटर
0: वगैरह अच्छे से कस के, और इमली की चटनी बनाई जा सकती है, तो ये झटपट भेल तैयार होगी छुट्टियों में, क्योंकि फरमाइश बहुत ज्यादा होने वाली है तो शायद ये सारी टिप्स काम आने वाली है, कभी पकौड़े तैयार रहेंगे और कभी भेल तैयार रहेगा, तो छुट्टियों को भी हम अच्छे से मनाएं और आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात

0: बात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने गाइडलाइंस जारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभ्रम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कजूर से बात भी की।
2: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूं। पहला इंडियन हूं जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में
1: बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम।

सन्यासी फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थीं। विश्वेश्वर शर्मा ने इस गीत को रचा और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। पसंद आप सभी की थी। आप हैं इस्लामपुर बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना सुमेद, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब नावेद, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, चकला बाजार पटियाला से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल। और यह अगला खत है मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली का। विडूल उमरखेड़ से गंगाधर, पोपलवाड़ सम्यक, प्रियंका लक्ष्मीबाई, स्वरित पोपलवाड़ भारत धुले। मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता रविराज, गौरव। दरभंगा से पन्नालाल गुप्ता, शारदा कुसुम, रूपा गुप्ता। कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। औरंगाबाद से राजेश साबले, पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। गोविंदगढ़ माझीवाला से राजू टुटेजा, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत बड़वाल, शिव सेठी, स्माइल टुटेजा और बीआर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और आसिफ। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आप सभी के अनुरोध पर। आप हैं खेरड़ावाड़ी हिंगोली से शाजीपुर के नंदा हनुमान, सारिका सुरेखा, आरवी तन्नवी। वाकोडी कलमनूरी से उत्तम जमथाड़े, स्वरा, आत्माराम आसोले, ललिता आसोले। रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंदर, जितेंद्र, मानसी, ज्योति बत्रा, वंशिका बत्रा, हिमांशु बत्रा, कार्तिक, गौतम। मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, निवान, लखविंदर संधु, महावीर गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। जंगराव से ये खत है सुनील पाठक, कमल सुच्चा पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष गव्या मल्होत्रा का। रहमानिया महसोल से तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां, नुजत जहां, वसीम अकरम, नदीम, शमीम, अमन। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू। रामर से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, विनोद लखनपाल। और बालोद छत्तीसगढ़ से ये चिट्ठी आई है बसंत सिंह सूर्यवंशी, सरोज ईश्वरराज, प्राची सूर्यवंशी और साधना ठाकुर की। आप सभी के लिए सूरज और चंदा फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

ये था सूरज और चंदा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ें आपने सुनी। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपकी टिप्पणियों का, आपके मार्गदर्शन का, आपके विचारों का हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में हार्दिक स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक श्रोता मंच कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 7:30 बजे, तो सुनना मत भूलिएगा। आपके विचारों को जानकर हमें अपने कार्यक्रम बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने का मौका मिलता है। अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर, आप हैं डब्बाली से जेके बकोलिया, सुनीता संजय, अनिल मीनू, मटौर से रामदिया, नीलम अजय, विजय तमन्ना, बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा, प्राची वर्मा, बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम, अल्ताफ अंसारी, चोहलदा से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान कुणाल, फ्रांसी से आप हैं राजकुमार डूडी, सुरजीत, प्रमोद डूडी, दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ, गौरव नेगी, मीठी और कुहू, डुमराव से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून, एस डी अंसारी, मेहताब, आफ्ताब, मेराज अंसारी और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। आप सभी के लिए सावन भादो फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आप सुनेंगे। वर्मा मलिक के बोल हैं, संगीत है सोनी कोमी का।

इधर सावन भादो फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें आपने सुनी। अगला गीत आप सभी के लिए, आप हैं मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ शर्मा, शाइना निवान शर्मा, लोनी से नसीमुल इस्लाम गन्नौरी, प्रकाश वीर राजपूत, बालोद से कमलेश जयपुरिया, भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी प्रमीला, रायगढ़ से लालचंद मिश्र, नरेंद्र राम, जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल नवनीत, पप्पी भाटिया, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु, बराड़ा अंबाला से रवि राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका जयप्रकाश, नूर नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशबद, प्रमिलागंज आलोट से बलवंत वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू का खत है और ये चिट्ठी है मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। आप सभी सुनना चाहते हैं टैक्सी चोर फिल्म का गीत, उषा मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, गीत अनजान का, संगीत बप्पी लाहिड़ी का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

ये था टैक्सी चोर फिल्म का गीत। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों के बारे में आपकी राय, आपकी टिप्पणियाँ, आपका मार्गदर्शन बहुत महत्व रखता है। ये जानने के लिए हम फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच का प्रसारण करते हैं महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस बार का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हमारे नए सुनने वाले नोट करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। तो ये कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा आज शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक। अगला गीत आप सभी ने सुनना चाहा है। आप हैं बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश प्रवीण, ममता कमल, गर्विश तमन्ना बंसल, ढाणा नरसान से जगदीश चिंडालिया, राजवीर सतीश और केला देवी, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या सुषमा सारथी, नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा धनेश्वरी, चटोदा से सुजान वर्मा, सहोद्रा आयुषी कृत, लोहगढ़ से स्वर्ण सिंगिल दलजीत, राजदीप गुरलाल, अविराज गुरमान, गुरनूर, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु देबू, परी पीहू, पाकी कौशिक, रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर और जैतक बिरक। आप सभी के लिए देश परदेश फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़।

देश परदेश फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, अमित खन्ना के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आप सभी का है। आप हैं चांडूर बिस्वा, बुलढाणा से नारायण भाऊखड़ से रक्षा थाई, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी आसमानाज, बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून, गुलफराज भागलपुरी, दिल्ली से आप हैं डॉक्टर रहमान अली, बागपत से एहसान अली, पिद्दा करोसी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा साहू, भिवानी से कृष्ण मेहरा का पत्र हम शामिल कर चुके हैं, शेरगढ़ मलोट से बलराज राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी बेबी, कुदरत मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत, शिवराज मान, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनिता खुराना, राजीव ढींगरा, कन्हैया लाल, जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्र प्रभा वाड़ोदे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज, वरुड़ जऊलका से महेंद्र सरकरे, विजया मिलिंद सरकरे, पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या आदि, शैलेश, सोनम धनुषपुरी, बीटी बाड़ोदे, चांडूर बिस्वा बुलढाणा से नारायण भाऊ की बात हमने बिल्कुल, ये जब नाम पढ़े थे तो शुरुआत में इनका पत्र शामिल हो गया था। तो आप सभी के लिए प्रेम कहानी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आप सभी के अनुरोध पर है, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे ये अनुरोध है कि आज का हमारा श्रोता मंच कार्यक्रम जो कि फोन इन आधारित कार्यक्रम है आप ज़रूर सुनिएगा। ये प्रसारित होगा आज शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट करें 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोताओं के नाम आपको बता देते हैं जो सुनना चाहते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना। आप हैं खंडवा से विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक सोनू मोनू, रानू अनय, अनाया सपना, शिवी सलोनी, साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, महोबा से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न गौरव, धामनी मानोरा, वाशिम से तुलसीराम डेरे, माया संदेश, आदेश किरण प्रज्वल, दादुल्या डेरे, ध्रुव गिरी, ज्योति अनुत, गुलशन डेरे, चंद्रकांत पाटिल, नितिन खारे, आकाश ढोले, शेखर सोनोने, किशन वायले, तेजस प्रणीता, मंगेश पाटिल, अरुण कोहले पाटिल, परमेश्वर टिकाले, शब्बीर और बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री वैष्णवी, चंचल ढोमणे, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, कापशी अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार, कैलाश राव, वंदना ताई बाकड़े, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी अंकुर, इंदु सुनील जनागल और इंदौर से ये खत है, वंदना मराठा, गणेश कार्तिक, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण खर्चे का। आप सभी की पसंद का गीत है 10 नंबरी फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें आप सुनेंगे। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत पद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: दर्द रहता है दिल में, दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कार्यक्रम सुननी है सारे वन भाइयों ने, दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम दो तीन दिन तक बदलाव में है, और इब पूरा अनुमान की बात करा तो एक आध दिन का और भी मौसम इस तरह बताया गया है। बहुत तेज धूप पड़े थी, तापमान बहुत ज्यादा हो रहा था, कहने का मतलब नहीं है कि गर्मी इतनी पड़े थी, जमानियों का कारण भाई आग पड़े है कभी। चलो मौसम है, उसका अपना रुतबा है, उसका अपना मिजाज है, जरूरत हर मौसम की रवे। हमने सर्दी के टाइम पर सर्दी भी चाहिए है, पाला के टाइम पर थोड़ा सा पाला भी चाहिए फसलों खातर, और गर्मी के टाइम पर गर्मी भी चाहिए है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं कि जो इतनी तेज धूप तो ही हमारे हाथ लग गए हुए। बात आ है कि जमीन की बायस हमारी के बाद जमीन की तासीर बदलने वाली बात आ है, तो इतनी तेज धूप पड़े है, लू चल है, उस टाइम पर जमीन की तासीर बदल जाए। बड़े बड़े रेन्यू का आकर दे कि ईब भाई धरती बाण का कोई फायदा नहीं, घनी कड़ी हो रही है, थोड़ा सा एक बार लू चाल लें दो फिर यह ठीक ठाक बह जाएगी। वो लू चालें पाछे उसकी जो वो कणासी थी वो टूट जा कर दी, और हल जब हम चलाओ थे तो मोटे मोटे डले पाट जाते, और वो डले पाटे पाछे कुछ दिन अगर उन्हें छोड़ दें और उसके ऊपर कुछ हल्की फुल्की सी भी बारिश हो जाए, तो इतने में जमीन की सेहत में सुधार आ जाया करे। और वो ही मौका हमने मिला भी है, कई दिन तक तेज धूप पड़ी है, बहुत ज़्यादा तेज धूप पड़ी है। हाँ, इस बात का तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर हम मान रहे हैं कि गर्मी बढ़ गया है। वो गर्मी बढ़ने का कारण क्या बना है कि एक तो व्हीकलों का प्रचलन, एसियां का प्रचलन, पेड़ों की कटाई, कई सारी बातें हैं। देखो प्रकृति से खिलवाड़ करना कितने कितने भुगतान तो हमने ही करना पड़ेगा इस बात का। आमी भी गाड़ी भी ऐसी, चलो मैं न्यू नहीं कहता कि भाई ना बैठ कर चलो, जिस भाई दूर हुआ बैठ कर चलो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह की कोई बात आओ है ना कि भाई मार दिए परमात्मा ने, यू कर दिया यू कर दिया, तो विचार मन में आवे है, और जब मन में विचार आवे है तो भाइयों के साथ है, वो साझा भी करना पड़े है। और आप सहमत भी हो गए शायद मेरी बातें, भाई हर जगह एसी का प्रचलन आप हिसाब लगाओ कि कितनी की गर्मी छोड़ दें एसी। और व्हीकल की जब बात आओ है तो व्हीकल भाई गांव में देखण देखण में किसी किसी भाई दूर पाया करता, लेकिन आज कोई घर नहीं बच रहा, और एक के घर में कई कई भी व्हीकल हो रहे हैं, और चलाने वाले भी से हो रहे हैं, 10 कदम भी जाना होगा तो भी व्हीकल पर जाना भाई, वो भी कितने स्टार्ट होगा तो गर्मी वो भी काटेगा, तेल भी जलेगा, वो कुछ वातावरण में बदलाव ले आएगा, थोड़ा बहुत अपना योगदान वो गर्मी में देगा, ऐसी बात नहीं है। फिर बात आओ है पेड़ों की कटाई की, पौधे लगाया करते, बड़े बूढ़े पहले आम का पेड़ चकड़ा के ले जाते कितने, तो अमरूद का कितने कितने लगा लिया करते। ईब कोई भाई बागवानी का काम करे है तो अपने व्यापार की खातर तो लगा ले है, लेकिन न्यू नहीं लगाता कि भाई वातावरण साफ सुथरा रहे, एक दो पेड़ इसे हिसाब से नहीं लाता कि हमारा एक फर्ज है उसने पालेंगे। बहुत सारे ईब आगे देखेंगे कि जब चौमासा का टाइम आओगे ना अखबारों में फोटो तो इसी आओगे कि भाई पौधे लगन लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग गया है कि वो फोटो आकर उस तो पाछे फिर उनकी संभाल कौन होती, क्योंकि देखो खाली क्षेत्र कितना दिखने लग गया। हाँ एक तो बात है भाई, पहले ज़्यादा पेड़ होया करते, बनी भी होया करती, खेतों में भी बन पा जाया करते।

नरेंद्र कुमार और उनके साथियों की गई और रागनी सुन ली। इन के बाद में एक रागनी और सुनांगे, लेकिन जिक्र चला था भाई जो अंगूर के बाग हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करनी है। कटाई छटाई का काम तो फरवरी के आसपास से हमने करना पड़ा है, और कटाई में सब दो तीन गांठ छोड़ के करनी पड़ा करिए भाई, उस टाइम पर ध्यान करवा भी दिया हाँ, और ध्यान में है भी भाइयों के। बात आओ है पानी की, जब पौधे लगाऊं उस टाइम पर पर्याप्त नमी हो, और जब फल पक रहे हों तो उस टाइम पर नमी बनाए रखना जरूरी है। बारिश का पानी आगे आने वाला जो मौका है उस टाइम पर ध्यान करना पड़ेगा इस बात का, बारिश का पानी हमारे खेत में जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा जो गलेगा नीचे दें यह समस्या आस्क है। फिर बात आओ है खाद और उर्वरक की। खाद उर्वरक तो देखो जो गोबर की खाद है वो तो खेत में आम मौका लगा है जब दे दिया हाँ, लेकिन फिर भी फल आने की जब अवस्था है ना तो 100 ग्राम यूरिया और 200 ग्राम सुपर फास्फेट प्रति बेल आम में डालना पड़ेगा, और महीने का अंतराल पर फिर आम दोबारा इसके डालने की कोशिश फिर करा। फिर बात आओ है अंगूर के बाग में नमी और ज़्यादा बारिश हुआ है तो उस टाइम पर फंगस के कारण ये फफूंद नाम का इसका हाँ और रस चूसने वाले कुछ कीड़ा का प्रभाव हो जाया करे। फल की सड़न की जब समस्या है ना तो विशेषज्ञ की सलाह ले ले, और जो उचित जो कीटनाशक की वो सलाह दें तो वो उसमें छिड़काव कर दें। जो कर मोनोक्रोटोफास की बात करें तो उसका छिड़काव हम कर सका हम। बारिश के मौसम में फल खराब होने तो बचाने खातर प्लास्टिक का कवर भी चढ़ा सका हाँ, उसको ऊपर का एक सीट चढ़ा दिया करा। जाली और मचान का भी इसका सहारा लेने की बात आवा है। एक जो बेल है ना हमारी उसने कुछ इस आकार से बना दिया कटाई करके साफ सुथरे करके कि उसमें हवा का आवागमन भी रहा है और फैलन की जगह चारों तरफ उसने मिल जाए। देखो जो बेल है वो एक तरफ तक कटाई कर दी मान लो, दूसरी तरफ ज्यादा बढ़ रही है वापस मोड़ उजरी है, इस तरीके से नहीं बेलन फैलन खातर रास्ता चाहिए। जोन सी साइड नु लागे कि हमने उस साइड में रास्ता है फैलन का तो उस साइड से ज्यादा कटाई करने की कोशिश ना करें, और नमी बनाए रखनी है। कहने का मतलब यो है कि हल्का सा पानी उसमें देश का हाँ, और कुछ भाई तो जो पाइपा सारा ले रहे हैं जो टपका सिंचाई विधि है उससे भी करें हैं, उनमें फिर दिक्कत या आंधी है नहीं। टपका सिंचाई विधि का कई बार जिक्र करा तो उसमें इस तरह के जो बाग हैं वो बड़े फायदेमंद साबित हुए हैं, और वैसे भी नालियां में पानी दे हैं तो हल्का सा उसमें पानी चला जा, बेलां तक की जड़ा तक चला जा, सारे खेत में पानी ना पड़े। साफ सुथरा खेत हमने रखना है, कोई घास फूस कोई पत्ते हैं नीचे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यू अड़ंगा दड़ंगा है घास फूस से यो कीटा ने बुलाव है, यो उन्हें सारा देवा है, और ईब आगे बारिश का मौसम मान लग रहा है तो उस टाइम पर हमने इस बात का ध्यान करना है कि पानी निकासी का प्रबंध हर हाल में हमने कर देना है। बाग में जब पानी खड़ा हो गया तो फिर समस्या आ जाएगी, उसमें दिक्कत यह आएगी कि जो जड़ हैं वो गलन की समस्या शुरू हो जाएगी, और जड़ गलन की समस्या एक बार शुरू होगी तो बाग का ऐसा काम हुआ करे कि मान लो 10 बेल भी खराब हो जाए तो वो भी बात बहुत ज़्यादा घाटे में चली जाया करे। और जो भाई इस तरह का काम करे हैं वो जानकारी ले कर जो विशेषज्ञ हैं इसकी सलाह ले कर, कोई कीड़ा इस तरह का आ जाए वो सलाह ले लें, और जब फल तोड़े हैं तो उस टाइम पर छिड़काव ना करें, क्योंकि एक मानवता के प्रति हमारा फर्ज ही बना है कि कोई भी फल है सब्जी है वो हम खेत में तो जब लेकर जाएँ उसने कोई देख नहीं रहा है कि हम किसे लेकर जाएँ, लेकिन हमारा अपना ही फर्ज ये बना है कि साफ सुथरा बाजार में हम जो भी सौदा उगा है वो बेचा। चलो टाइम रहेगा तो बात कुछ और भी करेंगे, बात एक रागनी को रही थी तो गायक कलाकार एक बार फिर नरेंद्र कुमार उनके साथ।

0: नरेंद्र कुमार और उनके साथियों की गायोड़ भैया ने रागनी सुन ली और जिक्र कराया था अंगूर के बागां की देखभाल इसके बारे में। उसमें कई सारी बात आ गई थी। एक तो मुख्य बात यह ध्यान करने की है कि अग चमासा का टाइम आओ है, बारिश का मौका आओ है, तो उस टाइम पर भाई पानी निकासी का प्रबंध भाई जरूर कर ले। दूसरा ये है कि खेत में नमी का बनाए रखना जरूरी है। काट छाट का जो मौका है, काट छाट भी ठीक तरीके से हो जाए, और खाद पानी जो भी उसमें देना है वो एक टाइम है देने का, उस टाइम पे वो दे दिया जा करे। जो बाद में नाइट्रोजन की मात्रा है, फास्फोरस देना है, वो 100 ग्राम प्रति पौधा जो जिक्र चला था उसका हिसाब से पौधे में देश का हम। बाकी और तो ये है कि कोई फल खराब हुआ है उसने तोड़ के खेत तबाह ले जाकर मिट्टी में दबा दें। जब ये जिक्रा है कि भाई खेत तबाह काट दे, कई बार हमने सोचा हक बहू बाहर काट के गिर दे तो काम चल जाएगा, ना उस तक काम नहीं चला करता, वो हमने बाहर ले जाकर मिट्टी में दबाना हुआ है क्योंकि उसके अंदर कोई समस्या है, तो वो फिर खेत में दोबारा आ जाया करें। तो ये कुछ बात ध्यान करने की थी, तो इनका अपना ध्यान करेंगे तो अपने बाग में अच्छा मुनाफा रहेगा। ईब चाला हाँ, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। दलजीत भाई ने जितने सारे बण भैया ने राम राम।
1: आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज ओने आईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मिडन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30:12 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी साथियों को आपके साथी रिशिता का नमस्कार
1: और आप सभी को आपके साथी हर्ष का भी नमस्कार।
0: साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 31 मई का दिन और प्रत्येक वर्ष हम इस दिन मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आपको बताएं कि इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 1987 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले घातक स्वास्थ्य खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तंबाकू में निकोटीन, तार और अन्य हानिकारक रसायन

0: पाए जाते हैं जो फेफड़ों को कैंसर, हृदय रोग, मुंह का कैंसर और श्वास संबंधी अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण होती है। इस दिन सरकारें, स्वास्थ्य संस्थाएं और सामाजिक संगठन मिलकर जन जागरण अभियान चलाते हैं, रैलियां आयोजित करते हैं और युवाओं को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं।
1: बिल्कुल, और साथियों हर साल 31 मई को दुनिया भर में लाखों लोग एक ऐसे भयावह संकट को याद करने के लिए रुकते हैं जो सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, यह इस बात की याद दिलाता है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के सबसे रोके जा सकने वाले कारणों में से एक है। लेकिन फिर भी इसके सेवन से लोग नहीं बचते हैं। इसके सेवन से फेफड़ों को कैंसर, मुख का कैंसर, हृदय रोग समस्याएं तथा कई अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे यानी कि पैसिव स्मोकिंग जिसे कहा जाता है। और साथियों विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, और यदि हम स्वयं तंबाकू का सेवन न करें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें तो हम एक साथ एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है रविवार का दिन और आज हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम युवा पसंद, जिसमें हम सुनवाते हैं आप सभी के फरमाइशी फिल्म संगीत।
0: तो साथियों कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म क्या लव स्टोरी है से, जिसे आवाज़ दी है अलीशा चिनॉय ने, बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने और संगीत है प्रीतम चक्रवर्ती का। और इस गीत की फरमाइश आई है चरखी दादरी से जगनेश सांगवान की, गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा और बगबुड़वा पत्रिया से नरेन और कुसुम नेताम की।
1: ये खत हमें मिला है आप हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजूरिया, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना और खुशी गोस्वामी, शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल सितारा, नसरीन प्रवीण, रोज़ी बिट्टू, साजिदा रानी और हीना कोसर। डब्बाली से ये फरमाइश आई है आप हैं दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर और हनी लोट। और ग्राम बठेना से ये ख़त्म मिला है आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा धनेश्वरी वर्मा। और साथ ही साथ फरमाइश आई है चटोदा सारा गांव से आप हैं सुजान वर्मा, सुहद्र, आयुषी और कृत वर्मा।
0: आइए साथियों सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

0: साथियों, भी हमने सुना ये गीत फिल्म क्या लव स्टोरी है सी, जिसे आवाज़ दी थी अलीशा चिनॉय ने, बोल लिखे थे शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने।
1: चलिए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम में आप सभी की फरमाइश का अगला गीत, जिसे सुनना चाह है शीतला नगर दुर्ग से आप हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, खजूरी खास दिल्ली से खत्म में मिला है आप हैं पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ गौरव नेगी मीठी और कुहू, भिलवाड़ा राजस्थान से ये फरमाइश आई है आप हैं गजेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र वीरेंद्र, मधुबनी बिहार से आप हैं एके झा, दुर्गा प्रसाद सैनी, आर एल चंद्रवंशी, अमोल मानकर और राजेश, और साथ ही साथ मधुबनी से ही आप हैं अरविंद गुड़िया और भव्या, कोली नांदेड़ से ख़त्म में मिला है आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और सई गायकवाड़।
0: साथ ही खोखरा वाली गांव से आप हैं विनोद, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, नंदा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा संधु, प्रतीशा और मैक्स, महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, और साथ ही कैथल से आप हैं अमनदीप।
1: लीजिए साथियों, सुनिए आप सभी की फरमाइश का एक गीत जो लिया गया है फिल्म कॉकटेल से, आवाज़ से हैं के मोहन और शिल्पा राव की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम। लीजिए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना फिल्म कोकटेल से गीत। आवाज़ें थी कि मोहन और शिल्पा राव की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार थे प्रीतम।
1: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत है फिल्म ए दिल है मुश्किल से, जिसे संगीत दिया है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और आवाज़ें हैं प्रदीप सिंह सरन, नकाश अजीज, मीनल जैन और अंतरा की। और

0: संगीत की फरमाइश की है आपने। गांव राजापुर से नयन, प्रकाश, शारदा, सीताराम, सतबीर, संतोषी, कविता और आरती मरकाम। छत्तीसगढ़ से इंद्रमान सिंह, अनुपम और राम सहोदर। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी शेखावत। साथ ही लुम्बिनी अकोला से यहाँ पे राहुल बंसोड़, सम्यक, शरण और मीरा।
1: साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश की है आप हैं नंदूरा निरुपति नगर से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश और अनिकेत वसानी। लाहौर से ये ख़त्म में मिला है आप हैं कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर, राजकुमारी पटेल। और महाराष्ट्र से आप हैं उत्तम जमधाड़े, स्वराज और साथ ही साथ स्वरीत पोपलवाड़ और संघर्षा और संविधान होंगड़े। गुजरात से आप हैं आशाबेन पटेल, विशाखा और पमेला पटेल। कीर्ति नगर नई दिल्ली से ख़त्म मिला है आप हैं सुशांत, प्रिया झा, निवेश और नियति। चोहलदा से आप हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। लीजिए साथियों सुनिए आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

0: साथियों, अभी हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म ए दिल है मुश्किल से, जिसे संगीत दिया था प्रीतम ने, बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और आवाज़ें थी प्रदीप सिंह सरन, नकाश अजीज, मीनल जैन और अंतरा की।
1: चलिए साथियों, कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत और इसे सुनना चाहा है आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। उत्तराखंड से ख़त्म मिला है आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा, रियाज, रिफाकत, शमरीन, प्रवीण, रिहान और माहिरा नूर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हदेव, मिक्का, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मिका बिरक। कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये ख़त्म में मिला है आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवानकर, सरिता, सिद्धांत एकांश और नागपुर से ये फरमाइश है आप हैं शैलेश गवानकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवानकर। साधु शहर से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान।
0: साथी कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। महाराष्ट्र से निर्मला और विशाल। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा, इशप्रीत, हरिपाल कौर, नरेंद्र तनेजा। और पंजाब से आप हैं स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप।
1: लीजिए साथियों, सुनिए आप सभी की फरमाइश का एक गीत जो लिया गया है फिल्म पटाखा से। गाया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं विशाल भारद्वाज।

0: साथियों, अभी आपने सुना फिल्म पटाखा से ये गीत, जिसे गाया था अरिजीत सिंह ने। इसके गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। साथ ही साथ कार्यक्रम में साथियों, हमने पहले बात की थी आप सभी से कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, और आपको हम बता दें कि तंबाकू के सेवन को रोकने और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत संकल्प और सशक्त नीतियाँ दोनों ही आवश्यक हैं। और इसे रोकने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग अपना सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर, जो कि खासकर हैं कि हम उसकी आदतें छोड़ दें, एक दृढ़ संकल्प लें कि तंबाकू छोड़ने के लिए, एक निश्चित ही कर लें अपने मन में कि हम इसका सेवन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उसकी जो है आदत लगने पर हम उसके ऑल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं, जैसे च्युइंगम, सौंफ, लौंग या इलायची जैसी चीज़ें। और हम थेरेपी भी जो है अपना सकते हैं, और डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, और मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, ताकि उसकी लत को जो है हम अपने जीवन से हटा सकें।
1: तो साथियों, आप आज ही इस आदत को तोड़ें और अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि तबाही सिर्फ पैसों की नहीं होती। तंबाकू छीन लेता है हमारी सांसें, हमारा सुकून और हमारा वक्त। तो आज ही आप इस आदत को तोड़ें और अपना जीवन बचाएं। और इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है मिलेंगे आपसे कल इसी समय। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार आकाशवाणी का हीरो होता केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, वही दिल्ली केंद्र से लेके आ जाएगा।

0: सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोता मंच, यह कार्यक्रम प्रसारित होगा आज रात 7:30 बजे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राजू शर्मा से बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। इसके अलावा शाम 7 बजे आप सुनेंगे ग्रामीण संसार कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सुनेंगे विपुल गुप्ता से भेंटवार्ता, विषय रहेगा तंबाकू से होने वाली हानियां। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे रात 9:30 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:25 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25 का, और एक फिल्म से कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित विशेष श्रृंखला में गरीब कल्याण पर बातचीत हम आपको सुनाएंगे कल शाम 7:30 बजे। पब्लिक स्पीक सुनेगा रात 9:30 बजे। दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे। साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित होगी शाम 6:30 बजे, जिसे चंडीगढ़ केंद्र से ले किया जाएगा। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी अनाज का सुरक्षित भंडारण विषय पर। सुबह सवेरे इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल प्रातः 7:35 पर। प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा कल दोपहर 12:30 बजे। युवा संसार कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल शाम 5:30 बजे, जिसके अंतर्गत प्रसारित किया जाएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस। कल शाम 6:20 पर कृषि जगत में बातचीत का विषय रहेगा इस माह के कृषि कार्य, और इसके अलावा शाम 7:00 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम चौपाल। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा जैविक खादों का महत्व। शास्त्रीय संगीत में कल सुबह 7:10 पर सुनेगा सलीम कुमार का सितार पर बजाया राग वैरागी, और रात 10 बजे अहमद अली खां का राग मारू बिलहाग। लोक संगीत में कल सुबह 8:30 बजे कलाकार होंगे चंद्रलाल बाकोलिया। आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम पत्रों पर जो रहता है वो रहेगा, सुनेंगे आप सुबह 9:00 बजे। चित्र पर संगीत दोपहर 1:00 बजे, फिल्म संगीत शाम 7:30 बजे, मन चाहे गीत रात 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मिडिल वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
5: ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
5: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: मेडम व्यू 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टुडकी घड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और आम को कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकुला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले।

0: दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने गाइडलाइन जारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं।
0: नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं।
0: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में निशुल्क तैराकी क्लब चलाने वाले अलुवा के साजी वलशेरिल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाँव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाप क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया और बच्चों से सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान देने की अपील की। उन्होंने इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अपने 50 वर्ष पूरे करने वाले चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय नेटवर्क ने देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि

0: वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचाने और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला TBRL में आज हाई कैलिबर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण वायु सेवा के उच्च अधिकारियों की देखरेख में पूरे सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया। अधिकारियों के अनुसार परीक्षण सफल रहा और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत पूरा किया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड को सुना गया। पानीपत के स्मालखा में लोगों ने भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व पूर्व मंत्री जेपी दलाल के साथ श्री मोदी के विचार सुने। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा,
1: हर बार जब भी हम मन की बात सुनते हैं पर हमें प्रेरणा मिलती है। भारत के सुदूर इलाकों में जो लोग अपनी चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए समाज के कामों में लगे हुए हैं, मोदी जी उनके इन प्रेरणादायी प्रसंगों की दुआओं को खेलने की प्रेरणा देते हैं। पानी बचाने की बात होते हैं, चाहे हमारी प्राकृतिक खेती का विषय हो, चाहे पर्यावरण सफाई का विषय हो, तो लगातार मोदी जी हर विषय पर हम सबको प्रेरणा देते हैं।
0: अम्बाला में कार्यक्रम सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्री मोदी ने आज भी देश के अनसुने नायकों और प्रेरणादायक कार्यों को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का जिक्र कर युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है। जींद में भी ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक बेहद उत्साह के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना गया। जिला जींद की वरिष्ठ महिला भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया है कि गर्मी से बचने की राहत हमारी अपनी रसोई में ही छिपी है। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की कहानियों को साझा कर युवाओं को प्रेरित किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: प्रदीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: मीडियन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम सुनन दिया सारे बण भाइया ने दलजीत बाई की राम राम। किसान भाइयों, हम परंपरागत खेती करें हैं और कई बार हमारे ध्यान में क्या है कि कोई फसल चक्कर अपनाया जा, कोई दूसरी सी फसल बोई जा, तो हमारे मन में यह बात आ जा है कि भाई कोई दूसरी इस तरह की फसल का चुनाव कर लें जो हमारा ठीक ठाक खेत में हो भी जा और ज़्यादा उसमें खर्च भी ना आवे। देखो, कुछ तो सब्जी फसल इसी हैं

0: उनकी संभाल हो जा, खर्च उसमें उसके ही इतना ना आवे। ये मान ले धान की बात करा जो परंपरागत खेती की बात है, तो धान में खर्च कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा खर्च हो है धान में। भाई उसके किते कद्दू करवाना है, पेड़े काटने हैं, बाया समारी करनी है, प्योत बोनी है, उसके बाद लुआण का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इतना काम छड़ जाए है और उसमें खर्च बहुत हो जाए है। लेकिन करा कि वो खर्च तो हमने करना पड़े है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब हम अगला एक न्यू आधार बांध के चल रहा है कि यह फसल है भाई हमारा इसमें इतना मुनाफा होगा, और कुछ भाई जो ठेके बदरती ले ले हैं उनका तो एक सीधा सीधा ऐसा काम है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन हो जा, ताकि जिसकी ज़मीन है उसको भी दिया जा और कुछ बचत अपने भी रह जा और अगली फसल खातिर भी थोड़ा बहुत पैसा उसमें बच जा, यह कोशिश वो करें हम। लेकिन जब सब्जी फसलों की बात आवे ना, सब्जी फसलों में थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा रह जा है कि जिस भाई ने सब्जी में स्वाद आने लग जा वो फिर दूसरे फसल का नज़दीक जाता भी नहीं। एक जिसका दौरा जोत थोड़ी है, खेत छोटा है, शहर का दौरा खेत है, वो तो सब्जी फसलों का चुनाव करे कर ले है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोई जिम्मेवारी बने है, कोई फर्ज बने है हमारा। एक तो फर्ज यू बना है कि कोई भी फल सब्जी का उत्पादन कर रहा है तो खाद्यान्न के साथ भी ये बात है, लेकिन विशेष फल सब्जी की हम बात करेंगे तो उसमें क्या है कि जब भी हम कोई दवाई का छिड़काव करें, पहला तो ये विचार करें कि काम चल जाए तो दवाई का छिड़काव ना ही करें तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत कीड़ा है उसने कोई राख रूख मार के, कोई हल्की फुल्की कोई दवाई मार के उसका जब्ता कर लिया, बीमारी के बाद में प्रबंधन अच्छा करके संभाल कर बीमारी से भी टाल लिया। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने दवाई का छिड़काव करना पड़े है। जब हम दवाई का छिड़काव कर रहा हाँ तो एक हमारा नैतिक फर्ज करते हुए यू बड़े है कि उस टाइम पर हम जितने भी फल सब्जी लाग रहे हैं वो पक रहे हैं बिक्री लायक हैं उन्हें तोड़ के रख लें बाजार में भेजा, उसके बाद दवाई का छिड़काव करें और फिर कम से कम 10-15 दिन उसके बाद ही तोड़ा करें। 10-15 दिन का अंदाज़ा क्यों दिया हमने, जो आप दवाई का पैकेट लेकर आओगे उसके ऊपर कुछ निशान बने उड़ाया करें, भाई हरा निशान है, नीला है, पीला है, लाल है, यो एक खतरा का संकेत नहीं हुआ करे कि हरा जो निशान है उसमें जहर थोड़ा सा कम हो है, जो लाल है उसमें बहुत ज़्यादा हो है, एक हड्डी खोपड़ी का निशान भी बने उड़ाया करे जो उसने गौर से देखे तो वो देखेंगे तो जितना ज़्यादा संकेत उसमें जहर का होगा उतने ही दिन हमने आग तोड़ा करना पड़ेगा। देखो किसी न किसी जीव ने वो फल सब्जी खानी है और हमने न्यू क्यों बाजार में बेच दी तो लेने वाले ने खरीदने वाले ने खाने वाले ने पता नहीं कि इसमें क्या जहर है। कई बार हम सब्जी लेकर आओ हाँ और फिर खा कर न्यू कहीं मतलब स्वाद सा कौन आया, और बहुत बार ऐसा भी देखा है कि वो परिवार का नुकसान भी करते हैं। कई ऐसी सब्जी हैं, देखो नाम तो लेना उचित सा नहीं रहेगा फिर भी ध्यान भाइयों के दवा दें, जुकरिया शिमला मिर्च है, भिंडी है, गोभी है, बताऊ है, इस तरह की कुछ जो सब्जी है ना उसमें जहर की मात्रा कुछ ज़्यादा मिले है बाजार में देखा हाँ, एक दिन दो दिन उसने धर दिया तो उसकी शक्ल बदल जाए, रंग भी काला पड़ जाए, बाकी तो फला में जोकर केला है भाई वो मिठास वो रंग वो नहीं बन पाता, ईब तरीके बदल दिए, पहले कुछ उसका पकाने का तरीका कुछ और था, ईब कुछ और है, तो बदलाव कर दिया हमने सारा काम काज में, तो वो नुकसानदायक तो साबित होगा। लेकिन हमारा अपना एक यो फर्ज बना है कि भाई हम कम से कम जितना कम से कम जहर खेत में देश का, हमारी ज़मीन भी ठीक रहेगी, उसने फल सब्जी हमारी बिकेंगी बढ़िया, रंग भी बढ़िया होगा, गुणवत्ता भी बढ़िया रहेगी, जिसा थोड़ा सा कम लिकड़ा बनेगा ईसा उसका रेट भी ठीक मिल जाएगा। जब घनी बढ़िया सब्जी है और बाजार में लेकर जाएंगे तो खरीदार उस पर टूट कर पड़ेगा, वो उसने बढ़िया ठीक रेट में खरीदेगा और जब वो बिक्री करेगा तो लेने वाला भी जो ग्राहक है वो भी उसने देख के लेगा तो 10 रुपये उसके ज़्यादा दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान करें जो फल सब्जी भाई उत्पादन कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार अपने मन में यूँ मानवता के प्रति एक लगाव मान कर जब यू इस तरह का काम करें तो बढ़िया रहेगा। बाकी फिर बात आओ है कि खेती के साथ साथ दूसरे सहायक धंधे कुछ भाई करें हैं, मुर्गी पालन का काम कर ले हैं, मछली पालन का काम कर ले हैं, डेयरी उत्पादन कर ले हैं, कृषि वाणिज्य इसके साथ साथ कृषि का एक ऐसा साधन है कि भाई उसमें भाई बार बार फसल ना बोकर एक बार को एक कृषि वाणी का सहारा लेकर इस तरह काम कर ले हैं। बागवाणी का भाई काम करें लंबे समय तक चल रहा है। लेकिन बात आई थी शुरुआत में कि मुर्गी पालन का, ये मुर्गी पालन का तो ऐसा काम है कि जिसने अच्छा तजुर्बा कर रखा है बहुत साल तक तो जो काम कर लग रहे हैं मुनाफा खूब लेने लग रहे हैं। लेकिन कुछ भाई इसमें ऐसे भी हैं कि जिनका तजुर्बा कम होने के कारण थोड़ा बहुत वह कई बार नुकसान हो जाए उसमें, तो उनका नुकसान ना हुए उनने भी तजुर्बा हो जा, ये मौसम गर्मी का है तो इस टाइम पर उन्हें किस किस संभाल करनी है, तो एक बातचीत आपने दोहरा पूरा प्रसारित है वो सुन लिया। लेकिन उससे पहले कुछ संदेश भी सुनाएंगे।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: भाइयों, हमारी आज की बातचीत का विषय रहेगा इन दिनों मुर्गी घरों की देखभाल किस प्रकार करें, यानी कि गर्मियाँ का जो मौसम चल रहा है उसमें मुर्गी घर की देखभाल के ऊपर करें कि क्यों थी चारा दाना दें, किस प्रकार के उनके रख रखाव का ध्यान रखें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर राजू शर्मा, आप वेटनरी सर्जन हैं GVS दड़ौली जींद के अंदर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत भाई जी। तो आप जो फार्मर्स के लिए जो फायदेमंद हो, किसानों के लिए जो फायदेमंद हो, वो किसी भी इस विषय में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारा काम पूछने का है, क्योंकि बैठे हैं तो पूछेंगे भाई, यहाँ जानकारी पहुँचेगी। और डॉक्टर साहब कैसे, ठीक ठाक?
3: बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, आप बताओ।
2: डॉक्टर साहब बात करें देखो मुर्गी ग्रह की, तो एक तो थोड़ा ये बताए कि भाई कहाँ कहाँ मुर्गी ग्रह लगाए जा सकते हैं।
3: वैसे जो मुर्गी घर लगाए जा सकते हैं, पहले तो कोई गाइडलाइन नहीं थी, अब कुछ गाइडलाइन आ गई हैं।
2: अच्छा।
3: तो मुर्गी घर एटलीस्ट जो वाटर सोर्स है, जो कुएं हैं, तालाब हैं, झोड़ है या नहर है, उससे कम से कम 1 किलोमीटर दूर, 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक दूरी होनी चाहिए उसकी।
2: अच्छा।
3: और वो लाल डोरे के अंदर नहीं होना चाहिए गाँव में, या शहर में हो तो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर अंदर नहीं होना चाहिए।
2: अच्छा।
3: तो ये हम खेतों में ही लगा सकते हैं।
2: जलवायु का कुछ प्रभाव इस पे डॉक्टर साहब?
3: जलवायु का प्रभाव ये है, यदि आप 25,000 से नीचे मुर्गी फार्म खोलते हैं, 25,000 बर्ड से नीचे, चाहे वो ब्रेलर हो चाहे वो लेयर हो, तो वो पोल्यूशन कंट्रोल के अंडर नहीं आता। यदि 25,000 से ऊपर हम जाते हैं एक यूनिट खोलने के लिए मुर्गियों के लिए या ब्रेलर्स के लिए,
2: हाँ।
3: तो वो पोल्यूशन कंट्रोल के अंडर जाएगा, आपको फिर उसकी NOC की जरूरत पड़ेगी,
2: यानी कि अपने कागज पत्र हमने तैयार करवाने पड़ेंगे
3: पड़ेंगे जी
2: खोलने के लिए।
3: हाँ जी।
2: अच्छा, शुरुआत कहाँ से होगी डॉक्टर साहब?
3: तो जैसे पहले तो हमें जिस पंचायत में या जिस पंचायत के अंडर हम जिस खेत में खोलना चाहते हैं, तो हमें ग्राम पंचायत से लिखवा लेना चाहिए कि मैं ये करूँगा और यहाँ मुर्गी फार्म बनाऊंगा, इतने इतने बर्ड्स का बनाऊंगा। यदि 5, 10, 15, 20 हज़ार तक का है तो उसके लिए आपको सरपंच लिख के दे देंगे
2: जी,
3: और इससे बड़ा है तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल से उसकी NOC की जरूरत पड़ेगी। तो 10,000-15,000 का ही लगाता है अपने ग्रामीण एरिया में, 5 से लेके 15,000 तक ही लगते हैं मुर्गी फार्म
2: जी।
3: तो उसके लिए ग्राम पंचायत आपको दे देगी, और उसमें ग्राम पंचायत आप पे कुछ वो रूल रेगुलेशंस लगा सकती हैं कि आप हर महीने मक्खियों की दवाई का प्रयोग करेंगे, या जो डेड बर्ड्स हैं वो इधर उधर मरे हुए पक्षी या मुर्गियां इधर उधर नहीं फेंकोगे, उसके लिए कुई होगी, कुई में उनका अच्छे तरीके से निस्तारण करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार देखने को आया है कि जिस गाँव के नजदीक वो लग जाए, गाँव में मक्खी मच्छर ज्यादा प्रकोप हो जाए, और फिर एक जो आवारा कुत्ते हैं वो मरे हुए पक्षियां नहीं हुए फेंक दे हैं, वो कुत्ते भी मांसाहारी हो जाए हैं, और वो भी फिर गांव में बड़ी दिक्कत करे हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि भाई क्या इसकी कोई प्रिकॉशन है या कुछ, मतलब
3: यही गाइडलाइन है। और ये हमें अपने समय के सत्र पे भी, यदि मुझे मुर्गी फार्म खोलना है या बलजीत भाई जी आपको मुर्गी फार्म खोलना है, तो एनवायरमेंट के प्रति हम भी वो रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: हमें उसके फीड में मक्खियों की दवाई और कुई, मरे हुए पक्षियों के लिए, मरी हुई मुर्गियों और पक्षियों के लिए कुई का प्रबंध हमें पहले करना चाहिए
2: जी। डॉक्टर साहब बात करें इस मौसम की, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत होगी, तो ऐसे मौसम में हम के शुरुआत में एहतियात बरतें?
3: जैसे अब गर्मियों का एकदम टेम्परेचर का सडन राइज आया है जी, एकदम टेम्परेचर बढ़ा है, अब लू भी चलेंगी। पहले तो मैं आपको लू से बचाव का, पक्षियों का बता देता हूँ
2: जी।
3: तो अपने ना मोटे तौर पे ना 3 तरह के मुर्गियां पालते हैं अपन, एक तो ब्रॉयलर जो हाँ। मीट के लिए यूज होती है, एक लेयर जो अंडे के लिए यूज होती है, और जो एक ब्रॉयलर पेरेंट होता है जिससे हमें चूजे अंडा लेके और उस अंडे से जो चूजा निकलता है उसको हम पशुपालक को मुर्गी पालक को दे देते हैं, जिसको वो तैयार करके 30 से 35 दिन में मार्केट में मीट के लिए बेचता है
2: जी, यानी कि बीज ने तैयार कर लिया अपने,
3: हाँ 30 से 35 दिन का वो तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हमें इस मौसम में क्या ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि एकदम गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है,
2: बिल्कुल।
3: तो जो लोकल शेड है जो अपने एरिया में है, वो जो हवा उसकी शेड की डायरेक्शन है, जो हम मुर्गी खाना बनाएंगे मुर्गियों के लिए जो घर बनाएंगे उसकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए,
2: पूर्व से पश्चिम जी। इसका क्या खास मकसद है डॉक्टर?
3: तो जैसे पूर्व से पश्चिम होने का ये मतलब है अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में हवा पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है, तो ना तो गर्म हवा एकदम शेड के अंदर जा पाएगी ना ठंडी हवा शेड के अंदर जा पाएगी
2: जी।
3: तो उसके ये फायदेमंद है। और इस मौसम में जो छोटे किसान हैं, जो छोटे मुर्गी फार्म है 5,000 का 10,000 का है, उनको एक तो नीचे रेत जो नीचे लीटर सिस्टम बोलते हैं इसमें मुर्गियों में, जो नीचे वैसे तो जो सर्दियों में तो भूसा डालते हैं वो, और नीचे अब ब्रूडिंग रेत रेत पे होगी जो आते ही चूजे को रखेंगे, तो वो बालू रेत पे चूजा रखा जा सकता है, वो जो नीचे से ठंडा रहेगा, और 10 दिन के बाद उस पर हल्का हल्का पानी मारना शुरू कर देंगे। फिर जब 15 दिन का बर्ड हो जाएगा वो लगभग लगभग आधा केजी का हो जाता है 15 दिन का, तो फिर आप ना उसके एक साइड पल्ली लटका दोगे, बोरी वाली पल्ली जो देसी भाषा में, और उसके ऊपर एक पाइप बांध दोगे जिससे वो पानी, और उसमें छेद कर दोगे पाइप में, पानी टपक टपक टपक के उन बोरियों में पड़ता रहे, और अंदर फर्राटे लगा दोगे, वो फर्राटे उस हवा को खींच लेंगे,
2: देसी कूलर
3: जिससे अंदर का टेम्परेचर बना रहे। एक है जो 10,000 से ऊपर है या जिसके पास पैसे का जुगाड़ है, उसमें हम बाहर जैसे कूलर की टाट लगाते हैं, पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ कूलर की टाट लगा देंगे, और जो पूर्व की तरफ बड़े बड़े पंखे लगा देंगे, फैन लगा देंगे वो, और अपने शेड को बिल्कुल कवर कर देंगे पॉलिथीन से या किसी भी चीज से, वो कवर हो जाएगा, तो वो पंखे बाहर चलेंगे तो कूलर की तरफ ठंडी हवा को अंदर से
2: बीच में के, हाँ बिल्कुल, वो प्रवाहित
3: होती रहेगी।
2: डॉक्टर साहब, छत का कैसे हम इंतजाम करें?
3: छत का जो छत पे ना, अपने इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, थैशिंग बोलते हैं उसको, छत पे सरकंडे या अपन जो पराल यूज करते हैं उन सरकंडे या पराल की अपन को छत बंधवा देनी है।
2: अच्छा।
3: और छत पे अपन आजकल जैसे फुहारा सिस्टम है, तो छत पे अपन एक पाइप से फुहारे लगा देंगे। अच्छा। और वो ऊपर से पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे जिससे छत अपनी ठंडी रहेगी,
2: यानी कि पक्की छत हो उसमें कुछ और सफेदी वगैरह,
3: हाँ जो पक्की छत है, जो पक्की छत है उस पे भी ये कर लेते हैं हम, पक्की छत पे बड़ी कामयाब चीज है,
2: पराल,
3: हाँ पराल डाल के और वो स्प्रिंकल लगा के और वो स्प्रिंकल से कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, इन दिनों में बात करें, मुर्गी घरों की बात करें, मुर्गियां ही करें, बच्चियां ही करें, कोई बीमारी बीमारी भी आने का अंदेशा हो जा रहा है?
3: जितना भी टेम्परेचर राइज होगा, ये बड़ा फास्ट ग्रोइंग बर्ड है, बहुत जल्दी बड़ा होता है, तो उसमें स्ट्रेस भी ज्यादा होता है।
2: अच्छा।
3: तो स्ट्रेस ज्यादा होएगा तो कुछ ना कुछ बीमारियों का भी डर रहेगा। तो इन दिनों में एक बात बता देता हूँ मैं, अपना जो मुर्गी पालक भाई है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट बाजार में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल है मुर्गियों के लिए, वो ले आए और वो सुबह 7 बजे के पानी में 1 ग्राम 1 लीटर पानी में,
2: अच्छा।
3: और शाम को 4 से 5 बजे तक चल रही थी इलेक्ट्रोलाइट, और एक विटामिन सी का पाउडर,
2: अच्छा
3: हाँ तो विटामिन सी का पाउडर यदि फीड में मिलाने में सक्षम हो तो फीड में मिला ले, और पानी में देना चाहिए तो 10 ml 10 ग्राम 100 वर्ड पे पानी में दे सकता है।
2: पानी का इंतजाम कैसे करें डॉक्टर साहब उनका?
3: तो पानी के पीने के इंतजाम 2 तरीके के होते हैं बलजीत भाई साहब इसमें, तो एक तो होता है निप्पल सिस्टम,
2: अच्छा
3: तो जो चैनल जैसे पाइप लगी और उसमें निप्पल लगे हैं वो बर्ड इतना जल्दी सीख लेता है, आपके पास एक दिन का बर्ड आता है ना तो उसमें उसको देख के चोंच मारनी शुरू कर देता है, रेड कलर के होते हैं वो, लाल रंग की तरफ आकर्षित होता है, चोंच मारने शुरू कर देता है, वो टपके टपके पानी पी लेगा।
2: अच्छा।
3: दूसरा है अपने लिए पानी के बर्तन होते हैं, जो पहले कुछ छोटे फार्म है तो ठंडा पानी रहे, घड़े की व्यवस्था की जा सकती है, एक प्लेट लेके घड़े को पानी से भर के उस प्लेट पर उल्टा कर दोगे तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी, जैसे वो पानी उसमें मारेगा तो वो हिलेगा और पानी की व्यवस्था होती रहेगी। आजकल फीडर और ड्रिंकर्स भी आए हैं बलजीत भाई, तो प्लास्टिक के फीडर जैसे अब घड़े की तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं रही, तो प्लास्टिक के फीडर और ड्रिंकर्स पाइप के थ्रू लटके हुए हैं, उनमें से पानी आपको लगातार मिलता रहेगा।
2: बिल्कुल, कई जगह मिट्टी के कुंडे
3: बने पाओगे
2: तो उसमें ठंडा पानी,
3: ठंडा पानी
2: तो उनमें भी हमें मिला के रख सके,
3: हाँ उन्हीं में उसी पानी में हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है जी।
2: अच्छा।
3: जो मुर्गी के लिए पानी पीना है उसी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है हमें। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो फीडर और ड्रिंकर है ना ये प्रॉपर पोजीशंस में होनी चाहिए और प्रॉपर अनुपात में हो मुर्गियों के, ये कम

0: तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम रखेंगे, अपना ब्रूडिंग अलग जगह होगी, ब्रूडिंग बोलते हैं उसको, ब्रूडिंग जो ब्रॉयलर के लिए तो एक ही शेड बहुत है आपका
1: बिल्कुल,
0: पर जो आप लेयर अंडे देने वाली मुर्गियां पालोगे उसका ब्रूडिंग शेड अलग होना चाहिए और आपका लेइंग शेड उससे कुछ दूर होना चाहिए।
1: जी, उसमें इनकी संख्या कितनी रक्षा, जैसे कि हम देखें कि भाई एक मत घने हो गए हैं उसमें भीड़ भड़ाका या कुछ किस तरह का भी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बलजीत भाई किसानों के लिए। जो ब्रॉयलर अपन पालते हैं
1: जी,
0: तो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जब पहले दिन का ब्रॉयलर रहता है, एक फिट पे हमें चार बच्चे रखने हैं,
1: एक वर्ग फुट पे।
0: हाँ, एक वर्ग फुट पे चार बच्चे रखने हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे 1000 वर्ग फुट की जगह है अपने पास, 30 फुट चौड़ा है और 40 फुट लंबा है, तो 1200 स्क्वायर फीट जगह होगी अपने पास। तो उसमें अपन ने गर्मियों में 1000 ही बच्चे रखने हैं।
1: अच्छा,
0: एक स्क्वायर फीट में चार बच्चे रखेंगे, वो अपन नाप के कर लेंगे, वो बाड़े में डिवाइड कर देंगे उसको। फिर दूसरा सप्ताह शुरू होगा जब मुर्गियों का, जब एक स्क्वायर फीट में तीन कर देने हैं, जब तीसरा सप्ताह शुरू होगा जब एक स्क्वायर फीट में दो बच्चे कर देने हैं,
1: जो जो उनकी आकार बढ़ता
0: आकार बढ़ता, जब चौथा हफ्ता शुरू होगा फोर्थ वीक जब एक स्क्वायर फीट में एक बच्चा, और गर्मियों में हमने 1.25 स्क्वायर फीट में एक बच्चा रखना है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वेंटिलेशन उसको प्रॉपर मिलता रहे,
1: हवा बीच में आवागमन जरूरी है। और डॉक्टर साहब, खाने का जैसे कि आपने बताया था कि भाई जो खाना देना है उसमें के कुछ और भी कुछ बढ़ोतरी करनी मात्रा की,
0: जो खाना है मतलब इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन जो आसानी से वो डाइजेस्ट कर ले।
1: अच्छा,
0: जैसे मक्का
1: पचास
0: सोया,
1: के
0: हाँ, जिसको आसानी से पका सके, मक्का सोया का फीड, और उसमें विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस मिनरल्स जो भी है वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाके उसकी फूड फीड की बैलेंसिंग करवा के आप वो उसको समय समय पे डाल सकते हैं।
1: ये बना बनाया अगर इनका,
0: हाँ, तकरीबन आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी फीड मिल लगी हुई है जो बना बनाया फीड आता है, वो तीन तरह का फीड बताते हैं आपको।
1: अच्छा,
0: आप बलजीत भाई जाओगे तो कहेंगे जी हमारे पास तीन तरह का फीड है, एक स्टार्टर बोलते हैं, एक ग्रोवर बोलते हैं, एक फिनिशर बोलते हैं।
1: घर पे ही बनाया जा सके डॉक्टर साहब?
0: हाँ, घर पे भी बनाया जा सकता है,
1: घर पे कुछ थोड़ा असाधारण तरीका अपना।
0: हाँ, घर पे आपको चक्की, जैसे चक्की नहीं है सिंपल, चक्की टाइप आपको रखना पड़ता है, ग्राइंडर और मिक्सर।
1: अच्छा,
0: तो आप उसमें प्रॉपर अनुपात में अपने डॉक्टर से, वेटरनरी सर्जन से मिले, वो आपको लिख के दे देगा, इतना मक्का मिलाना, इतना सोया मिलाना है, इतनी दवाइयां मिलानी, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन प्रीमिक्स, लीवर टॉनिक जो भी मिलाने हैं, तो वो आपके फीड को बैलेंस करके दे देगा, वो आप घर पर भी बना सकते हैं।
1: कितने दिन काम तैयार कर सकते हैं एक बार में?
0: तो ये बहुत लंबा, बहुत ज्यादा दिन का तैयार नहीं करना चाहिए क्योंकि फफूंद लगने का डर रहता है, ये लगभग लगभग 10 से 12 दिन का ही अपने पास तैयार रखना चाहिए। और जो ये बड़ी फीड मिल है ये आपको पका के दाना देती है
1: जी,
0: तो पेलेटाइजेशन बोलते हैं इसको, तो ये पका के देंगी, वो दाना आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो।
1: रोशनी का कैसे प्रबंध है?
0: हाँ, रोशनी का जो प्रबंध करना है, जो छोटा बर्ड होगा उसमें आपको बल्ब लगाने पड़ेंगे दाना देखने के लिए अंदर, क्योंकि गर्मी का सीजन है, पर्दे हम बहुत ज्यादा खोल नहीं सकते हैं, ऊपर से बस वेंटिलेशन के लिए थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलेगा, तो उसके अंदर आप बल्ब लगा सकते हो
1: जी। बल्ब भी मतलब किस तरह के, एक तो ये होशियार है अपने CFL भी हैं, या जो
0: CFL के
1: गर्माश देने वाले हैं,
0: जो CFL के बल्ब हैं वही बढ़िया रहेंगे।
1: अच्छा,
0: और वो एक 10 लक्स मीटर होता है जो लाइट को नापने का यंत्र होता है, तो लक्स मीटर के हिसाब से लाइट रखनी है, वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास, या 10 से लेके 20 लक्स ब्रॉयलर में रख सकते हो आप, और 10 से 20 लक्स ही लेयर में लाइट चाहिए आपको।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अब की बात करें तो मौसम गर्मी का है, इसमें तो हम वैसे लगा सके हैं, अगर सर्दियां का मौसम हो तो फिर वो गर्माश देने वाले बल्ब।
0: हाँ, सर्दियों का मौसम होगा तो आपको बठिया लगानी पड़ेंगी जी।
1: हाँ, हाँ।
0: तो जिससे बाहर से गर्माइश मिले, क्योंकि जो पक्षी होता है ना, ये मुर्गी का मुर्गी है ये, जो अपनी ये पाइक्लोथर्मिक होती है, इनके अंदर ना टेम्परेचर को मेंटेन करने की ग्लैंड नहीं होती, तो इसके लिए शुरू में हमें इनका 95 डिग्री फारेनहाइट हर मौसम में टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अब तो 95 डिग्री फारेनहाइट वैसे ही है, पहले हफ्ते में, दूसरे में 90, फिर ऐसे ऐसे घटाते हैं, और तीसरे में 85, चौथे में 80, तो ये टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और मुर्गी का शेड का तापमान कभी भी 28-30 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना,
1: नहीं जाने देना।
0: हाँ, वरना फिर वो मुर्गी का हमें लॉस होगा, या तो वो मोर्टेलिटी होगी मुर्गी में, या वो अपना अंडा घटा देगी, या कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, देखें कि वे कई बार गर्मी लाग जाए, जैसे अपना पशुओं ने भी लाग जाए, मुर्गियों में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उनके क्या लक्षण दिखाई देंगे?
0: तो मुर्गियों में यदि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो आपको सारी मुर्गी पेंटिंग करती और हाफती हुई दिखाई देंगी मुंह खोल के।
1: अच्छा।
0: और वो पानी की तरफ ज्यादा जाएंगी, फीड आपका कंज्यूम नहीं करेंगी, जिससे, क्योंकि ये तो एक फसल की तरह पाला जाता है, तो आपकी फीड कन्वर्जन रेशियो जिससे घट जाएगी, और वो कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी, जैसे CRD की बीमारी है, वायरल की बीमारी है, और कोई स्ट्रेस है, तो किसी ना किसी चीज की वो बीमारी पकड़ लेगी।
1: फिर उसमें तुरंत कोई अपना देशी इलाज करें या फिर पशु चिकित्सक को बुला के लेना पड़े?
0: नहीं, आप ना जैसे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी लेबोरेटरीज बनी हुई है हरियाणा में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरी पे आप जाके संपर्क करें, वहां पशु चिकित्सक आप मरे

0: अपने मुर्गियां ले जाएं और पशु चिकित्सक उनका पोस्टमार्टम करके आपको ट्रीटमेंट बता देगा वो वहां पर।
1: नहीं, जैसे गर्मी का है तो उसमें तुरंत क्या करना चाहिए
0: गर्मी का
1: हमें?
0: जो तुरंत करना चाहिए, गर्मी के तुरंत में आप इलेक्ट्रोलाइट और
1: अच्छा
0: नींबू पानी और शक्कर,
1: अच्छा
0: यदि आपके पास कुछ भी बाहर नहीं जा सकते, आप दुकान से
1: हाँ
0: नहीं खरीद
1: हाँ
0: सकते, तो आप नींबू पानी और शक्कर का घोल मिला के उसको बर्ड को पिला दो,
1: अच्छा, तो उसमें मतलब शांति ही पड़
0: शांति
1: जाएगी
0: मिल
1: उनके।
0: जाएगी।
1: डॉक्टर साहब,
0: और
1: अंदर और
0: पानी को
1: बाहर जाने
0: समय
1: के
0: समय
1: लिए?
0: पे बदलता रहना है,
1: हाँ
0: क्योंकि पानी का टेम्परेचर हाई नहीं होने देना, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक की टंकी लगी है, जब भी डालो ताजा पानी, ठंडा पानी डालना है कि मुर्गी तक ठंडा पानी पहुंचे।
1: बिल्कुल है। वे जो पाइप आती है टंकी से, वहां तक उसमें भी बता देता कि भाई कोई बोरी वगैरह
0: हाँ,
1: टाट वगैरह
0: बोरी
1: लपेट
0: लपेट के,
1: दें
0: और
1: ताकि
0: टंकी के
1: गर्म पानी
0: ऊपर,
1: ना हो।
0: टंकी के ऊपर भी ठंडे बोरी लपेट दो।
1: डॉक्टर साहब, आना जाना भी पड़ा है मुर्गी घरों के अंदर, तो उसमें क्या एहतियात बरतें?
0: तो देखो, बायोसिक्योरिटी एक वर्ड है,
1: हाँ
0: तो मुर्गियों के लिए बायोसिक्योरिटी सबसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यदि आपने मुर्गी पाल रखी है, तो आप किसी दूसरे मुर्गी पालक भाई के पास जाके नहीं बैठेंगे, क्योंकि
1: अच्छा
0: यदि उसके पास कोई बीमारी है, तो वो उसके जुत्ती का यदि अपनी पंख भी लग का गया उसका, तो वैसे अपने शेड में भी बीमारी आ जाएगी। तो अपने बायोसिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, तो आना जाना ज्यादा नहीं है, और जो अपना मुर्गी फार्म है उसके चारों तरफ अपन ने बाउंड्री बनानी है, और
1: अच्छा
0: बाउंड्री जो एंट्रेंस है मुर्गी फार्म की, तो उसमें खड्डा बना देना है और उसको
1: अच्छा
0: पक्का कर देना है खड्डे को,
1: हाँ
0: और उसमें लाल दवाई, फिनाइल या कुछ बने बनाए आजकल पाउडर भी आ रहे हैं, विरकोनेस एंटीवायरल पाउडर्स आ रहे हैं, वो
1: हाँ
0: उसमें डाल के रखने हैं। कोई मोटरसाइकिल आओगी, और यदि आपके एंट्रेंस है जो आदमी आएगी, वो थोड़ी भीड़ी कर देनी है,
1: अच्छा
0: ऊपर आपको फुहारा लगा देना है,
1: हाँ
0: तो जो भी आदमी उससे प्रवेश करके होगा, वो सारा गिल्ला होगा होगा,
1: हाँ
0: उसमें कोई कीटाणु विषाणु जीवाणु लेके आ रहा है, तो वो मर जाएंगे।
1: अंदर जब हम जाएंगे मुर्गी घर के अंदर, क्योंकि उनका दाना देखने के लिए भी, पानी देखने के लिए भी, या कुछ जैसे अंडे दे रही हैं तो अंडे उठाने के लिए भी,
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें क्या एहतियात बरतें कि कोई सफेदी वगैरह का बता करें कि भाई?
0: हाँ, तो वो सफेदी का चुनना, तो जो भी अपने शेड पैदल चलने के लिए बनाएंगे, जो अंडे
1: हाँ
0: उठाने के लिए
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: वो तो सफेदी के चुनने से कवर होना चाहिए।
1: जी
0: और जैसे अपन ब्रॉयलर वाले शेड में अंदर जाएंगे, तो वहाँ एंट्रेंस पे भी एक खड्डा डिप रखना पड़ेगा
1: अच्छा
0: अपने को, उसमें जूते डुबो के, और अपने को फार्म की अपनी ड्रेस फार्म पे रखनी
1: अलग
0: पड़ेगी,
1: अलग से रखनी
0: अलग से
1: पड़ेगी।
0: रखनी पड़ेगी वो ड्रेस चेंज करके, फिर हम अंदर जाएंगे उसको देखने के लिए,
1: जी
0: उसकी जो एक्टिविटी हमें नोट करनी है, या कोई मॉडलिटी है या कोई और फीड डलवाना है, तो वो
1: हाँ
0: फार्म की हमें ड्रेस अलग से रखनी पड़ेगी।
1: जी। डॉक्टर साहब, इनमें बीमारी कौन कौन से आने के अंदेशे हो जाए हैं?
0: तो दो तरह की बीमारी, तीन तरह की बीमारी ज्यादा आती हैं इनमें।
1: हाँ
0: तो एक तो वायरल बीमारियां होंगी,
1: जी
0: तो जो विषाणु से होंगी, एक बैक्टीरियल होगी जो जीवाणु से होंगी, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: खाने पीने से होंगी या मैनेजमेंट के कारण होंगी ज्यादातर।
1: हाँ
0: तो ये तीन तरह की बीमारियां इनमें ज्यादा आती हैं।
1: जी
0: तो जो वायरल बीमारियां हैं, आपको पता है जी, उनकी वैक्सीन आती हैं।
1: हाँ
0: तो मैं किसानों को बता दूं कि वायरल बीमारी होगी जो, वैक्सीन इस सीजन में जरूर कराएं। मैं एक मोटी मोटी वैक्सीनेशन बता देता हूँ, ब्रॉयलर में तो सिर्फ तीन वैक्सीनेशन की ज्यादातर जरूरत होती है।
1: अच्छा
0: जो पांचवें दिन है, वो एक रानीखेत डिजीज की वैक्सीन है, तो रानीखेत डिजीज की वैक्सीन पांचवें दिन हमें पिलानी है,
1: अच्छा
0: पांचवें दिन पानी में पिलानी है। जितनी जल्दी पानी उस वैक्सीन का पी जाए, उसकी डोज बन के आती है, 500 की डोज, 250 की डोज, 1000 की डोज, 2000 की डोज, 5000 की डोज, वो
1: अच्छा
0: उसके पानी में डाल देनी है, और वो 10 से 15 मिनट में वो सारी मुर्गियां उस पानी को पी जाए, ठंडे पानी को,
1: जी।
0: वो अपने को कोल्ड चेन में पिलानी है उसको।
1: कोई सीजन है जैसे पशुओं के टीके लग गया, अगर एनुइन का भी थोड़ा बहुत
0: इनको हर
1: ऐसा?
0: हर बार
1: अच्छा
0: इनकी वैक्सीनेशन, यदि आप जब नया पक्षी लेके आओगे, तो
1: हाँ
0: हर बार वैक्सीनेशन होगी इसकी।
1: जी
0: तो पांचवें दिन मैं बता रहा था, पांचवें दिन तो ये आरडी की, रानीखेत डिजीज की वैक्सीन पिला दी, 12वें दिन एक गुम्बोरो की बीमारी की पिला दी, और 21वें दिन फिर एक रानीखेत डिजीज की पिला दी। तीन वैक्सीन बहुत जरूरी है मुर्गियों में, हर
1: जी
0: बार जितनी बार भी आप मुर्गी लाओगे, तो ये
1: जी
0: तीनों वैक्सीन कराओगे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया हमारा अंदर का हिसाब किताब। बाहर से कुछ है जो मुर्गी घर उसको ठंडक मिले, इसके लिए हम क्या कर
0: तो
1: सकते
0: बाहर
1: हैं?
0: से जो मुर्गी घर को ठंडक मिले, तो बाहर लंबे पेड़ लगा सकते हो आप,
1: अच्छा
0: जिनकी ऊंचाई पे जाके वो करें, नीचे हवा का प्रेशर ना रोकें, वो लंबे पेड़ जय लगा
1: अशोक के
0: सकते हो,
1: पेड़
0: जैसे
1: जैसे,
0: जैसे अशोक के पेड़ हो गए, जैसे
1: शहतूत, क्या क्या
0: सफेद,
1: भी जिक्र करा जा है,
0: हाँ
1: शहतूत के पेड़
0: हाँ
1: भी
0: शहतूत
1: बताते
0: के
1: हैं।
0: पेड़, घने पेड़ जो ऊपर से झाड़ी हो जाए, और
1: हाँ
0: जिनका तना लंबा हो,
1: अच्छा, उससे जो है ठंडक के
0: ठंडक
1: कुछ पानी
0: बनेगी।
1: वानी छिड़क के भी कुछ ठंडक बनाई जा
0: हाँ,
1: सके ऐसे?
0: चारों तरफ आप नाली बना सकते हो अपने फार्म के, उससे ठंडक बना सकते हो, उससे ठंडी हवा जाएगी, और आप बोरी लटका रहे हो तो बोरी पे भी कंटिन्यू गिल्ली, यदि ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकते, तो एक आदमी पाइप मारे जाओ उस बोरी पे,
1: हाँ
0: वो बोरी गिल्ली रहे तो ठंडी हवा अंदर जाएगी।
1: बिल्कुल, और जो ज्यादा जिनका हिसाब किताब है कुछ एसी वेसी का ही प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर साहब
0: नहीं, एसी का प्रयोग नहीं करते, वो क्लोज शेड बना देते हैं बिल्कुल ढका हुआ, और उसमें पंखे जो बड़े पंखे हैं जो बहुत आवाज आ रहे हैं, जो फ्लो एयर ऑफ फ्लो को मेंटेन करते हैं, तो वो इस हिसाब से अपन 5,000 स्क्वायर फीट का बना रखे हैं अपन 10,000, तो उस हिसाब से हम पंखे की क्वांटिटी बता देंगे, आपने इतने बड़े पंखे इतने लगवाने पड़ेंगे, तो जिससे आपके शेड में वो एसी शेड बन जाएगा।
1: पहली तो बात ये है डॉक्टर साहब के जो भी मुर्गी फार्म खोलने की सोच रहे हैं भाई, तो बिना प्रशिक्षण के तो काम संभव नहीं है, प्रशिक्षण कहाँ कहाँ से?
0: प्रशिक्षण इसका अभी हरियाणा में हर हॉस्पिटल में हो रहा है, 11 दिन का प्रशिक्षण हम कर रहे हैं, 11 दिन की ट्रेनिंग देते हैं उसको, ये हर सब डिवीजन लेवल पे ट्रेनिंग मिल रही है।
1: अच्छा,
0: तो साल में एक बार होती है, यदि आपको रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए तो लुआस जो यूनिवर्सिटी है उसके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें भी ये 11 से 21 दिन की ट्रेनिंग पशुओं के, ये मुर्गियों की देखभाल के लिए और रख रखाव के लिए होती है।
1: ये फ्री है डॉक्टर साहब
0: ट्रेनिंग? हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: अच्छा, इसमें के कुछ थोड़ा हाँ करना पड़ेगा अगर शुरू में
0: भाई? यदि आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाएं, अपना नाम और अपना फोन नंबर उसको नोट कराएं, जब भी ये ट्रेनिंग आएगी तो आपके पास फोन आ जाएगा, और आप वहां जाके आपको 2 फोटो चाहिएंगे इसके लिए, एक फॉर्म होता है वो फॉर्म भर लेंगे और आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे 11 दिन तक।
1: डॉक्टर साहब चलते चलते अभी गर्मी का सीजन है, आन लाग रही है, बतौर आवागी, तो जो भी मुर्गी फार्म बना रहे हैं किसान भाई, वो के एहतियात बरते हैं इस मौसम के देखते हुए?
0: देखो, इस मौसम को बरतते हुए एक तो अपनी गर्मी से बचाव के जो मैंने ये उपाय बताए हैं इतने सारे, ये उपाय की पहले तैयारी कर ले, ये नहीं कि गर्मी के बाद करनी है, क्योंकि अभी ये बोरी पे अपन पड़ते हुए पानी डाल लेंगे, अब ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, अभी ह्यूमस नहीं है, ड्राई है एयर, तो यदि जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जब पंखों का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा, छत वाले पंखे या फर्राटे आपके शेड में पहले ही अरेंज कर लें, क्योंकि आप नुकसान होने के बाद करोगे तो वो आपको आपके लिए, क्योंकि सीधा पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि किसान भाई हो, तो इस चीज के लिए आप पहले से ही तैयारी रखें।
1: बिल्कुल, पहले से तैयारी रखें, और जो जो टीके इनको वैक्सीन जो लगाई जाती है उसका ध्यान रखें,
0: ध्यान रखें,
1: तो इसमें तो ठीक है, हिसाब किताब बन जाएगा, मुनाफे का भी काम है।
0: बिल्कुल, मुनाफे का काम है यदि इसको आप अच्छे साइंटिफिक तरीके से और अच्छी बायोसिक्योरिटी से अच्छे रख रखाव करोगे, तो ये मुर्गी पालन घाटे का व्यवसाय नहीं है।
1: जी डॉक्टर राजू शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये जानकारी देखो हर मौसम जब बदली होता है तो उस मौसम होनी भी चाहिए, ताकि जो नए भाई हैं उनको भी पता लग जाए कि हमने के क्या आगे चल कर करना है। आप आए स्टूडियो में, आई इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बलजीत भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: यह तो भैया ने बातचीत सुनी भाई, मुर्गी पालन में किन किन बातों का ध्यान करना है, और ये भी एक रागनी सुनेंगे जिसके गायक कला करेंगे भीम सिंह।

0: यह तो भैया ने रागनी सुने जिसके गायक कलाकार थे भीम सिंह। और इस रागनी के साथ है जो अपना कार्यक्रम कृषि जगत चल रहा है उसका समय तो इतना ही। अगला कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में भैया ने बातचीत भी सुनवाओगे, मनोरंजन भी करवाओगे, लेकिन शुरुआत में एक जिक्र कर दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक यो हम नारा भी कह सकें इस बात ने और एक संदेश भी कह सका। हाँ, इसमें एक दूसरे राज्य को जोड़ना, उसकी संस्कृति की पहचान करवाना, उसमें क्या कुछ है उसको समझना, यही सरकार की एक पहल थी। इसी बात को लागू कराया गया था और इसका असर देखने मिला कि भाईचारे में बढ़ाव मिला है, बढ़ोतरी मिली है। फिर ग्रामीण संसार के संबंध में अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करा तो देखो कुछ इसे पहले मेल मिलाप थे जो ई बाल में ख़त्म तो नहीं हुए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन एक डर इस बात का कि भाई आज जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो कुछ गलत संगतियों में पड़ के कुछ रास्ता भटक जाए हैं। और फिर बात एक का है कि भाई कोई अड़ोसी पड़ोसी को गई सेना अपना बालक से बाड़ा को ना, देखो थोड़ी सी चूक तो उनके परिवार से भी उसके रह गया है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका बालक गलत संगत में पड़े। तो जो युवा हैं, देश का भविष्य हैं, आगे जाकर उन्हें बहुत कुछ करना है, और वो इसे टाइम पर जब किसी गलत संगत में पड़ जाए हैं तो उनका जो आगे निरंतर जो चलने वाले जो गति थी वो रुक जाए है, उनका विकास भी उस टाइम पर रुक जाए है। और बड़ा दुख की बात है कि युवा ही अगर किसी खतरे में आ गया तो आगे देश का भविष्य शायद अंधकार में नजर आ है। तंबाकू तो बहुत सारी हानियाँ हुए हैं, गलत संगति में जो पड़ रहे हैं ना वो बड़ा इसका शिकार हो रहे हैं। तो तंबाकू का जो सेवन जो करे हैं उस तो होते सेवन करते कि हानि बने हैं या बातचीत से डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बता रखा है तो सुनेंगे तो कुछ ना कुछ असर जरूर होगा।
1: श्रोताओ, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा तंबाकू से होने वाली हानियाँ, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विपुल गुप्ता जी को। आप प्राध्यापक हैं श्वसन रोग विभाग PGIMS रोहतक में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, तंबाकू सेवन की जहाँ तक बात है या जहाँ तक धूम्रपान की बात है,

0: तो आजकल शहरों की खास तौर बात करें तो उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उस स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर रहा है। यानी कि इतना धुआं हो जाता है कि हर व्यक्ति के हिस्से में दो चार बीड़ियों का, सिगरेटों का धुआं है, वो तो ज़रूर आता ही होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि तंबाकू सेवन का है। तंबाकू सेवन दो प्रकार से हम मान सकते हैं, एक तो चबाने का और एक सिगरेट के रूप में पीने का। तो पहले बात करेंगे सिगरेट का या बीड़ी का जो धुआं होता है, ये कितना नुकसानदायी होता है, और दूसरा जानना चाहेंगे इसमें जो केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं।
1: तो मैं जय धन्यवाद करना चाहूँगा कि आकाशवाणी का ये बहुत ही जो है आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आज ये टॉक रखी है।
0: जी
1: तो धूम्रपान, मैं कहना चाहूँगा कि धूम्रपान किसी भी तरीके से किया जाए, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, और हमारे ग्रामीण परिवेश में लोग हुक्के से भी जो है धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान का एक भी कश वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो धूम्रपान हमें किसी तरह से नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, कितनी भी मात्रा में नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये रही। दूसरी, आपने कहा कि पोल्यूशन है जिस हिसाब
0: जी
1: से, तो जो है शहरों में जो व्हीकल का प्रदूषण है और कुछ फैक्ट्रियों का प्रदूषण है, उस प्रदूषण की वजह से एक आम आदमी जो कि सिगरेट नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, उसके शरीर में भी करीब आप समझिए कि एक या दो दो या तीन सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में चला जाता है। अगर हम ऊपर से धूम्रपान और करेंगे
0: जी
1: तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। धूम्रपान के जो हम जब सिगरेट बीड़ी का धुआं अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो धुआं जाता है, उस धुएं के साथ में करीब हजारों तरह के जो है केमिकल्स जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर केमिकल्स जो हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं या कार्सिनोजेंस होते हैं।
0: जी
1: तो ये धूम्रपान हमारे शरीर के ऑलमोस्ट सभी अंगों का कैंसर करता है। बाकी मुख्यतः मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, ये तो कैंसर हो गया। उसके अलावा धूम्रपान से जो हमारे हृदय रोग की जो है बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो
0: जी
1: धूम्रपान जो है किसी भी तरह के से किया जाए, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, हुक्का हो, वो हमें पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसे हमें इमीडिएटली उसको त्याग कर देना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया हुक्का हो, हुक्के का ये मानते हैं कि उसके नीचे पानी होता है तो उसके जो रसायन हैं वो उसमें घुल जाते हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है।
1: ये कुछ हद तक सही है
0: जी
1: पर पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वो जो पानी होता है वो कुछ रसायनों को तो सोख सकता है बट सारे रसायन नहीं सोख पाता, और वो जो जो उसके बावजूद भी बहुत सारे रसायन जो है हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और वो जो है वो क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है शरीर को कैंसर होने के लिए, तो इसलिए वो जो शरीर में पहुंच जाते हैं तो वो कैंसर का कारण बनते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, और ये भी देखा गया है कि जो हुक्का पीने वाले हैं उनके हाथ, जब वो हाथ से पकड़ते हैं तो उनके हाथ पीले हो जाते हैं, वहाँ पर पीला पीला निशान है वो पड़ जाता है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ना माने कि उस पानी में सारे केमिकल है, रसायन है, वो घुल गए हैं।
1: तो वही है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में लोग हैं वो ये समझते हैं कि हुक्का पीना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बीड़ी पीते हैं तो ही नुकसान होगा।
0: जी
1: तो मैं आपके माध्यम से जो है सब लोगों को देना चाहता हूँ कि धूम्रपान आपको किसी तरह से नहीं करना है, कोई ऐसा तरीका नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के पीछे फिल्टर लगा हुआ होता है,
0: जी
1: फिल्टर टिप सिगरेट आती हैं जी, इसमें जो है धुआं रुक जाएगा
0: जी
1: और सिर्फ निकोटिन अंदर जाएगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं या कुछ जो है कंपनियों की जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उन्होंने कि भाई हमने टिप लगा दिया है इसमें से नहीं जाएगा धुआं, तो वो जो है वो बिल्कुल गलत है, और धूम्रपान किसी भी तरह से करेंगे तो आपको नुकसान ही देगा, कोई फ़ायदा नहीं दे सकता किसी तरह का।
0: जी डॉक्टर साहब, इसकी आदत किस प्रकार से पड़ जाती है, क्यों इसकी तरफ लालायित होते हैं?
1: देखिए जो धूम्रपान में इसमें जो टोबैको या तंबाकू के अंदर एक होता है पदार्थ जिसको निकोटिन कहते हैं हम,
0: जी
1: तो निकोटिन जो है वो बहुत ही एडिक्टिंग सब्सटेंस होता है, जिस तरह की आदत हमारे शरीर को बड़ी जल्दी आदत पड़ जाती है। जब उसको हम धुएं का कश अंदर लेते हैं तो उसका जो है ब्लड के अंदर वो जो है एकदम चला जाता है, और उससे हमारे दिमाग को और शरीर को एक हाई मिलती है, एक आदमी को एक अच्छा महसूस होता है।
0: जी
1: तो धीरे धीरे वो जब वो शुरुआत करता है तो थोड़े लेवल से ही उसको जो है बहुत अच्छा लगने लगता है, पर हमारे शरीर को क्या है धीरे धीरे उसकी उस लेवल की आदत पड़ जाती है। तो फिर हम जो है आज एक सिगरेट पीते हैं, कल दो, फिर चार, फिर पूरा पैकेट, और वो फिर वो हमारे को आदत बनती चली जाती है। और एक ऐसा समय आता है कि हमें वो दिन में सिगरेट की ऐसी तलब होने लगती है कि अगर हमें वो सिगरेट ना मिले तो हमें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि
0: जी
1: जैसे ही उन निकोटिन का लेवल शरीर के अंदर कम होता है हमारे शरीर को बेचैनी होने लग जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है, इसी वजह से ये जो है लोगों को अपने पास में बांध लेता है और लोग इसको छोड़ नहीं पाते।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे फेफड़ों में जाता है ये, तो वहाँ इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कैसे ये नुकसान पहुँचाता
1: देखिए,
0: है?
1: निकोटिन तो मैंने आपको बताया वो अपने आप अपने पाश में बांध लेता है, अपने
0: जी
1: अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है,
0: जी
1: लेकिन जब हम धुआं लेते हैं तो उसमें सिर्फ निकोटिन ही नहीं जाता, निकोटिन के अलावा हजारों पदार्थ जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं जो कि कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं।
0: जी
1: तो पहले तो वो जाते हैं, लंबे समय तक जाते रहते हैं, जब हमारे सारे जो सांस की नलकियाँ हैं उनके अंदर की जो झिल्ली है, परत है, उसको धीरे धीरे ख़राब करते हैं, उसके अंदर कैंसर के सेल बनने शुरू हो जाते हैं। जो धुआं ज़्यादा अंदर तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है, उस हमारा जो आपको समझना होगा कि हमारा जो लंग्स हैं या हमारे फेफड़े हैं वो एक स्पंज की तरह से हैं।
0: जी
1: उनका काम ये है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो उसमें से ऑक्सीजन चूस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो
0: जी
1: उसके अंदर छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ये काम करते हैं। तो जब हम सा ये धुआं अंदर जाता है तो इनके अंदर केमिकल होते हैं, वो छोटे छोटे छिद्रों को तोड़ के और बड़े बड़े गुब्बारे बना देता है। तो
0: जी
1: उससे क्या होता है कि वो मरीज के सांस लेने की ऑक्सीजन जो चूसने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है। इस बीमारी को हम COPD कहते हैं या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, जिससे क्या होता है कि मरीज की ऑक्सीजन चूसने की क्षमता कम होती चली जाती है और उसको लगातार सांस ही चढ़ा रहता है, इसको हम कहते हैं वो सांस प्रॉपर ले नहीं पाता है।
0: जी इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो गृहिणियाँ होती हैं उनको भी धुएं का सामना करना पड़ता है, चूल्हे के रूप में कह सकते हैं या गैस के रूप में कह सकते हैं, तो वो कितना हानिकारक रहता है?
1: देखिए, चूल्हे का धुआं जो है, चूल्हे पे जो धुआं लकड़ी जला के धुआं चलाया जाता है वो जो है शरीर को बराबर का ही नुकसान करता है। बाकी LPG है जो सरकार की योजनाएं हैं जिसमें ग्रामीण लोगों को भी LPG प्रोवाइड की जा रही है, जो कि एक साफ़ सुथरा ईंधन
0: यहाँ
1: है।
0: माना जाता
1: उस
0: है।
1: ईंधन को यूज़ करने से जो है हमारी बहनें माताओं को जो है बहुत कम रिस्क हो जाता है और उनको भी जो COPD है या सांस की बीमारी डेवलप होने के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये है कि कोई व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के बीड़ी सिगरेट या तंबाकू या हुक्का पी रहा होता है, तो साथ में पूरा परिवार बैठा होता है, महिलाएं भी बच्चे भी उसमें होते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई असर पड़ता
1: हाँ
0: है?
1: जी, इसको हम जो है मेडिकल की भाषा में पैसिव स्मोकिंग कहते हैं।
0: जी
1: पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि मरीज, वो जो आदमी है वो खुद तो नहीं
0: पी रहा
1: ठोस
0: है।
1: पी रहा,
0: जी
1: लेकिन उसको जो है वो धुआं एक्सपोज हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि घर में कोई पी रहा है,
0: जी
1: कोई ऑफिस में पी रहा है, कोई आप जो है पब्लिक प्लेस में कहीं पी रहा है, बस में, ट्रेन में पी रहा है, तो उसका जो धुआं वो छोड़ रहा है वो धुआं आप और जो जो साथी हैं उनके शरीर में जा रहा है। तो
0: जी
1: अगर ये भी लंबे समय तक होता रहे तो वो भी उतना ही जो है नुकसानदेह है जितना कि एक आदमी का स्मोकिंग करने जैसा है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ऐसा देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनके पति या उनके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको भी इसका नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: तो इसलिए तो पहले तो किसी को धूम्रपान करना ही नहीं चाहिए, अगर उसको धूम्रपान कोई करने वाला भी है तो उसको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ उसके आसपास कोई ना हो, खुली जगह पर वो करे, तो उससे जो है बाकी लोगों को नुकसान या नहीं होगा। हमारे देश में कानून भी है कि हम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते हैं, ऑफिसेज में नहीं कर सकते हैं, तो हमें भी ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई पी रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए, ताकि जो अपना तो नुकसान कर ही रहा है बाकी लोगों का नुकसान ना करे।
0: ना करें। जी डॉक्टर साहब, कई इस तरह के व्यवसाय हैं जिसमें कि अगर खाना बनाने की बात करें या कोई रसायन की कोई फैक्ट्री है या कंपनी है, तो जिसमें कि धुआं उत्पन्न होता है, तो वो भी क्या इतना ही घातक रहता है?
1: देखिए, वो जो है जो रासायनिक कंपनियों का धुआं होता है वो इसके तरह वो अलग तरह का धुआं होता है।
0: जी
1: धुआं नुकसान तो करेगा ही, पर इस तरह की जो रासायनिक कंपनियां जहाँ ये रसायन यूज़ होते हैं उनके अलग मानक होते हैं, वहाँ पे अलग से पंखे और उस तरह का एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जाता है ताकि जो वहाँ वर्कर्स हैं वो कम से कम एक्सपोज हों। दूसरा, उनको जो है सबको मास्क दिए जाते हैं,
0: जी
1: एक स्पेशल तरह के मास्क होते हैं, N95 मास्क होते हैं, जो जिनसे ये महीन कण जो हैं वो शरीर के अंदर नहीं जा पाते, और सरकार की नीतियों के हिसाब से उनको एक तय समय तक ही एक शिफ्ट में ड्यूटी कर सकते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय नहीं कर सकते। तो वो उनका, और उसके बाद ऐसा होता है कि जो ESI कॉरपोरेशन है या वो है, उनका समय समय पर हेल्थ चेकअप होता है। अगर उनको कोई दिक्कत होने लगती है तो फिर उनको अपने जो है वर्किंग प्लेस से शिफ्ट किया जाता है, अगर कोई नुकसान होने लगता है तो।
0: जी डॉक्टर साहब, जो उनके एम्प्लॉई होते हैं, जो कामगार व्यक्ति होते हैं, इनके अतिरिक्त भी कई बार ये देखा गया कि धुआं है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है। अगर हम ईंट भट्ठे की बात करें या और इस तरह की कुछ फैक्ट्री हैं जिनसे कि धुआं निकलता रहता है, तो वो तो पूरे पर्यावरण में फैल जाता है और बहुत नुकसानदायी होता है।
1: पर्यावरण का प्रदूषण तो सबके लिए एक चिंता का विषय है ही।
0: जी
1: एक ये व्हीकल प्रदूषण है, जैसे मैंने पहले बताया फैक्ट्रियों का प्रदूषण है, वो सब आखिर तो सारा हवा में ही मिलता है, और वो हवा में जो है वो हवा हम सबको ही सांस लेना है। तो इसलिए मेरी तो सभी से ये अपील है कि जो है प्रदूषण को जितना कम किया जा सके उतना करना चाहिए। इंडस्ट्री को जो धुआं छोड़ने से पहले उसका जो मानक बनाए गए हैं उन मानकों को पूरा करके, अपनी चिमनी को साफ़ करके उस तरह से किया जाए। सरकार के जो मानक बने हुए हैं कि
0: जी
1: धुआं छोड़ने से पहले उसको क्या ट्रीटमेंट करके फिर हवा में छोड़ना है, वो सब कुछ किया जाए तो हवा में प्रदूषण कम होगा, तो उस सबके लिए ही लाभदारी होगा।
0: जी और इसी प्रकार से जितने व्हीकल हैं, जितने भी साधन हैं यातायात के, उनमें भी गैस उत्सर्जन होता है, तो वो भी इसी प्रकार से नुकसानदार होता है।
1: नुकसानदेह है जी।
0: जी
1: जो है सरकार की अब जो पॉलिसी है कि हम जीवाश्म ईंधनों को कम यूज़ करें, पेट्रोल डीजल को कम यूज़ करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, CNG हैं,
0: जी
1: और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें तो उससे जो है पोल्यूशन कम होगा, धुआँ कम होगा, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद है।
0: डॉक्टर साहब, कई व्यक्तियों ने जिन्होंने जिनका कि बीड़ी सिगरेट पीने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अगर बीड़ी नहीं पीते हैं या हुक्का नहीं पीते हैं तो हमारा पेट साफ़ नहीं होता है। तो क्या इसका कोई इस तरह से संबंध है?
1: देखिए इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, वो हमारी आदत बन जाती है।
0: जी
1: असल में हमारी एक आदत बन जाती है, हम सोचते हैं कि हम सुबह चाय नहीं पियेंगे तो हमें मोशन नहीं होगा, वो
0: जी
1: कहेंगे हमें बीड़ी नहीं पियेंगे तो मोशन नहीं होगा, वो हमारे शरीर की एक आदत बन जाती है। उस आदत को तोड़ना बड़ा आसान है,
0: जी
1: अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो आदत बहुत आसानी से टूट सकती है। और हमें ये बीड़ी सिगरेट पीने का इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए।
0: जी
1: और जैसे आपने कहा था कि ये लोग शुरुआत क्यों करते हैं, तो एक तो निकोटीन तो कारण है ही, दूसरा क्या है कि ये ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि जो लोग बीड़ी सिगरेट शुरू करते हैं वो एक उम्र है जो एडोलेसेंट जिसको कहते हैं हम, 15 16 साल
0: वयस्क
1: के
0: जी
1: जो बच्चे हैं वहाँ से लेके और 20 तक के, उनमें शुरुआत होता है। तो इस वजह से सरकार ने अभी एक नया शुरू किया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमारे जितने भी शैक्षणिक
0: संस्थान है।
1: संस्थाएं हैं वहाँ पर
0: जी
1: नो टोबैको फ्री शैक्षणिक संस्थाएं होंगी, वहाँ पर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। उसके लिए और जो है उसके एक समय एक SOP है जो उसका एक गाइडलाइंस जारी कर रही है अभी, कि उसमें जो है वो कोई आसपास नहीं होंगी, क्योंकि अगर इस समय अगर आप ने ये आदत पकड़ ली तो
0: जी
1: इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, अब बात करें चबाने वाले तंबाकू की, तो वो कितना नुकसानदायक?
1: चबाने वाला तंबाकू के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि वो जो है आपके मुंह के कैंसर का कारण बनता है।
0: जी
1: तो वो जो है फेफड़ों को तो नहीं नुकसान पहुंचाता, पर वो जो क्योंकि चबाते हैं, चबाने से जो आपके जो लोग उसको लगातार खैनी है गुटखा है उसको मुंह में रखते हैं लंबे समय तक, तो वो हमारे अंदर की मुंह के अंदर की जो झिल्ली है उसको
0: जी
1: जो है लंबे
0: नुकसान
1: समय तक
0: पहुंचाता।
1: नुकसान पहुंचाता है, और उसके अंदर वो कैंसर का कारक बनता है। धीरे धीरे फिर उसके अंदर कैंसर बनना शुरू हो जाता है, बाद में मरीजों को जो है दिक्कत आने लगती है तो फिर ऑपरेशन करके मुंह का एक हिस्सा या जबड़े का एक हिस्सा भी निकालना पड़ता है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत घातक एक स्थिति होती है, और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या कोई पूर्व में कोई जांच करवाई जा सकती है कि इस तरह का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं आ गया है शरीर पर?
1: देखिए मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि अगर कोई तंबाकू या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसको अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना कोई एक आप दिन डिसाइड करिए कि मैं आज नहीं, आज के बाद तंबाकू नहीं लूँगा या तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लूँगा। 31 मई को हमारा जो है विश्व नो टोबैको डे है,
0: जी
1: तंबाकू निषेध दिवस है, उससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता।
0: जी
1: आप जिन जो भाई जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो उस दिन प्रण लें

0: कि मैं नहीं लूँगा। और जो है जैसे मैंने बताया आदत है, एक बार आप छोड़ेंगे तो कुछ दिन आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब जब आपको तलब लगे तो आप जो है उन सब कामों को अवॉइड करें कि जिनसे आपको तलब लगती है, जिनको आपको लगता है कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे समय में आप मुँह में इलायची रखें, मिश्री रखें, क्योंकि वो थोड़ी देर की बात है। आपको जब वो तलब लगती है, आप तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी और काम में लग जाएं, तो फिर वो आप भूल जाएंगे।
1: जी
0: ऐसी जगह जैसे दोस्त, ऐसे जगह पर जाना आप अवॉइड करें कि जहाँ पर आपको लगता है कि कोई आपको तंबाकू या सिगरेट आपको ऑफर करेगा। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट होते हैं, उन लोगों को छोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर उनको छोड़ने में दिक्कत आती है तो हर शहर में, हर सरकारी कॉलेजों में, सरकारी अस्पतालों में जो है डी एडिक्शन सेंटर हैं, जहाँ पे उनको प्रोफेशनल जो है उनको मदद मिलती है और उनको किस तरह से छोड़ना है। कुछ दवाइयाँ भी कभी कभी कुछ मरीजों को देनी पड़ जाती हैं,
1: जी
0: वो दवाइयों के सहारे उनको जो है टबैको छुड़वाया जा सकता है। तो जो पहले तो इसको लत को अपने लगने ना
1: लगाए
0: दें।
1: ना जी
0: अगर किसी को है भी, किसी मरीज को कोई पी रहा है, उसको खांसी बलगम है, काफ़ी समय से सांस में दिक्कत आने लगी है, तो उसको अपना जाके चेकअप कराना चाहिए। बलगम में खून आ रहा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जाके किसी जो है अस्पताल में चेकअप कराना चाहिए, ताकि एक्सरे और अगर सीटी स्कैन वगैरह की मदद से कैंसर का अगर है तो उसका जल्दी पता लग सके, ताकि उसका निदान किया जा सके।
1: जी यानी कि जांच पहले करवा लें और उसके बाद जो भी उसमें रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम आगे की चिकित्सा है वो ज़रूर लें। डॉक्टर साहब, कोई और इसमें आप बताना चाहें कि इसके अलावा कोई और बीमारी होती हो जिसका कि उपचार किया जा सकते, ख़ास तौर से जो चबाने वाला तंबाकू है
0: चबाने वाले तंबाकू से कैंसर ही सबसे ज़रूरी है, और
1: प्रमुख
0: दांत तक
1: है।
0: खराब, दांतों के अंदर जो है दांत ख़राब कर देता है और दांतों के भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ओरल कैंसर जिसको हम कहते हैं, उसके
1: जी
0: लिए बहुत सारे जगह पे कैंप चलाए जाते हैं, जहाँ पे वो जो है आपके मुंह के अंदर की कोशिका को चेक करके देखते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेकर या स्क्रैपिंग लेके चेक करते हैं कि कहीं कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। अगर
1: जी
0: कैंसर की शुरुआत हो चुकी है तो उसका वहीं की वहीं इलाज कर देते हैं, ताकि वो बढ़े नहीं और शरीर में फैले नहीं कहीं और।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि कुछ छोटी सी गोलियां आती हैं चबाने की, तो जब भी उनको तलब होती है तो वो गोलियां ले लेते हैं, तो क्या वो सही है?
0: देखिए, मैंने आपको बताया कि बीड़ी सिगरेट पीने का कारण किसी भी व्यक्ति का, उसके पीछे निकोटिन है।
1: जी
0: निकोटिन जब हम धूम्रपान करते हैं तो निकोटिन भी जाता है, उसके साथ में धुआं भी जाता है।
1: जी
0: जो मरीज बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट होते हैं इसके ऊपर,
1: जी
0: जिनको हम जो है दवाई सिगरेट बीड़ी सिगरेट बंद करेंगे तो उनको बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है, काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं शरीर में, ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि शरीर आपका जो शरीर है वो निकोटिन का लेवल कम होने को रिस्पॉन्ड करता है,
1: जी
0: तो ऐसे मरीजों के लिए कुछ निकोटिन की टैबलेट्स या च्युइंगम्स आती हैं, पैचेस आते हैं। पर वो मेरी सलाह ये है कि कोई भी मरीज, कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें, क्योंकि
1: जी
0: उनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए वो जो है वो कुछ दवाइयों, मैंने आपको बताया था, जैसे जिक्र किया था, तो वो दवाइयाँ इसी तरह की होती हैं, निकोटिन पैच होता है, निकोटिन च्युइंगम होती है, वो उन मरीजों के लिए होता है जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो अपने आप को जो है विड्रॉल सिम्टम्स इनको बोलते हैं, दिक्कत आने लगती है। तो उन मरीजों को कुछ दिन के लिए हम वो देते हैं, ताकि शरीर में निकोटिन की मात्रा धीरे धीरे कम करी जाए और फिर जो है उनका निकोटिन बिल्कुल ख़त्म, ताकि उनके शरीर में तलब ही ना रहे और वो सिगरेट बीड़ी को जो है हाथ ना लगाएं दोबारा से।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस तरह की जो समस्या है उससे बचा जा सके, ना केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और अपने रिश्तेदार, अपने साथी संगी, उनको भी बचाया जा सके?
0: मैं आज के युवा को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो तंबाकू की कंपनियाँ हैं, वो हमें जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैकेजिंग में, बड़ी सुंदर पैकेजिंग में, और कभी
1: जी
0: हमें उसको अपना कूल शो करते हुए बड़े एडवर्टाइजमेंट देती हैं, पर स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना किसी भी तरह से कूल नहीं है।
1: जी
0: तो जो है आज के युवा को इस चीज़ से बचना चाहिए, धूम्रपान बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए, और अगर उसने किसी तरह से शुरू कर दिया है तो उसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। ये उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपको बताया पर्यावरण प्रदूषण ही हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें ऊपर से सिगरेट बीड़ी पीकर और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ में कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। बीड़ी पीते हैं, शर्ट पे गिर जाती है, बीड़ी पी के खेत खलिहान में डाल दें, आग लग जाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत तो नुकसान के साथ में सामाजिक और आर्थिक भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपने बताया है कि छोड़ना हो तो एकदम से आप इसको छोड़ सकते हैं, और 31 तारीख बहुत अच्छा दिन है, इससे आप शुरुआत करें। इस बीमारी से, इस लत से निजात पाने के लिए आप प्रण करें और उसको छोड़ें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस जानकारी के लिए डॉक्टर विपुल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: तो भैया ने ये तो बातचीत सुन ली, भाई तंबाकू के नुकसान है के हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है। तो ध्यान करें भाई, जो युवा हैं वो बड़ा इस कुसंगति में फंस जाए हैं, तो वो बचें इससे ताकि दिक्कतें आगे फिर उनके जीवन में ना रहे। और ये चलते चलते एक हरियाणवी फिल्म का गाना सुनेंगे। हरियाणवी फिल्म है लीलो चमन, गाया है ओम राय और चांद सावरे ने, और लिखा है इस गाने को मनफूल सिंह डांगी ने।

मनफूल सिंह डांगी का लिखा ओड़े, चांद सावरे और ओम राय का गाया ओड़े, लीलो चमन फिल्म का यो भैया ने गीत सुना। एक बात याद दवा दें कि जब अपनी संस्कृति की बात आवे है, अपना हरियाणा के खान पान की बात आवे है, यहाँ के गायन की जब बात आवे है, तो भाई पाँव उठे है उस चीज़ पे और बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन इसके साथ साथ है भैया ने एक चीज़ और कह दें जो थोड़ा सा परेशान करे है दिमाग ने, भाई जो अपने ब्याह वाणे हैं उनमें ब्याह के गीत होया कर दे, माँ भाण गीत गाया कर दी, बुआ भाण आ जाया कर दी, तो उनका एक न्यारा रंग चढ़ा कर दा। लेकिन आजकल डीजे पर यह बजा के उल्टे पुल्टे सॉन्ग और इनमें की है कि थोड़ा सा एक बूंदा पड़सान लग रहा है, तो इस बीमारी से बचें। और ये वाम कुछ घड़ी का इशारा देख लें कि वे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, प्रतीक्षा करें अगले कार्यक्रम की। और इजाजत दें दलजीत भाई ने, सारे बण भाइयों ने राम राम।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता मंच, मैडम भी वो माफ कीजिएगा, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मैडम वीर 262.9, 4 7 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ में शाम की 7:30:07 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम श्रोता मंच।
1: हमारे सभी सुनने वालों को अर्चना मिश्र का नमस्कार, और मेरे साथ हैं
0: सुमन मलिक,
1: तो हम तीनों का नमस्कार।
0: सभी को नमस्कार।
1: और अपने टेलीफोन नंबर हम बता देते हैं, एक रस्म है
0: जी,
1: तो 0162-255-446, 255-447
0: और
1: 255-448, ये 3 टेलीफोन नंबर हैं जिन पर हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। तो वेट करते हैं
0: जी,
1: कोई कॉल हम तक पहुंचे।
0: श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे मैम कार्यक्रम का, और देखते हैं कि कौन सी कॉल आई है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: कार्यक्रम का पहला श्रोता कौन है? हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, अर्चना बहन को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं भी गांव केलंगा से, मास्टर सुंदरपाल कौशिक।
1: हाँ जी मास्टर जी, बताओ।
2: बताओ जी, तो थोड़ी गड़बड़ करने लगे प्रोग्राम में।
1: बता दो कौन सी है आप, तो यो एक खाता खोल रहे हो।
2: खाता तो मैं देख रहा, इव दो मैं कह रहा हूं ना, इव शुभ रात्रि दो पैर में भी होने लगी के, या संतोष बहन जी थी कच्ची बिरा कोने मिला, दो पैर की सभा मिला शुभ रात्रि।
1: कई बार आदत वश भी निकल जाता है, वो अक्सर रात की ड्यूटी जब उनकी होती है तो शुभ रात्रि करके आपसे
0: आदत से बन जाती है मैम,
1: तो उन्होंने सोचा रात ठीक है, आगे से इनकी रात की ड्यूटी लगाएंगे। और आदेश दीजिए,
2: 23 तारीख को जो प्रोग्राम सुना है मेल फीमेल की आवाज में पढ़ा था, उसमें एक साजन और सबक ये दो गाने कदे चढ़ाओ चढ़ा दियो मेल फीमेल की आवाज में।
1: हाँ हाँ जी जी, क्या दोबारा कहिए आप अपनी बात।
2: मैनू कहूँ उस दिन आपने 23 तारीख को मेल फीमेल की आवाज में गाने सुनवाए थे ना?
1: जी जी जी।
2: हाँ तो ये उसमें आइंदा कभी हो प्रयास बढ़िया था, तो उसमें साधन और सबक।
1: हाँ हाँ
0: जी जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं
2: आप। मैंने को दीदी बहन जी ने सुनाए थे उसके मेल फीमेल के गाने सुनाए थे
0: जी जी,
2: दोहरी आवाज में।
1: हाँ बिल्कुल सुनवाए थे, ये सुमन को नहीं पता है, हमें पता है, बताइए
0: जी।
2: अरे सुधाओ से दीदी, सुधाओ
1: हाँ दे दो,
2: जो श्रोता मंचन है पाक्षिक कर दो। एक बार तो जो पत्रा पास आ रही थी, उसका नाम है जो खत तुम्हारे नगमे हमारे।
1: अच्छा,
2: अरे जो फोनिंग है।
1: चलो जी, आपका सुझाव नोट कर लिया।
2: वो तो दीदी पास से फिर कहेंगे भाई मास्टर है, वो हो गया बात प्रोग्राम। वैसे वास्तव में तो दीदी दोपहर का तो मतलब 1 से 3 बजे तक सुना करूँगा, तो वो सारे सुनू तो।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छा है, अच्छी
1: बहुत खुशी की बात है
0: जी।
2: ठीक है दीदी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, मिलते हैं अगले श्रोता से। हेलो हेलो,
3: रचना जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
3: आपके साथ दो बच्ची हैं, सुमन है
0: जी,
3: कौन है उनका भी।
1: हाँ बिल्कुल, हम सबको नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बताइए अपने बारे में, बताइए अपना नाम बताइए।
3: मैं बासिंगिल गांव पांडू पिंडारा जिला जी।
0: जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में बताइए।
3: ये कौन बोल रहे थे, किसी का नाम मिलगा
1: जी, कौन बोल रहे था?
3: एक तो सुमन जी, एक अर्चना जी, तीसरी कौन है जी?
1: तीसरी कोई आवाज नहीं
0: है जी,
3: कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है जी।
1: डिस्टर्बेंस आ रही थी मुझे ना, अच्छे से आपकी आवाज नहीं सुन रही थी खाली मुझे, तो मैं उस एडजस्टमेंट में लगी हुई थी, तो इसके लिए माफी
0: चाहती हूं जी। बताइए
3: आजकल आपके कार्यक्रमों का सत्र जो है ना बिल्कुल बिल्कुल निम्न हो चुका है।
1: अच्छा निम्न चला गया, क्या कारण रहा?
3: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम है आपके अनुरोध पर जो आप स्वयं पेश करती है
1: जी,
3: वो प्रोग्राम तो हमें अच्छा लगता है, बाकी कोई भी प्रोग्राम अच्छा लगता।
1: अरे ऐसी तो बात नहीं है, हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता पूरी तैयारी के साथ
3: प्रस्तुत करता रहता, अभी गलती करती थी, कैसी श्रोता मन सुना, सुमन जी ने गलती करती थी, और ऐसी गलती अक्सर बार बार होती रहती है।
1: देखो
3: ये आप
1: इसके लिए तो
3: मैंने पहले
1: गलती
3: भी
1: सबसे होती
3: बताई
1: है।
3: थी, मिश्रा जी आकर से पहले ही बताई थी मैंने, और आज सर ये अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ और सुमन जी पहले गलती कर रही है।
1: हाँ वो श्रोता मंच वाली गलती यूं हो गई कि दिमाग पे रहता है कि अगला कार्यक्रम
3: ऐसे
1: श्रोता
3: यात्रा
1: मंच। जी
3: जी
1: जी
3: अगर कार्यक्रम में ध्यान हो तो गलती नहीं हो, इनका कार्यक्रम में ध्यान रहता है नहीं।
1: सुमन जी का
3: अब
1: सारा ध्यान अगले प्रोग्राम में था तो हो जाता है,
3: नहीं
1: मानिए आप
0: चलिए
1: इस
0: माफी
1: बात।
0: चाहेंगे
3: मिश्रा
0: आपसे।
3: जी आप मेरी बात मानो, जब मिश्रा जी थे तब भी मैंने ये गई थी, इन्होंने गलती टाइम गलत बता दिया था यार, ये मानना नहीं थी।
1: एक तो मिश्रा जी जा लिए बात सारी खत्म हो
3: मिश्रा जी के बाद,
1: रही
3: मिश्रा जी के बगैर स्टेशन बिल्कुल अधूरा हो रहा है, मैं तो अच्छा लग रहा ना,
1: देखिए
3: मेरा मन लग गया।
1: ये बात तो है, ये बात
3: तो
1: तो
3: एक
1: है।
3: बार मिश्रा जी से मुलाकात करवा दो।
1: हाँ जी बिल्कुल, मुलाकात उनके साथ तय है। देखो वो किस दिन हमें टाइम देते हैं,
0: जी
1: वीआईपी लोगों के
3: ऐसी
1: से टाइम लेना
3: कम से
1: पड़ता है।
3: कम जो पुराने आदमी किसी स्टेशन में शिखर को छुआ उनसे मुलाकात करवा दिया और जी
1: जरूर जरूरी है, हम एक श्रृंखला शुरू करेंगे जो हमारे पुराने प्रस्तुतकर्ता रहे हैं सबसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बादल सिंह जी
3: तो सबसे मुलाकात करवाया करो जी,
1: जरूर करवाएंगे जरूर करवाएंगे।
3: ठीक है
1: बहुत बहुत
3: तो
1: शुक्रिया
3: बाकी कुछ
1: आपका।
3: नहीं कहूंगा मैं
1: ठीक है
3: जी,
1: जी शुक्रिया आपका,
3: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी
0: हाँ
2: सुमन जी और
0: नमस्कार
2: अर्चना जी, आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: राजकुमार जी, कैसे हैं
2: जी? गांव मोड़ा जिला हांसी से।
0: कैसे
1: राजकुमार
0: हैं
1: डोचन?
0: राजकुमार
2: हाँ
0: जी कैसे
2: जी
0: हैं आप?
1: जी
2: बिल्कुल अच्छे हैं जी।
0: तो बताइए
2: बाकी
0: प्रोग्रामों के बारे
2: श्रोताओं
0: में।
2: की प्रतिक्रिया तो चलती रहेगी,
0: जी
2: और कोई अच्छा भी बताएगा और बुरा भी बताएगा।
0: जी देखिए ये
2: हाँ
0: हम
2: जी
0: गलतियों से सीखते हैं और यहाँ पर आकर भी हम पूरा अपनी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से कार्यक्रम करें, और कहते हैं ना कि इस गलती हो जाती है किसी वक्त। और
2: बिल्कुल जी
0: हाँ
2: बिल्कुल।
1: देखो ऐसा एक बात आपके माध्यम से कहना चाहेंगे,
0: जी
1: गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, होती
0: होती
1: रही हैं, भविष्य में भी होती रहेंगी।
0: जी
1: हम
2: हाँ
1: इंसान
2: जी
1: हैं
0: जी
1: और हम स्टूडियो में आके बैठते हैं पूरी तत्परता और एकाग्रता के साथ, उसके बावजूद भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप जैसे आप लोगों से भी हो जाती हैं जिंदगी में, आप
2: हाँ
1: आदमी
2: बिल्कुल
1: तमाम
2: यही
1: जीवन
2: बात
1: सीखता
2: कहना
1: है,
2: चाहता था जी मैं, श्रोताओं से भी गलती हो जाती है बोलते
1: सबसे हो
2: बोलते।
1: जाती।
0: जी
2: हाँ जी और प्रोग्रामों के बारे में बताएं जी आप, मतलब जो वो 23 तारीख वाला प्रोग्राम था ना
1: हाँ
2: जो
1: जी
2: आपने बोला था, वो एक प्रयास किया, वो प्रयास आपका बिल्कुल सफल हुआ जी।
1: हाँ जी जी बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: मेल और फीमेल आवाज में पहली बार प्रोग्राम सुना था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: हाँ जी
1: एक और तरह का प्रोग्राम तैयार है, देखिए कब तक आप
2: हाँ जी
1: तक
2: यही कहना चाहते हैं, किसी दिन जैसे शनिवार है, सोमवार मंगलवार फिल्म संगीत है, कोई विशेष प्रोग्राम बना करो आप।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा ही हमारा रहता है
0: कोशिश
1: प्रयास,
0: रहेगी।
1: कभी हम नए गीत लेके आते हैं, कभी बिल्कुल नए गीत लेकर आते हैं, कभी
0: जी
1: बहुत पुराने गीत
0: जी
1: लेकर आते हैं, क्योंकि हमें हर तरह के श्रोता वर्ग की पसंद का ध्यान रखना
0: तो
1: होता है।
0: सबको नजर में
1: हाँ
0: रखते हुए इस
2: बिल्कुल जी।
0: प्रोग्राम की
2: और
0: तैयारी
2: एक ये
0: होती
2: जो
0: है।
2: शाम के प्रोग्राम आते हैं ना शाम को 7:30 बजे फिल्म संगीत,
0: जी
2: इसमें तो जी शायद शुक्रवार की ड्यूटी थी सुमन मलिक जी की,
0: हाँ जी

0: महीने जितने भी प्रोग्राम सुने तकरीबन लगभग सभी ठीक प्रोग्राम थे जी।
1: धन्यवाद आपका।
0: मतलब नाम तो किस किस का ले, एक जो याद है मेरे, एक तो हितेश जी का प्रोग्राम था जी,
1: जी
0: सुबह का
1: जी,
0: एक एक रंग शुक्रवार का ही
1: जी जी,
0: और बुधवार लगातार दो बुधवार गीता जी ने मन भावन, बिल्कुल मन को भा गया जी।
1: जी शुक्रिया।
0: हाँ जी,
1: अब तक आपकी बात पहुंची होगी, जरूर सुन रहे होंगे।
0: आजकल गीता जी छुट्टी पे गई हैं क्या जी? कई दिन हो गए आपसे नहीं।
2: आपके पास आएंगी और बिल्कुल छुट्टियों पर नहीं गई हैं, अपनी सभी ड्यूटीज मई की उन्होंने कंप्लीट कर ली है, अब जून में आपसे मुखातिब होंगी। और जब कोई भी श्रोता राजकुमार जी हमारे प्रस्तुतकर्ताओं के नाम लेकर तारीफ करता है तो उनका हौसला बढ़ता है, और छोटी छोटी गलतियां आप नजरअंदाज करके उनका जो बेस्ट एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करें तो ये लोग आगे भी बेहतर कार्यक्रम आप तक लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बिल्कुल धन्यवाद।
1: चलिए बात करते हैं अगले श्रोता से। हेलो, संपर्क टूट गया हमारा। हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार,
3: मैं रोहित बोल रहा हूँ मैडम, चंडीगढ़।
1: रोहित जी कैसे हैं आप?
3: ठीक है मैडम, आप बताओ आप कैसे?
1: बस, हमारे साथ अर्चना जी भी हैं और पूछना चाहेंगे आपसे हम कार्यक्रमों के बारे में, आप क्या कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको कैसे लगते हैं हमारे प्रोग्राम बताइए।
3: हाँ जी, दो तीन बात, पहले तो एक शिकायत कर दूँ मैं आपसे।
1: जी करिए बताइए।
3: इम्पोर्टेंट है कि सुबह की सभा में जो है ना 23 मई को
1: जी
3: प्रोग्राम जब शुरू हुआ, अभी तो ये भी नहीं पता था कि अनाउंसर कौन है, और उससे पहले ही जो है ना वो वंदे मातरम जो है वो पुराने वाला सुनाया गया।
2: अच्छा।
3: और जबकि अब तो जो है ना गृह मंत्रालय ने नियम कायदे कानून बदल दिया है, तो
2: और हमने जो पुराना वंदे मातरम है उसको तो हमने लगभग निकाल दिया था, कहां से क्या त्रुटि हुई इस बात को जरूर देखा जाएगा, क्योंकि
3: वो गलती भी पता है किसने की है
1: जी,
3: वो जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर भूमिका शर्मा, जो मतलब मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा जो है ना देशभक्ति उस लड़की के अंदर है।
2: हाँ जी।
3: और सबसे ज्यादा जो है ना देशभक्ति है, गीत भी वही सुनाती है
2: जी,
3: और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि देशभक्ति के गीत जो है ना वो आपने खत्म कर रखे हैं, देश गान भी नहीं आता आजकल, और वंदे मातरम फिर ये सुन के जो है ना मतलब वो ठेस लगती है मुझे।
2: हाँ कोई बात नहीं, देखिए कहीं पे पुरानी रिकॉर्डिंग रह गई होगी, वो भी एक लंबे समय तक स्वीकृत टुकड़ा था वंदे मातरम का, लंबे समय तक चला, लेकिन बाद में हमें आदेश हुए कि हमें ये पूरा सुनवाना है, तो आपकी बात और आपकी शिकायत अपनी जगह पे दुरुस्त है, आगे से आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हेलो,
4: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
4: जी रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ।
1: रामधारी जी स्वागत है जी, बताइए कैसे हैं आप?
4: अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल ठीक है हम, और जानना चाहेंगे आपका जो राय है हमारे कार्यक्रमों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: मैम कार्यक्रमों के संदर्भ में मैं कुछ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ, उनके बारे में कहना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल बताइए।
4: हेलो जीनियस कार्यक्रम का मैं एक बहुत लंबे अरसे से और नियमित श्रोता हूँ, बहुत
1: जी,
4: अच्छा
1: जी।
4: ये कार्यक्रम आपका चल रहा है। और दूसरा जो है आपके अनुरोध पर जो है विभिन्न सेगमेंट्स में कभी ईमेल पे आधारित कभी फोन इन कार्यक्रम
1: या
4: फिर पत्रों पे आधारित ये कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
1: शुक्रिया
4: जी। मैम कुछ एक मैं सुझाव अपने प्रेषित करना चाहूंगा,
1: उम्मीद करता हूँ जरूर दीजिए। हाँ जी जरूर दीजिए सुझाव।
4: आपके यहाँ से अगर कोई सोशल मीडिया बेस्ड कोई प्रोग्राम अगर है तो बताएंगे, या जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या इस तरह के कोई आधारित कोई कार्यक्रम आपके यहाँ?
2: आप लोगों के बराबर सुझाव आते हैं रामधारी जी, और उस पर अमल करने की बात ही हम कह पाते हैं, क्योंकि बात को हम आगे भेजते हैं लेकिन अमली जामा पहनाने के स्तर पर कई बार निर्णय नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो फिर से आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे।
4: जी जी। और दूसरा मैं एक यहाँ से काफी टाइम से एक प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल बंद हो गया, फोन इन बेस्ड था श्रोता, ये हेलो स्पोर्ट्स,
1: हेलो
4: क्या उम्मीद कर सकते हैं? दोबारा शुरू
2: हेलो सर काफी स्पोर्ट्स के लिए भी आपकी बात, देखिए रामधारी जी आप जानते हैं हमारा जवाब, तो
4: जी

0: मैम देखिए, एक इतने लंबे अंतराल के बाद में फिर से मैं इस बात को रख पा रहा हूँ, तो उम्मीद हमेशा ही बनी रहती है कि
1: देखिए
0: कुछ ना
1: उम्मीद
0: कुछ
1: तो
0: बदलाव
1: दुनिया
0: होता
1: कायम है।
0: है।
1: हाँ
0: उम्मीद
1: बिल्कुल। और
0: क्यों
1: आपकी बात
0: क्या
1: पे एक शेर याद आया रामधारी
0: जी
1: जी,
0: जी
1: कि उस कासिद के आते आते एक खत और लिख रखूं, मैं
0: क्या
1: जानता हूं
0: बात
1: वो जो लिखेंगे जवाब में,
0: तो
1: वो
0: मैं
1: वाली बात
0: इतना
1: हो
0: भी
1: गई।
0: मतलब मैं उम्मीदहीन ना हो पाऊं कि
1: नहीं
0: मुझे यूं ही
1: नहीं
0: आंसर
1: उम्मीद,
0: मिले
1: देखिए उम्मीद तो
0: मिले
1: नहीं छोड़ सकते हैं, उम्मीद का
0: जी
1: दामन तो आपको थाम के रखना है। हमारा श्रोता मंच का हमेशा से ये संदेश रहा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: और उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है
1: जी जी
0: मैम।
1: जी
0: तो
1: और
0: और
1: बताइए महीने
0: हमेशा
1: भर
0: ही
1: के
0: मैम
1: कार्यक्रम।
0: जी हमेशा ही जो है ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गलतियां होती हैं, तो श्रोताओं की आपसे इतनी उम्मीदें होती है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद रहती है हमारी। तो
1: हाँ, और ज्यादा से
0: जी
1: ज्यादा अच्छे की उम्मीद करते हैं, ये बात
0: जी
1: तो हम बहुत अच्छे से
0: जी और हम
1: जानते
0: कोशिश
1: हैं।
0: करते हैं
1: बिल्कुल
0: कि
1: हाँ
0: आपकी
1: हाँ
0: इन उम्मीदों पे खरे भी उतरे। पूरा हर
1: बिल्कुल
0: हर उद्घोषक यही चाहता है कि जिस मंच पर वो बैठा है वो अपने पूरे तहे दिल से मेहनत के साथ कार्यक्रम करे और श्रोताएं जो है उनसे खुश हों।
1: एक और सुझाव मेरा है मैम, जब महीने भर के कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित होते हैं, एक ही दिन आप फीडबैक ले रहे हो, तो इसको भी साप्ताहिक किया जाए। ये साप्ताहिक करने की बात जरूर है, और ये आपके
0: जी
1: तीनों सुझाव हमने नोट किए हैं रामधारी जी, और जल्दी देखिए
0: हाँ,
1: आपको
0: बहुत ही अच्छे
1: सूचना
0: सुझाव दिए
1: मिलेगी।
0: हैं आपने,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: इसके बारे में
1: किसी
0: कुछ
1: कार्यक्रम में हम आपको देते होंगे ये सूचना कि अब ऐसा हो
0: जी
1: गया।
0: जी
1: ठीक है जी,
0: धन्यवाद मैम।
1: ओके
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: ओके, शुक्रिया। हेलो हेलो,
0: हेलो नमस्कार मैडम जी, मैं
1: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
0: यशपाल शर्मा जी गांव पुपराना से बोल रहे जी।
1: जी स्वागत है आपका, बताइए अपने बारे में और क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रमों के बारे में, सुनते हैं
0: बस
1: आपको।
0: मैडम जी काफी दिनों के बाद नंबर ले गया और पहली बार में ले
1: हाँ
0: गया जी, यही
1: जी जी
0: खुशी हमने। अरे कि मैं ये
1: हाँ
0: चाहता हूँ जी, राजकिशन की यारामपल शर्मा की राग नहीं सुना करो जी।
1: रामफल
0: जी
1: शर्मा जी की बराबर आपको सुनवाते
0: हाँ
1: हैं,
0: सुन, हाँ जी हाँ जी बस,
1: और राजकिशन
0: और
1: अगवानी
0: कार्यक्रम
1: पूरी
0: मेरी
1: आप।
0: तरफ से कोई कमी नहीं है जी, बढ़िया चल रहा है
1: बहुत बहुत
0: जी।
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी
0: राम राम
1: राम राम जी, राम राम, अपने नमस्कार
0: बारे
1: जी। हाँ जी ठीक
0: नमस्कार।
1: हो,
0: आकाशवाणी के साथ से राम राम।
1: जी जी राम राम, सारे ठीक सा। आप बताओ, नाम बता दो अपना।
0: नाम मत गणिए दाम मिली, मैं सावित्री बोल रही हूँ वराणी से।
1: अच्छा, भरान से
0: सावित्री
1: सावित्री जी बात कर रही हैं, आपके पति भी
0: हाँ
1: आते रहते हैं
0: जी
1: बराबर।
0: जी जी
1: हाँ जी,
0: और सारा पूर्ण भाई है, सारे बलजीत भाई, सारे राज्य है ना।
1: सब राजी हैं जी, सब राजी हैं। आप बताइए क्या आप प्रोग्राम सुनती हैं, कौन कौन से सुनती हैं और क्या कहना चाहेंगी आप।
0: ये श्रोता मंच तो मैं जरूर सुनती हूँ, और पहला जो सुना करती वो तुमने कहीं काट दिए,
1: कौन
0: ये
1: से
0: जो धरती के गीत से ये चालू कर दो जी।
1: जी, और
0: और जो पन घटा करता ना 12:30 बजे मंगलवार
1: हाँ जी
0: में,
1: जी जी जी
0: इन्हें चालू कर दो, सारा
1: अच्छा ठीक से
0: धन्यवाद।
1: जी, आपकी दोनों बात हमने नोट
0: दोनों
1: कर
0: सुझाव
1: ली।
0: आपके हमने नोट कर लिए हैं और इस पर कार्यवाही की जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगी सावित्री जी। बस माता ये दो फरमाश कर दे मेरी माता,
1: ठीक है
0: अरे
1: जी,
0: गुण गाऊंगी
1: हाँ जी सुन
0: कई दिन हो
1: लीजिए
0: गई उनका।
1: जी
0: अरे
1: जी
0: तेरा बहन जी तो बात करी,
1: हाँ जी।
0: और मैं बाहर भी जा रही थी, मैं कई दिन में फोन नहीं मिला।
1: चलिए, आपका फोन भी लग गया और आपके सुझाव भी हमने नोट कर लिए, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया,
0: बस
1: शुक्रिया
0: धन्यवाद जी, ताम
1: शुक्रिया
0: लाओ।
1: जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हेलो हेलो,
0: नमस्कार
1: नमस्कार जी
0: तीनों आदरणीय दीदी को धीरज जी रबारी का नमस्कार,
1: जी, रबारी
0: सुपंडित
1: जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में,
0: जी।
1: बताइए।
0: मैंने कार्यक्रम सुन रहा था और सुधीर श्रोता आपने सुझाव रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और
1: जी
0: आप जो हमारे श्रोताओं के जो प्रश्न है सुझाव, उसका सकारात्मक जवाब देते हमको दिल को छू जाता है। और
1: जी
0: दूसरा कि हमारे जो श्रोतागण है कई बार मोबाइल पर यानी रोहतक आकाशवाणी चालू रख के फोन करके तो
1: जी
0: उसमें डिस्टर्बेशन आता है, तो श्रोता ख्याल करें क्योंकि जो प्रसारण साफ सुथरा हो, उनको श्रोताओं के सुझाव यार आपके जवाब सुनने में अच्छा रहे, आपके सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: शुक्रिया
0: बहुत
1: आपका, बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद। और कुछ
0: जी।
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे
0: बहुत
1: में, कुछ
0: अच्छा
1: सुझाव।
0: अच्छा आपके कार्यक्रम आ रहे हैं, और जो सुझाव मेरे ख्याल से अगले श्रोता ने बताया कि श्रोता मन से साप्ताहिक करे तो
1: जी
0: अच्छा रहे।
1: पूरा प्रयास रहेगा, आपके ये सुझाव हमने नोट लिया, नोट कर लिया गया है, और आपने कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी
1: आपका,
0: धन्यवाद तीनों का।
1: धन्यवाद धन्यवाद। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी,
2: नमस्कार जी, बताइए अपने बारे में, अपना नाम।
1: मैं सतीश कुमार, गांव बपोड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी।
2: सतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं और कार्यक्रमों के बारे में आपकी क्या राय है?
1: कार्यक्रम तो मैडम तकरीबन सारे सुनता हूँ।
2: जी, तो क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में कुछ?
1: कार्यक्रम तो मैडम अच्छे चलते हैं,
2: जी,
1: और तरक्की हो सकती है, ये भी है।
2: अच्छा, तरक्की हो सकती है, कैसे हो सकती है?
3: तरक्की के रास्ते बताइए।
2: हाँ, तरक्की के रास्ते हमें बताइए ताकि हम
1: तरक्की के रास्ते तो मैडम जैसे कि पप्पू घाट को जितनी अथॉरिटी दी ना, इतनी अथॉरिटी हो तो पता नहीं क्या हो जाए।
3: हाँ, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: मिलते हैं अगले श्रोता से।
1: हेलो
2: हेलो, हाँ जी, नाम बताएं।
1: सुमन जी, अर्चना जी, दोनों को नमस्कार।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना परिचय दीजिए।
1: पुना बोला था सुमन जी, गांव तिवाड़ा तरफ।
2: जी, स्वागत है आपका। बताइए कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको, कौन से नहीं लगते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, बताइए।
1: पहल तो शिकायत है सुमन जी,
2: हाँ जी, बताइए।
1: मंगलवार ने रात 9:30 बजे थारी पसंद कार्यक्रम सुनिया, बस वो ना बराबर अच्छा लग गया क्योंकि चार बिजली गई।
2: अच्छा,
1: हाँ,
3: देखो मुन्ना जी,
1: सवेरे पहली सभा में अपने आवाज पहुंचाने बंद रहा, वो खुला मीडियम में आवाज पहुंच गई।
3: अच्छा, ये बात तो अभी हम
1: मैं
3: अपने जो तकनीकी विभाग है ना वहां तक पहुंचाएंगे।
2: तो
3: सुबह कितने बजे तक आपको आवाज नहीं सुनाई दी?
1: सवेरे सारी पहली सभा में पहुंच गई।
2: हाँ, इतना
3: अच्छा,
2: लंबा तो गैप।
3: ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमें बाकी और किसी श्रोता से
2: श्रोता की
3: नहीं
2: आई तो
3: मिली।
2: नहीं
3: मुन्ना,
2: ना?
3: आपका रेडियो सेट ठीक था?
1: हाँ, रेडी सर तो नहीं आए मैडम, ये तो लिया था सर कितने पर।
3: हाँ, तो चलिए पूछेंगे अपने तकनीकी कक्ष से कि भाई क्या कहीं पे कोई दिक्कत थी क्या। वैसे
2: अगर ऐसा
3: रेडियो
2: होता है
3: का
2: तो
3: चेहरा
2: तुरंत
3: घुमा लिया करो इधर उधर, तो कई बार वो
1: वो सारे
3: वेव्स।
1: काम करा के हैं, प्रसारण गड़बड़ है, अभी दुरुस्त नहीं है, प्रसारण समर्या नहीं है।
3: ये बात है
1: यह
3: आपकी।
1: शुक्रवार को थी कमी दूसरी सभा में।
3: आपकी बात दुरुस्त है, उससे हम
2: हाँ
3: सहमत हैं
2: जी,
3: जी।
2: इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी
3: हाँ,
2: और
3: और आगे
2: देखा
3: बात
2: जाएगा।
3: पहुंचाएंगे, पक्की
2: जी,
3: बात है मुन्ना।
1: और
3: और ये कह रहे हैं हम, तब तक आप ऐप पे सुन लो ना हमें।
2: हाँ, अगर
1: अच्छा,
2: आपका
1: मोबाइल चला नहीं सकता
3: घर
1: मैं,
3: में कोई बच्चा आपको सेट करके दे दे तो आप सुन सकते हैं
2: सिर्फ
3: मुन्ना?
2: उसको ऑन करना है फिर तो।
1: ना जी, हमारे घर फोन ना कोनी है, पाला तो कोई साधन ना कोनी, हम तो छोटा फोन
3: खैर
1: रखा
3: अच्छी
1: आपने।
3: बात है, अच्छी बात है। लेकिन सही बात आपकी ये है कि हमें रेडियो सेट तक भी आपके लिए कार्यक्रम पहुंचाने चाहिए। तो आपकी
2: बिल्कुल,
3: बात अपनी तरफ
1: अरे
3: दुरुस्त
1: देश
3: है,
1: का वो था सुना जी,
3: दे दीजिए।
1: ये मीडियम वेव की बजाय अपना एफएम बैंड पर कई कम सुनने कर
3: आपने
1: दे,
3: ये
1: परमाते करें
3: सुझाव
1: कि
3: पहले
1: रेंज
3: भी,
1: बढ़ा दो।
3: हाँ, आपने ये सुझाव पहले भी दिया था और इस बारे में बातचीत चल रही है। आप जानते हैं सरकारी कामों में
2: थोड़ा
3: थोड़ा सा
2: समय
3: देर
2: लगता
3: हो
2: है।
3: जाती है, जैसे प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। आप यकीन करें, किसी दिन आप सुनेंगे हमारे मीडियम वेव के कार्यक्रम, आप
2: जी
3: एफएम पे सुन रहे हैं।
1: और
3: और
1: एक दिन जी दलाल फिल्म के गीत सुनवा दो ना, एक फिल्म के कार्यक्रम में, एक
3: बस
1: दिन डुप्लीकेट फिल्म
3: आज
1: के।
3: जो सुनवा देंगे दलाल फिल्म के,
2: ठीक है, आज सुनवाएंगे आपको,
3: सुन ली वो।
1: डुप्लीकेट के सुनवा
3: तो दो तना सुने सुनवाए जाए, एक दिन, एक
1: दिन
3: आज न्यू बता दो, आज डुप्लीकेट के
2: दलाल
3: दलाल
2: के, दोनों में से
1: आज
2: आपके पर
1: दलाल के सुनवा दे और परसों डुप्लीकेट के सुनवा दियो,
3: कल नहीं। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, कहिए जनाब, कार्यक्रम अभी हमारे कुछ कई बार इम्पोर्टेंट रिले आ जाते हैं, उस वजह से आप नहीं सुन पाते हैं। शुक्रिया आपका। बहरहाल,
2: हेलो
4: हेलो
2: जी, नाम बताएं अपना, कौन बोल रहे हैं आप?
4: जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए।
4: मेघराज शर्मा, भाणावरा से
2: जी। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे
4: जी।
2: कार्यक्रमों के बारे में?
4: पहले तो एक छोटी सी शिकायत से करूंगा जी, शिकायत भी नहीं है जी, घसी पीटी है जी वैसे जी।
2: हाँ जी, बताइए।
3: फिर भी घसी पीटी बता।
4: हाँ जी, ये प्रोग्राम का समय जी 1 महीने में आता जी, बड़ा लंबा हो जाता जी, फोन ही ना मिलता जी।
3: इसको आप घिसी पिटी मत कहिए, ये सुझाव आप तब देते हैं जब आपका कार्यक्रम के साथ लगाव होता
4: हाँ
3: है
4: जी,
3: शर्मा
4: वो
3: जी।
4: सभी देते हैं इसीलिए मैंने बोला है।
3: आप पुरानी कहिए,
4: हाँ
3: पुरानी पुरानी बात
4: हाँ
3: है।
4: जी, हाँ जी,
3: हाँ
4: पुरानी
3: जरूर, इस पे अमल के
4: हाँ
3: लिए
4: जी
3: जरूर हम
4: जी
3: कोशिश करेंगे।
4: जी,
3: और
4: बड़ा जी
3: बताइए।
4: बड़ी हाँ जी, फोन मिलता नहीं जी, काफी टाइम हो, फिर 1 महीना इंतजार करो ना पड़ता।
3: हाँ
4: जी,
3: ये बात है।
4: और दूसरा यह जी, प्रोग्राम जैसे 17 तारीख को प्रोग्राम आया था जी, जैसे फोन इनका जी, अर्चना जी आपने प्रस्तुत कराया था
3: जी,
4: तो उसमें एक छोटा सा सुझाव लगाओ चाहे कुछ भी जो भी, तो उसमें जैसे एक श्रोता ने कॉल किया था जी कि ये गाइड फिल्म का गीत सुनने के लिए जी, और उसमें उसने बताया कि ये गीत मैंने यूनिवर्सिटी में सुना जी ऐसे ऐसे, और उसमें आपने भी आगे थोड़ा उसको बढ़ा दिया था जी कि भाई अच्छी है अच्छी फिल्म है या जो
3: जी, जी, जी,
4: तो मेरा कहना यही है कि जो भी फोन इन में अगर फोन करते हैं गीत सुनता है जो उससे कोई जुड़ी हुई याद है कि उसके उसको शेयर हो जाए तो अच्छा हो जाए प्रोग्राम अच्छा बन सके
3: जी जी बिल्कुल
4: जी, अगर
3: लेकिन वो फिर आप ही के श्रोता भाई जो
2: उनसे बात अधूरी रह जाती है
3: और हमारा अक्सर ये प्रयास रहता है टू द पॉइंट बात
4: बिल्कुल वो सही है जी, बस 10-20 सेकंड में कुछ बताए तो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है जी,
3: हाँ जी अच्छा लगता है और कुछ श्रोताओं से बात करना ही अच्छा लगता है, जैसे कोई दूरस्थ स्थान से फोन कर रहा है त्रिपुरा से कर रहे हैं या कुछ ऐसा विशेष किसी ने कहा तो बात करने के लिए मन हो जाता है, नहीं तो हम ये सोचते हैं कि बाकी श्रोता ये कहेंगे आप बातें लंबी करते हैं और
2: प्रोग्राम सुनाते हैं।
3: हाँ जी
4: हाँ जी हाँ जी, वो भी प्रॉब्लम तो वो भी है जी, लेकिन
3: हम ये करें ये हो जाता है, पर कभी कभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
4: हाँ जी थोड़ा बहुत भी हो, बिल्कुल जी बिल्कुल,
3: आपको पसंद आया अच्छा लगा जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत
4: धन्यवाद।
2: हेलो हेलो आप हेलो
3: जी नमस्कार
2: नमस्कार जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए अपने बारे में बताइए।
4: मैं गांव चौधरी बस से रज्जो अग्रवाल
3: जी। हाँ जी अग्रवाल जी बताइए।
4: ये शारदा सिन्हा जी ने काफी गीत गाए हैं और ये मैं बहुत बहुत ये गाँव चौधरी बस से हम
3: एक बार थोड़ा सा आप होल्ड करें, एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें। हाँ जी आप दोबारा से बात रखिए अग्रवाल जी।
4: ये शारदा सिन्हा जी ने काफी गीत गाए हैं जी।
3: हाँ गाए हैं,
4: और ये पग पग लिए जाऊं तोरी बुलैया मड़ा गीत हिंदी में गाया है, वो भी एक इनके हिंदी में
3: इनके गाए हुए कई फिल्मों में गीत हैं। और एक दिन हम एक कलाकार के तहत जब हमारा कार्यक्रम होता है रविवार के दिन सुबह 9 बजे तो हम कहेंगे प्रस्तुतकर्ताओं को कि शारदा सिन्हा के गाए खास गीत आप तक पहुँचाए जाए हिंदी फिल्मों से।
4: और एक बात और कहना चाहूंगा जी, पहले प्रसारण में कभी खेत प्रकट करते थे, आजकल खेत प्रकट नहीं करते।
3: हम तो खेत प्रकट कर करके थक जाते हैं और आप सुनते क्यों नहीं है। हमारे कई श्रोता ही हमें ये कहते हैं कि जब आप एक बार गलत बोल जाते हैं बाद में ठीक बोल देते हैं तो बार बार खेत प्रकट क्यों करते हैं। अच्छा उसकी जानकारी अंदर प्रस्तुतकर्ता को नहीं होती है अग्रवाल जी।
4: और एक आकाशवाणी में 4-5 सदस्य अंदर नहीं जाने देते।
3: 4-5 सदस्य अंदर नहीं जाने देते,
4: 4-5 साल हो गए, पहले तो रोकते नहीं थे अंदर जाने के।
3: नहीं अब भी नहीं रोकते हैं। आप अभी हाल फिलहाल में आए हैं क्या?
4: ना 2-3 साल पहले भी आया था, बाद में तो ये काम चल रहा था।
3: नहीं ऐसा नहीं है, आप आकर के जब हमारा जो स्वागत कक्ष है वहाँ जाकर के आप कहें कि आपको अंदर जाना है, एंट्री करवा कर और अंदर सूचना दिलवा कर आप अंदर आए, आपको कोई नहीं रोकेगा। कार्य हमारे दिवस होने चाहिए और जो हमारा 9:30 से 6 बजे तक का समय है
4: दोबारा शुरू करो। हमारे घर में रामपाल शर्मा जी वो रामपाल चैन जी रिकॉर्ड करके लेंगे।
3: हाँ जी जरूर सुनवाएंगे,
4: बड़ा अच्छा लगता है।
3: जी जी जी
2: कार्यक्रम में भाग लिया।
3: अच्छा एक बार सुनिएगा अग्रवाल जी, आपकी एक पत्र मिला था जिसमें आपने ये कहा था कि आपके पत्र पसंद अपने अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, और एक प्रस्तुतकर्ता विशेष के बारे में आपने कहा था कि दरियाफ्त करने पर हमने पाया है, आप नाम न लें, दरियाफ्त करने पर हमने पाया है कि आपके नाम तो बराबर लिए जाते हैं, आप ऐसा तो नहीं है कहीं आप सुनने से चूक जाते हो?
4: नहीं ईमेल भेजी थी मैंने
3: जी,
4: उसके बाद आपका धन्यवाद भी लिख रखा है जी, आपके कहने के बाद शुरू है जी।
3: पहले भी वो प्रस्तुतकर्ता करते, देखिए किसी भी प्रस्तुतकर्ता को आप नहीं जानते हैं, वो आपको नहीं जानते हैं, पत्रों के माध्यम से या फोन के माध्यम से आपसे
4: कभी नाम नहीं लेता जी, मैंने तो वो माँ आपके सामने ईमेल में लिखी है।
3: नहीं बस अब बात यहीं तक है, और बात जो आपने जिनका नाम लिखा था उनको कह दिया गया है, वो उनका ये कहना है कि वो बराबर आपके खर्च शामिल करते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में शामिल हो ये तो जरूरी नहीं होता है ना
4: जी। बराबर
3: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, आपकी शिकायत का निराकरण हुआ, शुक्रिया आपका।
4: प्रतिक्रिया लिख देता
3: हूँ, अच्छी बात है आपका।
2: हेलो हेलो
5: मैडम जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी नमस्कार, परिचय दीजिए अपने बारे में बताइए।
5: मैडम जी चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुश दिल जी।
2: पप्पू राजा जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में, कौन से सुनते हैं?
5: मैडम जी प्रोग्राम तो आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक पहले गाती पंक्ति आया करता था प्रोग्राम, बहुत पुरानी बात है जी
2: जी,
5: उसको दोबारा शुरू कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी जी।
3: जी बिल्कुल, जो ये समिति बनाती है कार्यक्रमों में परिवर्तन करते हैं तो उनके स्तर पर ही ये निर्णय होते हैं, ये बात आपके आगे पहुंचाएंगे। और बताइए पप्पू जी।
5: मैडम जी एक हमने कहा था फरमेसी प्रोग्राम व्हाट्सएप पर कर दो, आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी।
3: जी आप ये ऐसा सुझाव एक दो श्रोताओं ने और भी दिया है, सुझाव नोट कर रहे हैं।
5: मैडम जी हम आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं जी, आपका प्रोग्राम पेश करने का बहुत अच्छा अंदाज होता है जी।
3: जी आपका भी फोन करने का अंदाज कम नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल और ले लेते हैं चलते चलते। सुमन आप कंसोल पे जा रही हैं, श्रोताओं को बता दें एक कॉल और ट्रांसफर कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है कि
6: गांव वालड़ा जिला पानीपत से बोल रहा जी।
3: हाँ जी बोलिए, बहुत बहुत नमस्कार।
6: आपके कार्यक्रम है खांड की रोटी थोड़ा नूंगे मीठी सारे बढ़िया चल रहे हैं
3: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारीफ करने के लिए, कार्यक्रमों को सराहने के लिए।
6: कल जो शनिवार को तारीफ पसंद अपनी अपनी माँ फतेह लिए रागनी थी,
3: अच्छा
6: कृपा करके वो ना सुनवा वो चकुआ चकुए सुने बोलते ध्यान भूप का कृपया।
3: अच्छा अच्छा
6: हाँ, उसमें हमारी संस्कृति पर और हमारी लेडीज पर मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है जी।
3: अच्छा जी
6: ठीक है जी।
3: जी जी ठीक है।
6: और जी ये यज्ञदत्त मिश्र जी रिटायर हो गए या ट्रांसफर हो गए
3: हैं? यज्ञदत्त मिश्र जी सेवानिवृत्त हो गए हैं। और
6: अच्छा जी तुमको बधाई।
3: हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कॉल करने
6: की ज्वाइनिंग अर्चना जी की 2 फरवरी 1993 की है।
3: बिल्कुल आपने अच्छे से याद किया है,
6: थोड़ी पास सारे परमात्मा।
3: ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद दिलाया। तो सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फोन किया और जो प्रयास में लगे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता मंच, प्रस्तुतकर्ता थे अर्चना मिश्रा और सुमन मलिक। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। रेजी सुनी फिल्म संगीत, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के इस खूबसूरत से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते।

आइए सुनते हैं सुहाग फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशम भोसले और शैलेंद्र सिंह की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लोफर लीजिए, सुनिए फिल्म का गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने की सुना। फिल्म का नाम था अनपढ़। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत और इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं हुकम चंद की गाई कुछ गजलें। तो ये सुनते हैं हुकम चंद की आवाज़ में गाई कार्यक्रम की पहली गज़ल।

0: और सी गज़ल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी हुकम चंद की गाई गज़लें। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार, दोनों ही समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
3: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
4: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
3: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
4: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
3: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
4: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन

0: Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि की 9:15 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम एक फिल्म से का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं दलाल फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। तो ये सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आपने ये सुना, आवाज़ें थी वप्पी लहरिया, इलारुन, कुमार सानू और अलका याग्निक की। लीजिए सुनी कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज़ है साधना सरगम की।

0: से गीत के साथ एक वंशी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने दलाल फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। मीडियम गेन 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 9:30 और 19 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत और इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं किस्सा शेष ताराचंद जी का। कलाकार हैं नरेश कुमार बलियाना वसाथी।
1: सेठ तारम के खिस्से से ये बात है, जब सेठ के दोनों सेठ सेठानी बड़मा जाते हैं लकड़ी तोड़ के लाते हैं, उस टाइम पे जब उनके काफी टूटा जाता तो बड़मा लकड़ी लाते हैं और शहर में बेचते हैं। क्या बताएं एक बात के द्वारा।

धर्म मालकी को चंद्रगुप्त टापू में छोड़ देते हैं। जब धर्म मालकी को चंद्रगुप्त दिखाई दिया तो क्या कहने लगी, अगिया बंजारे कैसी इतनी जवानी थी, अगर ऐसी हालत में छोड़ कर चला गया, ये क्या बताए की बात है दोबारा।

गिरधारी मन में खुशी हुई बड़ी भारी।

0: इसी के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आपने सुना किस्सा सेठ ताराचंद जी का, कलाकार थे नरेश कुमार बालियाना व साथी। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है, सुर की घड़ी में 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज अ रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
2: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchare T.Z. Muthu Kumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
1: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
2: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री अस्नापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting